0: घट तो जरा ओढ़ो, अरे मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान धड़कपन छोड़ो।
1: NBC रेडियो हर पल आपके साथ।

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: परमेश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे अदिति नमस्कार आपको
1: नमस्कार नितुषा श्रोताओं को भी नमस्कार प्रियोले में शुक्रवार को हुई सरस्वती मुचिया की हत्या के मामले में एक नई बात सामने आई है संदिग्ध राधा कृष्णा मुनिस्वामी ने कल रात अपना जुर्म स्वीकार किया है उसे नॉर्दर्न डिवीजन की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के एक ऑपरेशन के दौरान पिछगाफे में उसके घर से गिरफ्तार किया गया था पुलिस के अनुसार इस व्यक्ति ने पैसे के लेन देन को लेकर हुए झगड़े के बाद 60 वर्षीय महिला का गला घोंटकर हत्या करने की बात मानी है संदिग्ध जो उस महिला के साथ ब्रोकर का काम करता था उसने कथित तौर पर इस वारदात को पहले से ही सोच समझ कर अंजाम दिया था सरस्वती मुचिया अपने सब्जियों के खेत में मृत पाई गई थी एमसीआईटी ने अब इस मामले की जांच अपने हाथ में ली है संदिग्ध को इस सोमवार को अदालत में पेश किया जाएगा विदेश मंत्री रितेश रामफल शनिवार को न्यूयॉर्क पहुंचे हैं जहां वे कल शुरू हो रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में शामिल होंगे वहां पहुंचते ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के समक्ष मॉरिशस के स्थायी प्रतिनिधि मिलन मिताबान समेत कई अधिकारियों के साथ एक कार्य सत्र में भाग लिया महासभा के आधिकारिक उद्घाटन से पहले रितेश रामफल ने कल रविवार को कई बैठकों में हिस्सा लिया इनमें कॉमनवेल्थ मिनिस्टीरियल एक्शन ग्रुप और अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स की बैठकें शामिल थी मुख्य रूप से आपसी हित के कई मुद्दों पर चर्चा हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका ने चेतावनी दी है कि ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच संघर्ष तेजी से बढ़ सकता है क्योंकि यमन संघर्ष के दोबारा शुरू होने के बाद पहली बार रियाद को निशाना बनाकर मिसाइल हमला किया गया इस बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मैरीलैंड में अपनी सप्ताहांत की छुट्टी बीच में ही छोड़कर व्हाइट हाउस लौटना पड़ा है आखिर में स्थानीय मौसम का हाल आम हालत हमारे इलाके पर सामान्य ठंडी हवाएं चल रही हैं अगले 24 घंटों के लिए अनुमान आज सुबह रह रहकर बारिश हो सकती है दिन के दौरान आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा रात के दौरान पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू वाले इलाकों पर बादल घिरा सकते हैं और रह रहकर बारिश होगी हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी जिसके झोंके कुछ जगहों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं प्रवाल रेखा के परे समंदर चंचल रहेगा दक्षिण पश्चिमी समंदर में 2 मीटर तक की लहरें उठेंगी तापमान सामान्य से थोड़ा ज़्यादा रहेगा सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 15 से 17 अधिकतम 21 से 24 डिग्री सेल्सियस साहिली इलाकों पर न्यूनतम 19 से 21 अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा सुबह 6 बजे सूर्योदय शाम को 6:05 पर सूर्यास्त होगा
2: You're listening to RM3 Radio, Man.

नशियात सबाल खैर आर एम थ्री के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ आज की इस उर्दू मजलिस में आप समात फरमाएंगे तिलावते कुरान पाक हम्द बयान नातु सलाम। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत बना ले जो तिलावते कुरान की, अल्लाह की नज़रों में वो इंसान चमकता है। तो आइए आगाज़ करते हैं तिलावते कुरान पाक से। आऊज़ बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम।

कह दो कि लोगों, मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह का भेजा हुआ हूं जो आसमानों और जमीन का बादशाह है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही जिंदगानी बख्शता है और वही मौत देता है, तो अल्लाह पर और उसके रसूल पैगंबर उम्मी पर, जो अल्लाह पर और उसके तमाम कलाम पर ईमान रखते हैं, ईमान लाओ और उनकी पैरवी करो ताकि हिदायत पाओ।

0: और कौम मूसा में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हक का रास्ता बताते हैं और उसी के मुताबिक इंसाफ करते हैं, और हमने उनको यानी बनी इसराइल को अलग अलग करके 12 कबीले और बड़ी बड़ी जमातें बना दिया। और जब मूसा से उनकी कौम ने पानी तलब किया तो हमने उनकी तरफ वही भेजी कि अपनी लाठी पत्थर पर मार दो, तो उसमें से 12 चश्मे फूट निकले और सब लोगों ने अपना अपना घाट मालूम कर लिया। और हमने उनके सरों पर बादल को सायबान बनाए रखा और उन पर मन्न सलवा उतारते रहे, और उनसे कहा कि जो पाकीजा चीजें हम तुम्हें देते हैं उन्हें खाओ। और उन लोगों ने हमारा कुछ नुकसान नहीं किया बल्कि जो नुकसान किया अपना ही किया।
1: वह

और याद करो जब उनसे कहा गया कि उस शहर में सुकूनत इख्तियार कर लो और उसमें जहां से जी चाहे खाना पीना, और हां शहर में जाना तो हिद्दतुन कहना, और दरवाजे में दाखिल होना

तो सजदा करते हुए, तो हम तुम्हारे गुनाह मुआफ कर देंगे और नेकी करने वालों को और ज्यादा देंगे। मगर जो उनमें जालिम थे उन्होंने उस लफ्ज को जिसका उनको हुक्म दिया गया था बदल कर उसकी जगह और लफ्ज कहना शुरू किया, तो हमने उन पर आसमान से अजाब भेजा इसलिए।

और उनसे उस गांव का हाल तो पूछो जो लबे दरिया वाके था जब वो लोग हफ्ते के दिन के बारे में हद से तजावुज करने लगे, जबकि उनके तातील के दिन यानी सनीचर को मछलियां उनके सामने पानी के ऊपर आती और जब हफ्ते का दिन न होता तो ना आती। इसी तरह हम उन लोगों को उनकी नाफरमानियों के सबब आजमाइश में डालने लगे।

0: और जब उनमें से एक जमात ने कहा कि तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिनको अल्लाह हलाक करने वाला या सख्त अजाब देने वाला है, तो उन्होंने कहा इसलिए कि तुम्हारे परवरदिगार के सामने माजरत कर सकें, और अजब नहीं कि वो परहेजगारी इख्तियार करें। फिर जब उन्होंने उन बातों को फरामोश कर दिया जिनकी उनको नसीहत की गई थी, तो जो लोग बुराई से मना करते थे उनको हमने नजात दी, और जो जुल्म करते थे उनको बुरे अजाब में पकड़ लिया कि नाफरमानी किए जाते थे। गरज जिन आमाले बद से उनको मना किया गया था, जब वो उन पर इसरार और सरकशी करने लगे तो हमने उनको हुक्म दिया कि जलील बंदर हो जाओ।
1: वो

और उस वक्त को याद करो जब तुम्हारे परवरदिगार ने यहूद को आगाह कर दिया था कि वो उन पर कयामत तक ऐसे शख्स को मुसल्लत रखेगा जो उनको बुरी बुरी तकलीफें देता रहे। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जल्द अजाब करने वाला है और वो बख्शने वाला मेहरबान भी है।

और हमने उनको जमात जमात करके मुल्क में मुंतशिर कर दिया। बाज उनमें से नेकुकार हैं और बाज और तरह के यानी बदकार, और हम आसाइशों और तकलीफों दोनों से उनकी आजमाइश करते रहे ताकि हमारी तरफ रुजू करें।

फिर उनके बाद नाखलफ उनके कायम मकाम हुए जो किताब के वारिस बने। ये लोग इस हकीर दुनिया का मालूमता ले लेते हैं और कहते हैं कि हम बख्श दिए जाएंगे, और अगर इनके सामने भी वैसा ही माल आ जाता है तो वो भी उसे ले लेते हैं। क्या इनसे किताब की निस्बत अहद नहीं लिया गया था कि अल्लाह पर सच के सिवा और कुछ नहीं कहेंगे, और जो कुछ इस किताब में है उसको उन्होंने पढ़ भी लिया है, और आखिरत का घर परहेजगारों के लिए बेहतर है, क्या तुम समझते नहीं।

और जो लोग किताब को मजबूत पकड़े हुए हैं और नमाज का एहतमाम करते हैं उनको हम अजर देंगे कि हम नेकुकारों का अजर जाया नहीं करते। और जब हमने उनके सरों पर पहाड़ उठा खड़ा किया गोया वो साहिबान था और उन्होंने ख्याल किया कि वो उन पर गिरता है, तो हमने कहा कि जो हमने तुम्हें दिया है उसे जोर से पकड़े रहो और जो उसमें लिखा है उसे याद रखो ताकि परहेजगार बन जाओ।

और जब तुम्हारे परवरदिगार ने बनी आदम से यानी उनकी पीठों से उनकी औलाद निकाली तो उनसे खुद उनके मुकाबले में इकरार करा लिया यानी उनसे पूछा, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूं? वो कहने लगे, क्यों नहीं, हम गवाह हैं कि तू हमारा परवरदिगार है। ये इकरार इसलिए कराया था कि कयामत के दिन कहीं यूं ना कहने लगो कि हमको तो इसकी खबर ही ना थी, या ये ना कहो कि शिर्क तो पहले हमारे बड़ों ने किया था और हम तो उनकी औलाद थे जो उनके बाद पैदा हुए, तो क्या जो काम अहले बातिल करते रहे उसके बदले तू हमें हलाक करता है? और इसी तरह हम अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करते हैं ताकि ये रुजू करें।

और अगर हम चाहते तो इन आयतों से उसके दर्जे को बुलंद कर देते, मगर वो तो पस्ती की तरफ मायल हो गया और अपनी ख्वाहिश के पीछे चल पड़ा, तो उसकी मिसाल कुत्ते की सी हो गई कि अगर उस पर हमला करो तो जबान निकाले रहे या उसे यूं ही छोड़ दो तो भी जबान निकाले रहे। यही मिसाल उन लोगों की है जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया, तो उनसे ये किस्सा बयान कर दो ताकि वो फिक्र करें।

0: जिन लोगों ने हमारी आयतों की तकजीब की उनकी मिसाल बुरी है और उन्होंने नुकसान किया तो अपना ही किया। जिसको अल्लाह हिदायत दे वही राहयाब है और जिसको गुमराह रहने दे तो ऐसे ही लोग नुकसान उठाने वाले हैं।
1: सदकल्लाहुलअज़ीम। बहुत ख़ास होती हैं वो ज़ुबानें जो क़ुरान पाक की तिलावत करती हैं, बहुत ख़ास होती हैं वो जवानियाँ जो क़ुरान सीखने में गुज़रती हैं, बहुत ख़ास होती हैं वो आँखें जो क़ुरान सुनते हुए आंसू बहाती हैं, और बहुत ख़ास होते हैं वो लोग जो क़ुरान के अहकामात के मुताबिक ढलने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐ पाक परवरदिगार, हमें हमेशा क़ुरान शरीफ समझकर पढ़ने और उस पर अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। आमीन।

मुसलसल चलता रहे तो आंख के दुनिया से चला जाए, तो कामयाब हो गया। आखिरत में दोजख से बच गया, खुश नसीब लोगों में शामिल हो गया, आहले सआदत में शामिल हो गया। कितनी बड़ी बात है। और ये अल्लाह जल्ल मजदहू की दस्ते कुदरत में है। किसी को हिदायत देना और फिर उसको सीधी राह पे रखना कि बस वो सीधी राह पे रहे, कहीं भटक न जाए, कहीं गुमराह न हो जाए, रास्ता भूल न जाए, अपनी मंजिल उसे याद रहे और वो अपनी मंजिल हक की तरफ मुसलसल बढ़ता चला जाए। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह जल्ल मजदहू के इख्तियार में है। औलिया और हुजूर गौसुल बरा ने अपनी जिंदगी में इसी फरीजा को अंजाम दिया, क्योंकि जब अल्लाह किसी को हिदायत देता है तो उसको न कोई वसीला बनाता है, किसी न किसी को वसीला बनाता है। और अगर वो सीधी राह पे रखता है तो फिर उसके भी असबाब होते हैं, वसाइल होते हैं, कोई वसीला होता है। उनमें से अम्बिया और इमाम अम्बिया के बाद सहाबा अहले बैत, ताबईन अतबाए ताबईन और जमीन उलमाए रब्बानीन और औलिया हुए। आपको मालूम है कि हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के दस्ते मुबारक पर हज़ारों की तादाद में यहूद, नसारा और दीगर मज़ाहिब के लोग, मजूस मुसलमान हुए। फिर इतने लोगों ने आपके हाथ मुबारक पर तौबा की जो काउंटलेस है, जिन्हें गिना नहीं जा सकता। अपनी ज़िंदगी में और उसके बाद फिर आपका जो सिलसिला आलिया कादरिया है, उससे जो उलमा, मशायख, मुरीदीन, मुतकिदीन वाबस्ता हुए या सुबह क़यामत तक होंगे, तो ये जो फैज़ान था आपका हिदायत व तस्दीद का, वो सदियों से जारी है और इंशाअल्लाह चलता चला जाएगा सुबह क़यामत तक। और आपका पैगाम और मैसेज भी यही है, सीधी राह दिखाना और फिर ऐसी बातें, ऐसी बातों की तालीम जिससे वो सीधी राह पे रहे, कहीं भटक न जाए, गुमराह न हो जाए, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अहले हक से जुड़े रहें, उनसे कनेक्ट रहें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। इसलिए हुजूर सलाम अपने सहाबा को ये दुआ सिखाते थे, अल्लाहुम्मा हदिनी वसद्दिदनी, कि अल्लाह मेरी रहनुमाई फरमा, मुझे हिदायत दे और मुझे सीधी राह पर रख कि मैं सीधी राह पे चलता रहूं। और एक रिवायत में ये भी दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वस्सदाद, कि अल्लाह मैं आपसे हिदायत और सीधी राह की दुआ मांगता हूँ। मैं

0: आइल हूँ आपसे हिदायत का और सीधी राह पे मुसलसल चलते चले जाने का। चुनाचे हदीस का तर्जुमा ये है, अन अली रदियल्लाहु अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर ने मुझसे फरमाया, कहो ए अल्लाह मुझे हिदायत दे और मुझे सीधे रास्ते पे रख। और फिर रिवाया और एक रिवायत में यूं है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वस्सदाद, कि अल्लाह मैं आपसे हिदायत और सीधी राह की दुआ मांगता हूँ, उसका साइल हूँ। यही दुआ हम अपने लिए और पूरी उम्मत मुसलमा के लिए मांगते हैं कि अल्लाह पाक अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल हम सबको हिदायत अता फरमाए और हमें राह रास्त पे रखे। वमा अलैना इल्ल बलाग।
1: अभी आप समात फरमा रहे थे जुम्मा मस्जिद पोर्ट लुइस के मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद इसहाक़ कादरी साहब की ज़ुबानी एक बहुत ही प्यारा बयान। उम्मीद करते हैं कि इस बयान से आपकी दीनी मालूमात में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। आइए उर्स गौसल आज़म हज़रत अब्दुल क़ादिर जीलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से एक कलाम समात फरमाइए। आप निराले शान निराली गौस आज़म जीलानी, भर दो मेरी झोली गौस आज़म जीलानी। माँ ने तुमको अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला, आपकी माँ भी अल्लाह वाली गौस आज़म जीलानी। आपके वालिद जो अनजाना सेब चुखाया उसके एवज़ बाग की बरसों रख वाली गौस आज़म जीलानी, गौस आज़म जीलानी।

मोहतरम सामेईन, गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी हमें इल्म की अहमियत का बहुत खूबसूरत दर्स देती है। आपने कुरान, हदीस, फ़िक़ा और दूसरे दीनी उलूम की तहसील की और इल्म अमल, वाज़ नसीहत और इस्लाह नफ्स के मैदान में नुमाया मुकाम हासिल किया। आपकी शख्सियत का एक अहम पहलू ये है कि आपने सिर्फ इल्म हासिल नहीं किया बल्कि लोगों को अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक गुजारने, हलाल व हराम की तमीज़ रखने, अपने नफ्स की इस्लाह करने और अल्लाह पर तवक्कल करने की तलकीन फरमाई। आप इल्म के हुसूल के लिए बगदाद तशरीफ़ ले गए और वहाँ अपने वक्त के उलमा से तालीम हासिल की। इल्म के साथ इबादत, मुजाहिदा नफ्स और तस्किया बातिन पर भी खुसूसी तवज्जा फरमाई। यही वजह है कि आपकी मजलिस में आने वालों को सिर्फ इल्मी मसाइल ही नहीं सिखाए बल्कि उन्हें अपने किरदार और मामलात दुरुस्त करने की भी नसीहत की जाती थी।

सच्चाई और दयानतदारी। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब एक बहुत मशहूर रिवायत आपकी सच्चाई के बारे में बयान की जाती है। रिवायत के मुताबिक जब आप हुसूल इल्म के लिए सफ़र पर रवाना हुए तो आपकी वालदा ने आपको हर हाल में सच बोलने की नसीहत फरमाई। रास्ते में काफ़िले को डाकुओं ने रोक लिया, जब आपसे माल के मुतालिक पूछा गया तो आपने छुपाने के बजाय सच बता दिया। आपकी इस गैर मामूली सच्चाई से डाकुओं का सरदार मुतासिर हुआ और इस वाक़े को उसकी तौबा का सबब बताया जाता है।

0: मंगलम शुभ मंगलम नित्य मंगलम
1: मंगलम जय मंगलम शुभ मंगलम नित्य मंगलम।
2: तिरुमललोनी निशब्दम मनलोनी चिंतनु दूरं चेस्तुंदी नम्मकं पेरिगी ते जीवितम्लो वेलुगु पेरुगुतुंदी बालाजी कृपतो मंची माटलु मंची नडवडिके का इवे स्वामी भक्ति की असलैन गुर्तु।

0: पुनश्च स्वागत है ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मनोरंजन संगीत प्रेमी श्रोतानु। आज सोमवार सितंबर महीने की 21 तारीख सोमवार चाहे सुरील संगीतमय वातावरण प्रत्येक गीत तुम्हार मनाला स्पर्श करो और प्रत्येक सूर आनंद घेवन जावो हि सदिच्छा।
1: You're listening RM Free Radio. Radio. Radio.
0: प्रीति चानाद

भक्तों प्रणाम। रेडियो मनोरंजन पर आप सबका स्वागत है। आज की भक्ति में शक्ति में हम बात करेंगे गणपति बप्पा की, हम बात करेंगे भोले बाबा की। और सुबह का ये जो प्यारा समय है, जहाँ पर कहते हैं ना सोमवार होता है और सारे अपने अपने कामों के साथ उस ईश्वर को याद करने लगते हैं, तो हमारे ऊपर भी सब पे भगवान की कृपा बनी रहे। बढ़ते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे से भजनों के साथ में और जुड़ते हैं उस ईश्वर शक्ति के साथ। आप जानते हैं भक्तों, बप्पा को हमने अभी बस विदाई किया है और कहते हैं कि गणपति बप्पा मोरिया। हर कोई इतने दिनों से एक ही बात कह रहा है, गणपति बप्पा मोरिया। किसने मुझसे पूछा कि बप्पा मोरिया का मतलब क्या है, हम क्यों ये बोलते हैं, तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है बहुत सारे लोगों को इसके बारे में ना पता हो। तो महाराष्ट्र में एक भक्त हुए मोरिया गोस्वामी, उनको कई लोग मोरिया गोसाई कहते थे, मोरिया गोस्वामी कहते थे, जो कि गणेश जी के परम भक्त थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि थोड़े दिनों के बाद वो गणेश रूप जैसे ही लगने लगे थे और सब उन्हें कहते थे गणपति बप्पा मोरिया। और उन्हें इसको याद करते हुए जब उनकी विदाई हुई इस दुनिया से, जब वो इस अपने कार्यों को ख़त्म करके गए, तो कहते हैं हर कोई कहते रहा कि गणपति बप्पा इतना प्यार करते थे मोरिया से, उसकी जैसी ही भक्ति हमारी ज़िंदगी में भी हो जाए। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है गणपति बप्पा मोरिया।

8:18 हो चुके हैं। भक्तों, आप सभी को हम तो इतना ही कहेंगे, भक्ति में शक्ति ऐसा कार्यक्रम है जहाँ पे आपका दिल खुश होता है, जहाँ पे आपका मन खुश होता है, और साथ में आपको मिलते हैं भजन और परमात्मा के बारे में छोटी छोटी सी बातें जो सबको पता है, पर फिर भी कई बार हम बस ऐसे ही याद दिलाते रहते हैं कि परमात्मा के साथ जुड़ना और अपने दिल को साफ और पाक करना कितना ज़रूरी है। भक्तों कहते हैं, जब भक्त सच्चे मन से चलता है ना, तो भगवान खुद उसके साथ चलते हैं। जैसे हमारे गोविंद, गोविंद यानी कृष्ण, यानी अभी हमारा गोविंदन शुरू हो चुका है, तो हम तो यही कहेंगे गोविंदा के, चाहे किसी भी रूप में हो, विष्णु रूप में हो, विष्णु के अवतारों के रूप में हो, कृष्ण रूप में हो, चाहे वो साक्षात किसी भी कण में हो, वो है तो उस गोविंद का ही रूप। तो हम तो यही कहेंगे, जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसे काले साए आए, या कोई अकेलापन आपको मुश्किल ज़िंदगी में दिखाए, कोई रास्ता मुश्किल आपको लग रहा हो और आपको कहीं पे भी आसानी नज़र ना आए, तो आपको कुछ नहीं करना, अपने परमात्मा के आगे बस सिर्फ हाथ जोड़ के खड़े होना है और उनसे ही उम्मीद करनी है और उनसे ही कहना है कि आप क्या चाहते हैं। इसी से आपका दिखेगा अकेलापन भी ख़त्म हो जाएगा, आपकी भक्ति में ताकत आएगी। अकेले रहने वाला व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है, जो सबके साथ चलता है, जो सबके साथ जुड़ के रहता है, जिनके चेहरे

0: पर एक मुस्कान रहती है, जैसे परमात्मा कितने कष्टों में बचपन से जिस दिन से पैदा हुए और आखिरी दम तक उनकी ज़िंदगी में कितने उतार चढ़ाव आए, पर फिर भी उन्होंने अपने चेहरे पर एक बार भी उदासी नहीं दिखाई। चाहे उन्होंने युद्ध क्षेत्र में खड़े होके भी अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र ना लेने का प्रण भी किया, फिर भी उन्होंने अपने चेहरे पे मुस्कान रखी। साथ में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, साथ में कहते हैं हनुमान, इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी पावर उनके साथ चल रही थी, उनसे कुछ भी करवा सकते थे, एक पूंछ से महाभारत का युद्ध ख़त्म हो सकता था, फिर भी उन्होंने कहा नहीं, अपना काम खुद ही करना है, अपने हाथों से अपने ज़िंदगी को जीने के एक रास्ता है, इसको लिए कोई युद्ध नहीं है, परमात्मा हम सबके लिए सब कुछ कर सकता है, सब कुछ एक क्षण में, एक पल में सब कुछ कर सकता है, पर वो तो फिर उनका कर्म होगा, हमारा कहाँ से। इसलिए हमारी शक्ति को बढ़ाते बढ़ाते, इसीलिए कहते हैं जब भक्ति में शक्ति आ जाती है तो कहते हैं परमात्मा भी साथ चलता है और उसके साथ में आप खुद साथ चलते हैं। ये भजन आप सबकी ज़िंदगी में बहुत प्यारा और सुख और समृद्धि लाए, हम तो यही कहते हैं। गोविंदन की बहुत बहुत बधाई।
1: RM3 Radio.

0: भक्तों, क्या बात है ना, एक ही महीने में इतने सारे सुंदर उत्सव आ गए। जन्माष्टमी आ गया, गणेश चतुर्थी आ गया, अभी गोविंदन चल रहा है, चारों तरफ भक्ति, खुशियाँ और उत्साह का माहौल है। एक तरफ पहले हमारे नटखट कान्हा का जन्मोत्सव हुआ, दूसरी तरफ विघ्नहर्ता गणपति बप्पा का स्वागत और गोविंदन उत्सव की जो मटकी फोड़ने का जोश है सभी तरफ रहने वाला है। तो ये सभी उत्सव हमें प्रेम, एकता और मिलजुल कर आगे बढ़ने की सीख देते हैं। तो आइए इस सभी उत्सवों के महीने को जो हमने इतनी खुशियों से मनाया है और आगे भी मनाते रहेंगे, हम तो बस आपकी ज़िंदगी में सुख, शांति और खुशियों की कामना ही कर सकते हैं। बस हम आपको इतना ही कहेंगे, एक बार फिर से कहिए, गणपति बप्पा मोरिया, जय श्री कृष्णा।
1: RM3 Radio.

0: 11:23 हुए हैं भक्तों, जरा सोचिए, एक तरफ महादेव के प्यारे पुत्र गणपति बप्पा का उत्सव, तो दूसरी तरफ उनके आराध्य भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का जन्मोत्सव और गोविंदन उत्सव साथ साथ। तो हमारे भोलेनाथ कितने प्रसन्न होंगे, उन्हें अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहिए, वो अपने भक्तों की खुशी में ही खुश हो जाते हैं। और हमेशा इतना ही कहते हैं कि भक्तों के चेहरे पर जो खुशी है, महोत्सव होता है, जब वो आनंद में होते हैं, मुझे सब कुछ मिल जाता है। यही तो हमारे शिव हैं, वो सबको प्रेम देते हैं, सबका मंगल चाहते हैं और पूरे संसार को अपना परिवार मानते हैं। तो हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे, महादेव की कृपा हम सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। गणपति बप्पा मोरया।
1: RM3 Radio.
0: मैं आप सबसे आज्ञा चाहती हूँ और इसके बाद आप सुन पाएंगे चाइनीज प्रोग्राम आसन के साथ।

तो मैं हाथ डाल ए गुल चेहरा परी जमान मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा

0: खाना सफर, खाना सफर। हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं को विजेता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, आपका स्वागत करते हैं। दिन के 12:17 हुए हैं, थोड़ा इंतजार करना पड़ा, लेकिन हम हैं, यहीं पे हैं, आपके साथ हैं और बस लेकर आए हैं आपके लिए आप ही का प्रोग्राम सुहाना सफर, जहां पर आप खूबसूरत पुराने गाने सुनते हैं। तो चलिए गीतों का ये सफर जारी रखते हैं अगले गाने के साथ लता जी की आवाज में।
1: RM3 रेडियो।

0: भाई जिसका आपको इंतजार था वो घड़ी तो यही है, पुरानी गीतों का ये सिलेक्शन आपके लिए। पुरानी गीतों का यहाँ पर खूबसूरत गुलदस्ता लेकर आए हैं रेडियो मनोरंजन पर।
1: RM3 Radio.

जी हाँ, लोगों का मिलना बिछड़ना तो होता ही रहता है, और ये भी है ना कि कभी-कभी कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं, दो पल का साथ होता है और वो साथ छोड़ जाता है, लेकिन कोई नहीं, यादें रह जाती हैं और उन यादों के सहारे, बहुत सारी अच्छी अच्छी यादों के सहारे ज़िंदगी बिताई जा सकती है। तो चलिए, उन्हीं खूबसूरत यादों के साथ हम आए हैं आपके इस दिन को और भी ब्यूटीफुल बनाने के लिए, यानी कि खूबसूरत पुराने गाने लेकर आए हैं आपके लिए, आपके अपने रेडियो मनोरंजन पर। चलिए, यहाँ पर हम अपने दोस्तों को भी याद कर लेते हैं। माधुरी जी हमारे साथ हैं और हम मनीता जी को भी याद कर रहे हैं, जो कि पुराने गीतों की बड़ी शौकीन।

है तो मनीता जी के लिए गाना होगा और नेक्स्ट गाना जो होगा आपकी प्यारी माँ सुमंती के लिए और बहन आरती सचिता बबीता रेखा जो कि सेंट जूनियर विलेज से हैं और नेक्स्ट गाना आपके लिए। थैंक यू सो मच। हम तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक हैं। यहाँ पर आकाश चेतन मनसुख बाबू से गाना जो है मांग रहे हैं सभी अपने मनसुख फैमिली के लिए और साथ में यहाँ पर हम नेक्स्ट गाना जो है डेडिकेट करेंगे आपके लिए। तो माधुरी जी थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत सारा प्यार है एंड उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे गानों का सिलेक्शन अच्छा लग रहा होगा। ओके तो चलिए ऐसा करते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगला गाना जो है हम लेकर आए हैं आनंद आश्रम फिल्म से जो शायद आशा जी की आवाज़ में आपके पुराने खूबसूरत बीते दिन याद दिला दें।

0: खाना सफर, खाना सफर।
1: चलिए जी, जो लोग इस समय हमें सुन रहे हैं, आपको बता दें कि हमारा जो टिकटॉक है वो इस समय लाइव है। अगर आप चाहे तो उस

0: के साथ जुड़ सकते हैं एंड यहां पर हमारे दोस्तों की बात करें तो काफी सारे लोग हमारे साथ अभी भी जुड़ चुके हैं सो वी से अभी हेलो यहां पर हमारे साथ है रीना दिनेश गोपी शेनाज गनौरी और साथ में है सूरज सजदा जो त्रियोली से साथ दे रहे हैं हाय वीएम आपका हम वेलकम करते हैं नजीमा गोवर्धन आपका भी और मामी वर्षा आपका भी हम स्वागत करते हैं हमारे प्रोग्राम में उम्मीद करती हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और नीरेखा आप भी हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं थैंक यू सो मच तो काफ़ी लंबी छुट्टी के बाद हम वापस आ गए हैं और यहाँ पर सुबी भी हमारे साथ हैं थैंक यू सो मच मिस तो आपने हमें किया लेकिन हमने भी और साथ में यही गाना डेडिकेट करेंगे हम निज़ाम बहादुर आपके लिए एंड बिहाफ शो कैसे हो आप विनय गुप्ता स्वागत है आपका और वैसे तो यहाँ पर हम नए गाने नहीं चलाते पुराने गाने चलाते हैं वी हैव जय फ्रॉम साउथ अफ्रीका सो जितने भी लोग अराउंड द वर्ल्ड हमें सुन रहे हैं उन सब का स्वागत करते हैं और अगला गाना चलिए करते हैं आपके नाम
1: You're listening to RM3 Radio Man

0: ना सफर सुहाना सफर
1: आओ तुम्हें मैं प्यार सिखा दूं और प्यार में सीखने का क्या है, प्यार जब हो जाता है तो प्यार अपने आप बहुत कुछ सिखा देता है। चलिए उत्तम जी का वेलकम करते हैं। प्रेमिला है बेल्जियम से, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। रोजी रेखा हमारे साथ है एंड यहाँ पर रोमा को भी हम कहेंगे वेलकम। साथ में यहाँ हम डेडिकेट करते हैं हमारा अगला गाना शैलेंद्र के लिए। श्वेत साहिल, संध्या, परी और परी आ गई, कहती है बहुत अच्छा लगा, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। एंड शनाज आपके लिए गाना होगा। पूनम अनंत, कल्याणी हरी, दुर्गा, रेखा गोपोल, रेशमा, मीला रामा और यहाँ पर बेटी अमीरा को हैप्पी बर्थडे एंड हैप्पी एनिवर्सरी। ये हैं आपकी मम्मी सबीना की तरफ से, रीता देवी नमा और हमारे साथ हैं नीलम। यहाँ पर साहिल कहते हैं मोगैम्बो खुश हुआ, चलिए अगर मोगैम्बो खुश हुआ तो हम डबल खुश हुए। और यहाँ पर क्या नाम है आपका, नाम है सुशी ऐसा मत करो। संजय बुधवा जी, गुड आफ्टरनून आपको। लैला मुदारन, नमस्कार, थैंक यू फॉर लविंग दिस सॉन्ग। और माधुरी एक दो तीन करती हुई आ गई है। और यहाँ पर है हमारे साथ सैंडो पूजा, कैसी हो, सब बढ़िया, सब ठीक। तो चलिए हम गीतों का ये खूबसूरत सफ़र आगे बढ़ाते हैं एंड नेक्स्ट गाना जो होगा ज्योति गोली की तरफ से, हम भवाशिनी और साथ में असीत, सुनीता और यश के नाम डेडिकेट करते हैं।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: चलिए जी, यहाँ पर विमल विमला लक्ष्मण हमारे साथ है और उनके लिए गाना होगा। हाय कर्सी, कैसे हो आप? तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे लोग हमें सुन रहे हैं। हाय ललिता, नमस्कार। आपकी दो बहनें हैं सुनीता, नलिनी और बाबूलाल, फैमिली वाकवा में उनके लिए गाना होगा। एंड नीलू हमारे साथ है, नमस्कार, थैंक यू सो मच सुरेखा जी। और यहाँ पर गाना होगा आश्री गुरदयाल के लिए। वी हैव वृंदा सन हमारे साथ हैं, एंथिया ओके, एंड प्रेमा, उमा, संगीता, साकुन, देवीना, निष्ठा, कविता, विद्या, इन सब के लिए, सभी मौसी के लिए गाना होगा। एंड यही गाना हम डेडिकेट करेंगे टू संजनी फ्रॉम नीलमा एंड दिवशा, कविता, नू, सरिता थापा, एजे, सरिता थापा जी कैसी हैं आप? चलिए तो यहाँ पर कहती है मंजुलिका कि भाई अपनी इस बहन के लिए भी गाना डाल दो। ऑफ कोर्स नेक्स्ट गाना आपके लिए होगा। यहाँ पर हम एजे के लिए गाना डेडिकेट करेंगे। सुनीता बोजू हमारे साथ हैं एंड वी हैव श्वेता और सुरेखा, थैंक यू वंस अगेन। और बिलेटेड हैप्पी बर्थडे माधुरी को, जिनका बर्थडे था सैटरडे को। और यहाँ पर रोशन हमारे साथ हैं, उनके लिए भी गाना होगा। ऐसे में जो नेक्स्ट गाना होगा हम तारिक खयाम के नाम डेडिकेट करेंगे। कहते हैं ग्रीटिंग्स फ्रॉम जर्मनी, हेलो, हाउ आर यू, कैसे हो आप? थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड यस, ये है सुहाना सफ़र, विदिता के साथ आप सुन रही हैं खूबसूरत पुराने गाने। यहाँ पर हमारे साथ फिदा लक्ष्मण भी आ गए हैं, नमस्कार, आपका स्वागत है।

आश्चर्य भाई गापूची गम गम करते हुए यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ चिंगम की तरह चिपक गए हैं और हम उनको थैंक यू कहना चाहेंगे। यहाँ पर प्रेमचंद जमन है यूके से, नेक्स्ट गाना हस्बैंड आनंद कतवारू के लिए, रेखा विशाल मिस्टर नूरुद्दीन बुराही हमारे साथ हैं फ्रांस से, लीजा करुणा और साथ में कविता रेखा अंबिका प्रेमिला सबीना के लिए, सूर्या हेमारिकाई विनोद सलेमा और साथ में है विनय हमारे साथ। तो ऐसा करते हैं नेक्स्ट गाना आपके लिए, उत्तम जी को ये गाना पसंद आ गया और वरुण रामधारी आपका भी हम वेलकम करते हैं। साथ में यहाँ पर कहते हैं रेखा जी कि मेरी प्यारी सी बेटी के लिए जो इस समय काम कर रही है सीरियो में, उनके नाम अगर हो सके तो कोई गाना ओके। और यहाँ पर हम प्रेमा के नाम डेडिकेट करते हैं हमारे प्रोग्राम का ये अगला गाना, अपनी आंखों में बसा कर कोई इजहार करो। अगर आपको भी इजहार करना है तो कर सकते हैं, मैसेज आपको पता है हमारा टिकटॉक लाइव है, आप भेज सकते हैं या तो फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर है 5250620 यानी 5250620।

0: RM3 Radio.
1: चलिए अगला गाना जो है हम डेडिकेट करेंगे माला जी के लिए जिस समय सुन रही हैं हमें, और राम हमारे साथ है, साथ में श्यामा माहिर अली और लक्ष्य खुशी। कैसे हैं हाल चाल? सब बढ़िया, सब ठीक? चलो जी, यही गाना हम डेडिकेट करते हैं डीडो आपके नाम और गुलाब जी

बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे रजवी में हमें सुन रही हैं, वी हैव माइक मारा जी कभी काम कर रही हैं शॉप में, एंड शायद बहादुर जोड़ा मूवी से हैं, गेट ओके गेट वेल सून, बीमार है वो ओके, तो उनको कहेंगे गेट वेल सून। चलिए इसी के साथ हम अगले गाने के साथ बढ़ने जा रहे हैं एक्चुअली 1 बजे के समाचारों की ओर, और फिर उसके बाद हम फिर मिलेंगे ठीक है। और यहाँ पर किट्टी सजीवन के नाम भी गाना होगा, और लक्ष्य थैंक यू सो मच लक्षा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, मिलते हैं थोड़ी ही देर में।

0: टाइम चेक दोपहर के एक बज रहे हैं। सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार गीता जी से। गीता जी आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम जी, सभी को हमारा नमस्कार। संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बहस की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम आज दोपहर बाद अपने बरतानी प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम के साथ बातचीत करेंगे। इस बातचीत में मुख्य रूप से शागस द्वीप समूह का मुद्दा और मॉरिशस तथा ब्रिटेन के बीच हुए समझौते को लागू करने पर चर्चा होगी। टेलीफोन पर होने वाली ये बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब पोर्ट लुइस और लंदन के बीच इस मुद्दे पर बातचीत जारी है। रिजी के अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन में एक वक्तव्य का आयोजन किया गया जिसका विषय था डिस्कवरिंग लीडरशिप। इसमें कई संस्थाओं के अधिकारियों के साथ साथ प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम भी मौजूद थे। सिंगापुर की सशस्त्र ताकतों के पूर्व ब्रिगेडियर जनरल ओंग बुन वी ने इसका संचालन किया। लीडरशिप के महत्व, एक संचालक की जिम्मेदारियों और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि प्रभावी और सार्थक नेतृत्व के लिए वास्तव में क्या मायने रखता है, इन मुद्दों पर चर्चा की गई। और विदेशी खबरों में जापान में जोरदार तूफान डुजुआन के करीब आने से बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। देश के पूर्वी तट में टोक्यो के पास रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। करीब 300 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और ट्रेन सेवाएं रोक दी गई हैं। और अमेरिका ने अपने नागरिकों से ईरान की यात्रा न करने के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है। इसमें अमेरिकी नागरिकों से कहा गया है कि वे किसी भी वजह से ईरान न जाएं और जो लोग पहले से वहां मौजूद हैं वे तुरंत वहां से निकल जाएं। ये कदम पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और हालात के और बिगड़ने के खतरे को देखते हुए उठाया गया है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। रॉयल रोड लोअरवेल में 50 साल की 50 ईयर ओल्ड की मिसेज गुलाबी बहादुर, जो गुलाबी से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज शाम 4 बजे उनके शौहर फैसल बगालू के घर रॉयल रोड लोअरवेल से उठाकर लोअरवेल की कादेसमी मस्जिद ले जाया जाएगा और दफनाने के लिए प्लेंडी पापाई का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 4 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
3: You're listening RM Free Radio.

दो लफ्जों की है दिल की कहानी या है मोहब्बत या है जवानी। आई नो यहाँ पर मैं सबको कहती हूँ कि भाई पानी पिया करो, पानी पिया करो और बहुत ज़रूरी होता है। अरमान भी कहते हैं कम से कम 2 लीटर पानी तो रोज़, इट्स अ मस्ट। आई नो अरमान, लेकिन

0: ना, कभी कभी दिल के अरमां आंसुओं में बह जाते हैं यानी कि कभी कभी टाइम भी नहीं, हम कहते हैं टाइम नहीं मिलता, लेकिन टाइम निकालना चाहिए. एंड आई नो इट्स माय फॉल्ट, कभी कभी हम ऐसा कर लेते हैं और नेग्लिजेंस जो है वो अच्छी बात नहीं होती. तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ें.
1: सुहाना सफर.
0: चलिए तो यहाँ पर हम आपका वेलकम करते हैं हमारे सेकंड आवर में. और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा गाना जो है हम करुणा भोला के नाम डेडिकेट करेंगे, और साथ में यही हम गाना जो है डेडिकेट करना चाहेंगे एजे के लिए और उनकी अंजू के नाम. परी और माधुरी को याद किया, थैंक यू हमें याद करने के लिए. वीना है नुवेल फ्रांस से, राजीव, मानव, श्वेता, देवांश और सीता एक्वायर से, प्रेमिला भगवन और साथ में है कविता स्वरूप. गाना जाएगा टू लवीना एंड नशवीक, और साथ में यही गाना दीप, ललिता, अमृता, रोहित, अरमान एंड अत्वल निंदर कौर के नाम डेडिकेट करेंगे. बहुत दूर से साथ दे रहे हैं. मधुबाला आनंद का बुधू, वी हैव विदुर, राधे राधे आपको, अब्दुल और सैरा बानू के नाम, अश्विन राम जो इस समय हमारे साथ हैं, राधा हमारे साथ, उनको भी राधे राधे ही बोलेंगे. संगीता सुखारी, नीता तोरा, साथ में है विमला शामलुल और वन देविन जो इस समय हमारे साथ हैं. वी ऑल्सो हैव माया, और साथ में ये गाना हम संजय यादव के नाम चलाते हैं. गीता सीयू सबके लिए डेडिकेट करते हैं हमारे इस प्रोग्राम का ये खूबसूरत सा गाना. वैसे आपने मैं पहले तो देखा होगा और अभी भी देख रहे हो, तो चलो ठीक है. नेक्स्ट गाना जो होगा हसबेंदार के नाम, ये है माया की तरफ से. एंड यही गाना उनके लिए जो इस समय ड्राइव कर रहे हैं और हमारी गाने एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय करेंगे ये वाला.

चल कहीं दूर निकल जाएं भाई, कितना दूर जाएंगे आप, वापस लौट के तो यहीं पे आना है। हम भी आपका वेलकम करते हैं, दीप्ति गुंदौड़ी नमस्ते, स्वागत है आपका। रश्मि नमस्कार, और साथ में यहां पर नमस्कार कहेंगे हम अपने तमाम दोस्तों को जो साथ दे रहे हैं। इस अगर अभी अभी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपका वेलकम है। चलिए श्यामा का, ललिता का, इन सब का हम शारदा लखनऊ का स्वागत करते हैं। और जो लोग अभी काम कर रहे हैं या तो फिर बस में हैं, कहीं से भी सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम, थैंक यू सो मच।

चलिए जी, किरण जतू हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और साथ में यहाँ पर नमस्ते जी, आपका स्वागत करते हैं। जी हाँ, हमारे लाइव में जितने भी लोग हैं, चांदनी आपका वेलकम है, उनको सॉरी कहेंगे अगर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं। ऐसा करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और अभी के लिए जो अगला गाना है, विकास जूतन जी, आपके नाम।

0: इतना खूबसूरत गाना है। वैसे ये गाना साहिल का फेवरेट गाना है, उन्होंने बोला भी कि प्लीज़ ये गाना मुझे आप डेडिकेट कर दो। तो चलिए भाई, ये गाना आपको डेडिकेट करते हैं साहिल, और रमज़ान जो है पाकिस्तान से हमें सुन रहे हैं, आपका हम वेलकम करते हैं। मनीता जी कैसी हैं आप? सब बढ़िया। सुनन का हम प्रोग्राम में स्वागत करते हैं, और साथ में यह गाना हम भारती रथु के नाम डेडिकेट करेंगे, और यही गाना पूजा के लिए। थैंक यू सो मच हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हाय जेवीना, हाय फतिमा नसर अली, वेलकम, आपका हम स्वागत करते हैं। अनसुया जी आयरलैंड से हमारे साथ हैं उनका भी, और यही पे गाना जो होगा हम डेडिकेट करना चाहेंगे उनके लिए, जो कि अभी लंच ले रहे हैं। आपको हम सब की ओर से बना पेची।
1: You're listening to RM3 Radio.

0: RM3 Radio.
1: चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन है हमारे साथ. तो नेक्स्ट गाना रोहन के लिए उनकी मम्मी करिश्मा की तरफ से, उनके पापा रॉय की तरफ से. एंड यहाँ पर सुमन हमारे साथ हैं. ये हैं सैंपियर से, कहते हैं लंदन हॉलिडे में आई हूँ और मेरे लिए गाना चला दीजिए. तो लो लंदन वालों गाना सुनो अनसुया, एंजॉय करो गाना. एंड यहाँ पर बेबी, ओके डोंट फॉरगेट मी बेबी, ये देविका फ्रॉम UK. हाई देविका, कैसी हो आप? चलो एंजॉय करो ये गाना. राज जी नमस्ते, स्वागत है आपका. और गीतन जी आपका हम वेलकम करते हैं हमारे प्रोग्राम में.

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: प्रोग्राम चल रहा है सुहाना सफर और सुहाना सफर में बस सफर बनाने के लिए सुहाना हमें चाहिए कमाल के गाने और गाना होगा किशोरराज गणेश के लिए सुनीता विमला पाडू विद्याला होजा से हैं शालिनी रवि नीरव और सेंटवेयर से साथ दे रहे हैं हमारे साथ जुड़े हुए अमीना सबीता और यहां पर इंद्रानी है लिस्कालिये से उनके हस्बैंड मनोहर के लिए गाना होगा और साथ में यही गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे आपके लिए नीलिमा जी कहती हैं कि भाई बहुत दिनों के बाद अच्छा लग रहा है थैंक यू सो मच मैं तो ठीक हूँ बस सोच के चल रही हूँ कि आप लोगों का प्यार है आप लोगों का साथ आपकी दुआएं हैं तो ठीक तो होना है भाई
2: RM3 Radio.

0: RM3 Radio. Radio.
1: चलिए भाई अगला गाना आपके लिए लेकर आए हैं आशा भोसले के साथ. ये है शान फिल्म का गाना जो हम शान से डेडिकेट करना चाहेंगे आप सभी हमारे लिसनर्स के लिए. तो साथ देने के लिए थैंक यू. और यहाँ पर माधुरी कहते हैं भाई आप तो बारिश बुला रही हैं. भाई बारिश का मज़ा कुछ और होता है. बारिश में सड़क वही रहती है, पेड़ पौधे वही रहते हैं, लेकिन मूड बदल जाता है, मूड थोड़ा रोमांटिक हो जाता है. तो चलिए इसी के साथ हमारे सिलेक्शन को दीप्ति जी बहुत पसंद करिए. थैंक यू. हाई प्रिया नमस्कार. विमला पादु आपको वेलकम कहेंगे. एम जे वेंस आपका स्वागत है. धनजय जी नमस्कार. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे यू टू. एंड देव थैंक यू. और यही पे गाना इंदिरा जी के लिए बबीता.

0: जी नमस्कारम लीना और जितने भी लोग साथ दे रहे हैं चलिए एंजॉय करें
1: क्योंकि सिर्फ प्यार करने वाले जानते हैं कि आन बान और शान से जीना किसे कहते हैं है ना

0: सुहाना सफर।
1: वैसे तो हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है, वक्त हमें इशारा कर रहा है कि धीरे धीरे हमारा प्रोग्राम जो है वो भी ख़त्म होने जा रहा है। तो वारदात फिल्म का एक खूबसूरत सा गाना हम आपके लिए लेकर आए हैं और ये गाना हम बबीता की आवाज़ में लेकर आए हैं आपके लिए। ये गाना हम बबीता के नाम डेडिकेट करेंगे। सॉरी मैडम, थैंक यू सो मच, आपने मिस किया। ओहो, इंदिरा जी कहते हैं शाम के लिए गाना। एंड वी हैव जेनिफर। हाय जेनिफर, हाउ आर यू? बबीता, अरे यार बबीता ऐसा मत करो मेरे साथ। ओहो चलो, तो हाय ट्रैवल, कैसे हो? थैंक यू सो मच जैन। एंड मिली, मिली को मैं मिली, और यहाँ पर नेक्स्ट गाना होगा आपके लिए, और मनोज प्रीतिया हमारे साथ हैं। हेलो जी, आप हैं फ्रॉम सेबास्तोपोल। एंड यहाँ पर दिया हमारे साथ हैं। एंड गिरवर, आपका वेलकम है। अरे तरुण यार क्या बात है, आए भी तो प्रोग्राम के आखिर में, जब प्रोग्राम समाप्त हो रहा है हमारा, ऐसा नहीं करते, लेकिन आपने कर दिया तो कोई बात नहीं। तो लो ये गाना हम तरुण आपके नाम डेडिकेट करेंगे। एंड उसने कहा भी हेलो हाय बाय बाय, क्योंकि वो आते ही जा रहा है और प्रोग्राम समाप्त हो रहा है। एंड यही गाना हम डेडिकेट करेंगे किसके लिए, चलो देखते हैं। वेल, यहाँ पर हमारे साथ हैं कौन, दिया, और यही गाना चंदा जगू गुरु के नाम, और मैं ठीक हूँ। गाना होगा फॉर बबीता गुदुरी, और गाना होगा फॉर शाह प्रेमचंद। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और यही गाना हम मालिनी राम लेखा के नाम डेडिकेट करते हैं। कतिबा मंगर, आपको भी वेलकम, एंड एन्जॉय करें हमारा ये खूबसूरत सा गाना जो लेकर आया आपके लिए।

0: चलिए जी इसी के साथ अब हमारे जाने का टाइम हो गया है। थोड़ी देर में आप प्रोग्राम सुनेंगे संस्कृति की बातें, वो होगा समाचारों के बाद, और हमारा अगला गाना रफ़ी साहब की आवाज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए। तो मिलेंगे अब हम आपसे वेंसडे को 12 बजे आप ही के प्रोग्राम में, जो कि है सुहाना सफ़र।
1: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
0: और ये गाना हम नंदा मेकैन, सिमला बिजादे और उनकी बेटी शाइना के नाम डेडिकेट करेंगे डिस्को लव। थैंक यू सो मच दिया, थैंक यू, आपकी बातों ने दिल छू लिया। और अनसुया बस मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, वेंसडे को मिलते हैं, ठीक है।

यहाँ पर रेशमा रामतुला हमारे साथ हैं. थैंक यू सो मच फॉर लविंग द सॉन्ग. प्रीति सकराम आपको भी कहेंगे थैंक यू. परी, माधुरी, मनीता, साहिल और एजे आप सबको थैंक यू सो मच एक बार फिर. और ये गाना चलते चलते डेडिकेट करते हैं सना सीतल के लिए. लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम होलैंड. थैंक यू होलैंड वालों, ऐसे ही प्यार बांटते रहना. देविका सुब्रन आपके लिए.

0: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार गीता जी से। गीता जी आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम जी, सभी को हमारा नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने मॉरिशस से जुड़ी अपनी तकनीकी सहायता रिपोर्ट सार्वजनिक की है। इसमें देश के पब्लिक फाइनेंस प्रबंधन से जुड़े कानूनी ढांचों की समीक्षा के बाद सामने आए निष्कर्ष और सिफारिशें दी गई हैं। ये दस्तावेज वित्तीय जिम्मेदारी से जुड़े कानून यानी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेशन तैयार करने में मदद करेगा। इस रिपोर्ट में कुल 7 सिफारिशें की गई हैं। इनमें कुछ संस्थाओं में सुधार, परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए बजट के बीच में समीक्षा करना और मंत्रालयों के खर्च की अधिकतम सीमा तय करना शामिल हैं। नेशनल सोशल इंक्लूजन फाउंडेशन ने गैर सरकारी संगठनों यानी NGOs को सहायता देने के लिए करीब 947 मिलियन रुपए की मंजूरी दी है। इन फंड्स की मदद से गरीबी या मुश्किल हालात में रहने वाले लोगों के लिए ज़रूरी सेवाएं जारी रखी जा सकेंगी। इस साल फंड्स के इस्तेमाल पर बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए आवेदनों की जाँच और मूल्यांकन प्रक्रिया को और मजबूत किया गया है। ताइवान के मछली पकड़ने वाला जहाज़ FV Owen 168 जो आज सुबह बेडेडाम इलाके में फंस गया था, उसे खींचकर बंदरगाह तक ले जाया गया है। ये जहाज़ कुछ दिनों के लिए मॉरिशस में रुकने वाला था। इस दौरान उसे अपनी मछलियों की खेप उतारनी थी और ईंधन भरना था। हर साल 21 सितंबर को दुनिया भर में विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि शांति केवल युद्ध की अनुपस्थिति नहीं बल्कि आपसी सम्मान, समझ और सहयोग का काम है। विश्व शांति दिवस का संदेह है कि मतभेदों का समाधान हिंसा से नहीं बल्कि बातचीत और समझदारी से किया जाए। बच्चों और युवाओं के लिए एक ऐसा भविष्य बनाया जाए जहाँ उन्हें डर नहीं बल्कि शिक्षा, सुरक्षा और बेहतर अवसर मिले। और चीन के फुशान शहर में एक कपड़ा कारखाने में कल शाम आग लग गई। कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है और एक व्यक्ति घायल हो गया है। राहत और बचाव कार्य जारी हैं। पुलिस और स्थानीय प्रशासन आग लगने के कारणों का पता लगा रहे हैं। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। रॉयल रोड द लोअरविल में 50 साल की 50-year-old की मिसेस गुलाबी बहादुर, जो गुलाबी से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज शाम 4 बजे उनके शोहर फिजल बगालू के घर रॉयल रोड लोअरविल से उठाकर लोअरविल की कदिसमी मस्जिद ले जाया जाएगा और दफनाने के लिए ब्लेंडी पापाई का कब्रस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 4 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
2: You're listening to RM3 Radio.

0: संस्कृति की बातें
1: नमस्कार, संस्कृति की बातें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज एक विशेष दिन है, 21 सितंबर को पूरी दुनिया मनाती है विश्व शांति दिवस। और शांति एक

0: ऐसी चीज है जिसे हम सब प्राप्त करना चाहते हैं, जिसका एहसास हम सभी करना चाहते हैं। आज हम एक परेशान दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पर धन दौलत से ज़्यादा इंसान को शांति की प्राप्ति चाहिए, और शांति की प्राप्ति के लिए भी धन दौलत भी इसका खर्च कर रहे हैं। लेकिन क्या धन दौलत से शांति को खरीदा जा सकता है? शांति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? कौन शांति को प्राप्त कर सकता है? और शांति इस विश्व में स्थापित करने के लिए क्या क्या जतन किया जा रहा है? हम जानते हैं कि एक विश्व दिवस की घोषणा जब होती है तो उसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं, और विश्व शांति दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया है, और संयुक्त राष्ट्र संघ इस पूरे विश्व में शांति की स्थापना के लिए इस दिवस को मनाता आ रहा है। आज संस्कृति की बातें कार्यक्रम में हम शांति पर ही बात करेंगे, क्योंकि शांति हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। चाहे वो धर्म की बात हो, चाहे वो संस्कृति की बात हो, शांति इस शब्द का इस्तेमाल न सिर्फ हिंदू धर्म में बल्कि हर एक मजहब में किया जाता है। और आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्रीमती निशा गणेश जी। निशा जी नमस्कार।
1: नमस्ते किरण,
0: इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: निशा गणेश एक अध्यापिका हैं, शिक्षिका हैं, और आप मेडिटेशन स्कूल्स ये जो परियोजना है इसमें भी शामिल हैं, और आप कई वर्षों से शांति के लिए जो ध्यान मेडिटेशन वगैरह की जाती है इस दुनिया में भी आप बहुत सालों से जुड़ी हुई हैं। और आज हम ये जानना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि आप हमारे इस प्रोग्राम में श्रोताओं से बातचीत करते समय सबसे पहले शांति को परिभाषित करें। शांति की परिभाषा है क्या, ज़रा हमें ये बताइए।
1: धन्यवाद किरण जी। आज जैसे आज विश्व शांति दिवस है, तो शांति को समझने से पहले हम ये ज़रूरी है जानना अशांति क्या है। हम उससे शुरू करेंगे फिर हम शांति पर जाएंगे। तो अभी आजकल हम देखते हैं सभी परेशान हैं, जैसे आपने कहा बहुत अशांति फैली हुई है, छोटे से बच्चे को लेकर भी, और काम करने वाले बड़े बुज़ुर्ग सभी अशांत हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। और इन सब का कारण क्या है तो इसका समझ में बच्चों को भी नहीं आता, बड़ों को भी नहीं आता। फिर हम जब ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जब ये डिफरेंस देखते हैं, मेडिटेशन करते हैं जो लोग मेडिटेशन करते हैं और जो लोग मेडिटेशन नहीं करते, तो ये डिफरेंस नज़र आता है। वो अशांति क्या है, दिमाग के अंदर जैसे बहुत विचार चलते हैं, बहुत सारे थॉट पैटर्न्स हैं जो अनकंट्रोल्ड हैं, कोई दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। तो
0: मतलब दिमाग में कभी भी कोई भी विचार आ जाए,
1: हाँ,
0: इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता,
1: कोई नहीं,
0: हाँ, इस पर हमको वश रखना चाहिए कि किस समय किस सोच को हम आने दें।
1: जी, जैसे बोलते हैं ओवर थिंकिंग।
0: जी,
1: सोचते सोचते पता नहीं एक सोच से शुरू होके हमको भी पता नहीं लगता कहाँ तक हम पहुँच गए, हमारे विचार कहाँ तक पहुँच गए। फिर ये एक सोच को लेके होता है, फिर सारा दिन हमारा ऐसा ही चलता रहता है,
0: एक क्षण में हजारों सोच आ जाते हैं।
1: एग्जैक्टली। फिर अब एक हफ्ता में ऐसा होता है, कई साल ऐसे बीतते जाते हैं, फिर ये क्या होता है, हमारा पैटर्न बन जाता है, एक ओवर थिंकिंग का पैटर्न, एक बहुत सारे विचार आते हैं दिमाग में, तो क्या होता है एक मेंटल फॉग जैसा बन जाता है। एंड वो हमारे सोचने समझने की क्षमता
0: घट जाती है,
1: घटने लगती है धीरे धीरे धीरे, और थॉट्स ऑर्गेनाइज नहीं है, डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं, फिर शुरू होने लगता है कन्फ्यूजन, एंग्जाइटी। और ये बड़े बड़े नाम आज जो हम सब सुन रहे हैं, बच्चों को भी ये पता है।
0: जी हाँ, एक समय था जब एंग्जाइटी क्या है हमको डिक्शनरी में चेक करना पड़ता था, डिप्रेशन क्या है चेक करना पड़ता था, स्ट्रेस क्या है हम खुद समझना चाहते थे, लेकिन आज बच्चा स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन इन शब्दों का इस्तेमाल

0: कर रहा है।
1: हाँ, ये नॉर्मल वोकैबुलरी बन गया है आज का। तो ये हमारी अशांति वाली दुनिया है। दिस इज़ द जिस दुनिया में हम जी रहे हैं अभी, सब लोग अशांत हैं। फिर अब हम समझते हैं शांति क्या है। शांति वो स्थिति है जब हम उस टू मेनी थॉट्स उसको कम करते करते करते फिर ओनली इम्पोर्टेंट थॉट्स जो ज़रूरी है वो विचार सोचते हैं, फिर इम्पोर्टेंट और पॉजिटिव थॉट्स। तो ऐसा करने से हमारे ओवरथिंकिंग पैटर्न कम हो जाती है। फिर ओवरथिंकिंग पैटर्न जब कम हो जाता है तो वो मेंटल क्लटर वो धीरे धीरे साफ होने लगता है। फिर इंसान मनुष्य शांत होने लगता है, एक मेंटल क्लैरिटी आती है, थॉट्स बिकम्स ऑर्गेनाइज्ड और सोचने समझने की क्षमता हमारा एकदम शार्प होने लगता है।
0: जी, तो अभी जैसा कि निशा गणेश जी हमें बता रही हैं, शांति को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना चाहिए कि हम अशांत क्यों हैं, इसके पीछे कौन कौन से कारण हैं। और इन्होंने बताया कि हद से ज़्यादा सोचना और अपने सोच पर अपने विचारों पर काबू न पाने की क्षमता रखना, और इसको मतलब कि बेलगाम सोच को दिमाग में आते रहने देना, ये सारी वजह हैं कि हमारा दिमाग ओवरथिंक करने लगता है, हद से ज़्यादा सोचने लगता है और फिर अशांति की स्थिति पैदा हो जाती है। और फिर अशांति के कई रूप भी नज़र आने लगते हैं, जैसे कि ईर्ष्या, द्वेष, गुस्सा। आजकल कौन गुस्सा नहीं करता, रोड रेज हम रोज़ सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पर हर तरफ दिखाई दे रहा है। अशांति के ये कई रूप हमें नज़र आने लगे हैं। और इस वर्ष जो विषय रखा गया है विश्व शांति दिवस के लिए, वह है इन्वेस्ट इन पीस फॉर एवरी वन एवरीवेयर एंड एवरी डे, मतलब कि शांति में निवेश करें हर एक के लिए, हर जगह और हर रोज़। तो किस तरह से हम हर एक के लिए सर्वत्र हर रोज़ शांति में निवेश कर सकते हैं, क्या निवेश करना चाहिए? शांति में निवेश करने के लिए हमको पैसों की ज़रूरत नहीं होती। शांति एक ऐसा स्वरूप है जिसके साथ हमने जन्म लिया है, और फिर यूनाइटेड नेशंस ये भी कहता है कि शांति आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं अशांत हूँ, तो उसको पता लगाने की ज़रूरत है कि वो क्यों अशांत है, और उसका ये जो जन्मसिद्ध अधिकार है, बर्थ राइट, शांति पर उसको पुनर्स्थापित करनी चाहिए। तो हमें ये बताइए निशा जी कि क्या आज की ये तेज़ चलती दुनिया में इंसान को अपने कार्यों में संलग्न होते हुए भी शांति की प्राप्ति हो सकती है? क्या वह हर आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, जिस दौर में जी रहे हैं, कम्युनिकेशन बहुत एक ज़रूरी संसाधन है, बहुत ज़रूरी साधन है। हर वक्त हम किसी न किसी के साथ जुड़कर कोई काम करते हैं, और हर कोई हमारे जैसा शांत नहीं रह सकता। जिसने शांति की प्राप्ति कर ली है, क्या वह अपनी शांति को बचाए रख सकता है अपने गतिविधियों को चलाते हुए?
1: जी, तो ऐसा है, आपको ये पता होगा, कहते हैं एक मृग है, वो कस्तूरी उसके नाभि में होती है और उसको पता नहीं वो कहाँ है, उसको वो खुशबू आ रही है और वो ढूंढता फिर रहा है बाहर।
0: जी, वन वन,
1: हाँ,
0: कबीर का एक बहुत सुंदर दोहा भी है इस पर।
1: जी, तो हमारा भी हाल कुछ इसी तरह से है आजकल। वो पीस हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं, अच्छे खाने में, अच्छे गाड़ी में, अच्छे
0: रिजॉर्ट
1: में,
0: होटल्स में, विदेश में,
1: हाँ, फिर भी मन अशांत ही है। हम चले भी गए, गाड़ी नई ले ली, फिर भी अशांत ही है। तो इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है कि हम शांति को जो बाहर ढूंढ रहे हैं, वो कहीं बाहर है नहीं, वो हमारे अंदर ही है। हम मनुष्य, हमारा एक शरीर है, एक फिजिकल बॉडी है, तो बस यहाँ तक ख़त्म नहीं होता, हमारे अंदर एक आत्मा भी है।
0: जो कि हमारी पहचान है।
1: हाँ, आत्मा, सोल। तो वो सोल पावर वही मुख्य है हमारे शरीर के अंदर। जैसे एक गाड़ी के अंदर उसका मेन ड्राइवर इज द मेन, अगर ड्राइवर नहीं है तो गाड़ी खुद अपने आप नहीं चल सकती, उसके लिए चाहिए एक ड्राइवर। तो हमारा शरीर भी अपने

0: लव, टॉलरेंस, हैप्पीनेस, ये सब ऑलरेडी है सोल के अंदर. बट क्या होता है, हम इतने वो अंदर का शोर इतना हावी हो जाता है कि हमको ये हम भूल जाते हैं, हमको अवेयरनेस नहीं रहता अपने आत्मा का, अपने आत्मिक स्थिति का. फिर जब हम माइंडफुलनेस जैसा एक्सरसाइज, योगा, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, जब हम इस ओर जाने लगते हैं तो हमारा थिंकिंग पैटर्न वो कम होने लगता है, वो शोर अंदर जो शोर मची हुई है वो कम होने लगती है, और हमको धीरे धीरे धीरे वो शांति का अनुभव होने लगता है. इसका मतलब वो शांति हमारे अंदर ही है, हम उसको महसूस कर सकते हैं, चाहे वो ऑफिस जाने वाला हो, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, एक टीचर हो, एक नर्स हो, कोई भी हो, गृहिणी हो. अगर हमको ये इनर नॉइज़ उसको कम करना आ गया, अपना अपने सोच विचार को नियंत्रण में रखना आ गया, तो कोई भी शांति पा सकता है
1: और किसी भी स्थिति में भी शांत रह सकता है.
0: हाँ, क्या होता है जब हम अशांत रहते हैं, बहुत ज़्यादा वो जो अंदर का शोर है, तो हम बहुत रिएक्ट करते हैं. कोई डिफ़िकल्ट पर्सन सिचुएशन आया तो हम घबरा जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, और कोई हमको कुछ ख़राब बोलता है जो हमको पसंद नहीं आया तो हम रिएक्ट करते हैं, उसको जवाब देते हैं पलट के. अगर जब हम शांति की तरफ आते हैं तो वी डू नॉट रिएक्ट, वी रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली. हम सोचते हैं, वो क्षमता रहती है हमारे अंदर, हम जज करते हैं, सोचते हैं क्या ठीक है, कैसे हम उनसे बात करेंगे कि हमारा रिलेशनशिप ख़राब नहीं हो. और हम अपनी बात भी रख सकते हैं कि हम आपसे सहमत नहीं हैं, और उनको रियलाइज़ भी हो कि उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि हमको हर्ट किया. जैसे कि आजकल हम एक कॉमन एग्जांपल ले सकते हैं, आजकल एक नया ज़माना, एक ऐसा फैशन चला है पुराने गानों को फिर से उसका रीमेक करके उसको नए म्यूज़िक के साथ लाना. तो कई लोग बोलते हैं ओरिजिनल बहुत अच्छा होता है, बट किसी को वो रीमेक अच्छा लगता है. तो मेरी एक किसी से कॉन्वर्सेशन हो रही थी तो मुझे लगा हाँ ओरिजिनल सही है, वो सही बात है, वो ठीक है, बट कोई गाने ऐसे भी हैं जो अच्छे हैं रीमेक के बाद भी. तो क्या हुआ, उनको समझ में आया कि हाँ, मैंने उनको एग्जांपल भी दिया, मैंने उनको वो गाना भी बताया कौन सा, फिर उन्होंने वो बात अंत में आग्री हुए हाँ रीमेक भी अच्छा हो सकता है. तो ये क्या हुआ, एक डिसएग्रीमेंट नहीं हुआ. हम अच्छी तरह से शांति से अपनी बात भी रख सकते हैं बिना गुस्सा किए, क्योंकि आजकल ये बहुत देखते हैं, बच्चों में भी देखते हैं, स्कूल में अगर किसी बच्चे ने अपने दोस्त को कुछ बोला, उस ही डज नॉट एग्री विद दैट, तो वो लड़ाई बहुत करते हैं आपस में, मार पीट पे उतर आते हैं. तो ये शांति की कमी की वजह से आती है, कमी नहीं बोलेंगे उसको, बच्चे को अवेयरनेस नहीं है जी. और ये बड़ों में भी ऐसा देखा गया है
1: जी. तो जैसा कि अभी आपने सुना, हम शांति दिवस के संदर्भ में शांति पर बात कर रहे हैं, और हमारी मेहमान हैं निशा गणेश जी, और आप बता रही हैं कि किस तरह से अशांत व्यक्ति के साथ बात करते हुए भी आप अगर शांति धारण करें तो वह व्यक्ति भी समझ सकता है, आपकी बात समझ सकता है. और मैं ये भी मानकर चलती हूँ कि अगर किसी व्यक्ति के साथ हमारा वाद विवाद चल रहा हो और व्यक्ति कठोर कटु वचन बोल रहा हो, तो हमको ये समझना चाहिए

कि वह व्यक्ति अशांत है। इस तरह से अगर सोचकर, जैसा कि आपने कहा, रिएक्ट करने के बजाय हम रेस्पॉन्ड करें तो स्थिति बिगड़ने के बजाय और बेहतर हो सकती है। आजकल समझ बूझ की शायद बहुत ज़रूरत है। कठिन है, ये सच है कि अगर कोई आपके सामने खड़ा होकर आपके साथ द्वंद्व कर रहा हो, आपके विवादों को नकार रहा हो, तो ऐसे में शांति के साथ बात करना बहुत कठिन होता है, लेकिन ये असंभव नहीं है। और इस विषय को अभी हम जारी रखेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से आज बच्चों के पाठ्यक्रम में शांति को स्थापित करने के लिए, बच्चों को शांति समझाने के लिए, इसकी परिभाषा उनके सामने रखने के लिए स्कूलों में एक पाठ्यक्रम को रखा गया है और किस तरह से इस परियोजना को अमल में लाया जा रहा है। लेते हैं एक छोटा सा विराम।

संस्कृति की बातें प्रोग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं विश्व शांति दिवस पर और किस तरह से शांति हमारे जीवन का आधार है, किस तरह से अगर शांति रहे तो यह दुनिया एक खूबसूरत जगह होगी हर एक के लिए। और इस वर्ष शांति दिवस के संदर्भ में जो थीम रखा गया है यूनाइटेड नेशंस द्वारा, वह है शांति में निवेश, हर एक के लिए, हर जगह और हर रोज़। और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं श्रीमती निशा गणेश जी। निशा जी, आप मेडिटेशन इन स्कूल्स इस परियोजना में शामिल हैं। अभी हम शांति की बात कर रहे थे, तो क्या बच्चों में, अगर आप जो शिक्षा मंत्रालय हैं, मेडिटेशन इन स्कूल्स, अगर बच्चों में ध्यान और मेडिटेशन की जो संस्कृति है उस

0: इंट्रोड्यूस किया गया है उसको शामिल किया जा रहा है। तो क्या इसका ये मतलब है कि बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर बनाने के लिए मेडिटेशन की ज़रूरत है? क्योंकि आपने कहा शांति को प्राप्त करने के लिए मेडिटेशन एक आधार में से एक है, तो ज़रा इस परियोजना के बारे में कहें।
1: जी, तो हमारा एक टीम है मेडिटेशन इन स्कूल। इस टीम का विजन और मिशन मेल खाता है इस साल के टाइटल से, इन्वेस्ट इन पीस फॉर एवरीवन एवरीवेयर एवरीडे। तो हमारा भी कुछ ऐसा ही विजन और मिशन है। हमारा ये विजन है कि बच्चे जो अशांत हैं, जो परेशान हैं, आजकल बहुत ऐसे ब्रोकन फैमिली से भी बच्चे आते हैं स्कूल्स में जिनको इमोशनल ट्रॉमास है। तो क्या होता है, वो जब इमोशनल ट्रॉमास बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उनका मेंटल फोकस भी अफेक्टेड हो जाता है, तो बच्चे स्टडी नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो बैठ भी नहीं पाते हैं 5 मिनट
0: शांति से।
1: हाँ, वो उनको इतना उनके अंदर वो ओवरथिंकिंग, इमोशनल ट्रॉमा सारा मिक्स्ड होके बहुत कंफ्यूजन, और वो क्या होते हैं बहुत हाइपर हो जाते हैं,
0: अशांत रहते हैं, विचलित रहते हैं।
1: तो ऐसे बच्चों को हम देखते हैं। मेरा हमेशा से ये हॉलिस्टिक अप्रोच रहा है टीचिंग में। जब मेरा अभी कह सकते हैं 26 साल हो गया है, और मेरी रुचि
0: टीचिंग में
1: और मेरी रुचि स्पिरिचुअलिटी की ओर, मेडिटेशन में बहुत सालों से कह सकते हैं 32 साल हो गए 1994 से, तब से मेरी रुचि इस फील्ड में है। और तब से लेके अब तक मैं इस फील्ड में स्टडी करती रहती हूँ, सीखती रहती हूँ, और फिर इस MIS टीम का पार्ट अब मैं हूँ, इसका हिस्सा हूँ। तो इसमें हमने सोचा ये हॉलिस्टिक अप्रोच को अपनाते हुए हम बच्चों को उनका ये रूट कॉज को समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई बच्चा ठीक से बैठ नहीं पाता है, विचलित है, रेसलेस है, या फिर अग्रेसिव है, तो उसका कोई कारण होगा। वो अपने आप ये छोटा बच्चा ऐसे नहीं बिहेव कर रहा है, तो हम समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बातचीत करते हैं बच्चे से, फिर समझ में आता है उसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है, या उसका घर का वातावरण, या फिर बच्चा खुद उसको कोई डिफ़िकल्टी, लर्निंग डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो ये हॉलिस्टिक अप्रोच को ध्यान में रखते हुए, और क्योंकि आजकल हम देखते हैं विश्व भर में मेडिटेशन एक सब्जेक्ट की तरह बन गया है, तो हम यहाँ मॉरिशस में हमने इसको सब्जेक्ट की तरह नहीं लिया, बट ये एक एक्टिविटी पीरियड में आता है, एक एडिशनल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की तरह हमने इसको प्रिपेयर किया है, और फाइनली ये अप्रूव भी हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। तो इसमें हम बहुत, ये मैनुअल हैं, ये टीचिंग मैनुअल हैं, तो इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, लाइक साइलेंस सिटिंग, हम बच्चों को साइलेंस में बिठाते हैं 2 मिनट के लिए, और मैं ऐसा करती हूँ, मैं थोड़ा पीसफुल म्यूज़िक भी चलाती हूँ, अभी यूट्यूब पे मिल जाते हैं, लाइक वाटर साउंड, बर्ड नेचर साउंड, बर्ड चर्पिंग, सॉफ्ट पियानो म्यूज़िक। तो फिर बच्चों को बोलते हैं साइलेंस में, यू सिट इन साइलेंस, सिट स्ट्रेट, सोना नहीं है, बट रिलैक्स द माइंड। तो वो जो दिन भर का, एक तो बच्चे के लिए स्कूल आना एक बहुत बड़ी चैलेंज है, छोटे 5 साल के बच्चे के लिए, 6 साल के बच्चों के लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज है, उठना, फिर बैग्स को लेके स्कूल आना, फिर कई बच्चों के लिए पढ़ाई में उनको डिफिकल्ट लर्निंग

0: डिफ़िकल्टीज़ की वजह से वो चैलेंज रहता है, और कई भी चैलेंज रहते हैं जैसे इमोशनल ट्रॉमास, फैमिली प्रॉब्लम, किसी बच्चे को हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं। आजकल देखते हैं बच्चों में हेल्थ इश्यूज़ भी देखते हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत बच्चों में देखते हैं ऑटिस्टिक प्रॉब्लम्स ये भी देखते हैं। तो फिर कैसे टीचर्स लोग कैसे अब ये बदलते हुए प्रणाली में अपने आप को फिट करेंगे, और कैसे बच्चे को शांत करके उनको फोकस एंगेज करेंगे, उनका फोकस बढ़ाएंगे। तो ये एक मेथड जो काफ़ी ठीक से काम करता है, बच्चों को शांत काफ़ी हद तक करता है, एटलीस्ट ज्यूरिंग द क्लास।
1: और आजकल हम देख रहे हैं कि स्कूलों में एक ऐसी समस्या है जो सोशल मीडिया और हर रोज़ के जीवन का एक भाग बन चुका है, वो है बुलिइंग।
0: जी,
1: वो चाहे प्राइमरी स्कूल का हो, सेकेंडरी स्कूल में हो, ये बातें हम आज से पहले फिल्मों में देखती थी।
0: जी,
1: लेकिन आजकल मॉरिशस में, चाहे वो स्कूल के अंदर हो, चाहे स्कूल के बाहर हो, बस स्टेशन में हो, बच्चों में बुलिइंग की जो एक कल्चर स्थापित हो चुकी है, उसको भी इस परियोजना के साथ हम नियंत्रित कर सकेंगे।
0: जी, तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। इस बुक में ऐसे एक्टिविटीज़ हैं, सिटिंग इन साइलेंस, ब्रीदिंग टेक्निक्स, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करेंगे, थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, फिर यू विजुअलाइज ए पीसफुल स्कूल, यू विजुअलाइज ए पीसफुल फैमिली, फिर बच्चे उसको ड्रॉ करेंगे, और भी कई एक्टिविटीज़, जैसे एक पीस गार्डन, पीस कॉर्नर स्कूल में, कॉलेजेस में ये सारा प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। तो ये सब हम करते हैं ये बच्चे को वो अवेयरनेस दिलाने के लिए कि ही शुड फोकस ऑन हिज सोल पावर टू गेट इनसाइड, टू बिकम इंट्रोवर्ट। हम धीरे धीरे बच्चे को अपने इनर वर्ल्ड में लेके जाते हैं। अगर हम उनको बच्चे को इंट्रोवर्ट कराएंगे तो वो थोड़ा थोड़ा साइलेंस में बैठने लगते हैं, और उनका रुचि भी आता है क्लास में बैठने के लिए, बिकॉज बच्चे को हर वक्त पढ़ाई करना पसंद नहीं है, तो ये एक एंटरटेनिंग ब्रेक भी हो जाता है साथ साथ में। उनको अच्छा लगता है, उनको खुशी मिलती है, उनको लगता है टीचर इज़ गिविंग अस ए ब्रेक टाइम ड्यूरिंग लर्निंग टाइम, तो उनके लिए ये बहुत खुशी उनको मिलती है। तो क्या होता है, ऐसे बच्चे थोड़ा थोड़ा थोड़ा साइलेंस में आते आते पीसफुल स्टेट को टेस्ट करते हैं। तो उस स्टेट में जब बच्चा आते हैं तो थोड़ा सा उसको कुछ सिखाते हैं, वैल्यू बेस्ड उनको सिखाते हैं कि जब आपको आपका दोस्त कुछ ख़राब बात बोले तो आप, ये आप पे द पावर इज़ योर्स, उनको पावर मत देना कि वो आपको गुस्सा दिलाए, ये आप पे निर्भर करता है। आप, यू कैन चूज़, आप रिएक्ट करेंगे, आप उसको मारने जाएंगे, या फिर आप साइलेंस रहेंगे, यू मूव अवे फ्रॉम दैट बुली, चाइल्ड हु इज़ बुलिंग यू।
1: और ये जो परियोजना है ये सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों स्कूलों में चल रहा है?
0: दोनों में, हाँ।
1: तो जैसा कि अभी निशा जी ने बताया कि ये जो परियोजना है मेडिटेशन इन स्कूल्स, इससे बच्चों में एक तो शांति से बैठने की, साथ में उनमें जो एक विचलित प्रवृत्ति होती है उनका जो ऐसा एक व्यवहार होता है जिससे कि उनको भी ना खुशी मिले और साथियों को भी इससे परेशानी होती है, उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और फिर बच्चा अगर ठीक से शिक्षा में, क्लास कक्षा में ध्यान नहीं दे पा रहा तो उसके ध्यान पर भी काम किया जाता है, और इस तरह से बच्चे का सिर्फ जो इंटेलेक्चुअल फैकल्टी है उसको ही नहीं विकसित किया जाता है, बल्कि उसको शांत रहने की जो सीख है वो भी दी जाती है। और ये परियोजना प्राथमिक और

0: संस्कृति की बातें
1: संस्कृति की बातें कार्यक्रम में आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वह ये कि हमारी संस्कृति में शांति हमेशा से स्थापित है, फिर भी आज हम एक अशांत जीवन में अशांत दुनिया में जी रहे हैं। हमारा जीवन काफ़ी परेशान है और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो बच्चे हैं उनमें शांति की जो प्रक्रिया है, शांति की जो संस्कृति है उनमें निहित की जाए। और ये सराहनीय बात है कि आज शिक्षा प्रणाली एजुकेशन सिस्टम में भी मेडिटेशंस को इंट्रोड्यूस किया गया है। और आज हमारे साथ एक शिक्षिका हैं श्रीमती निशा गणेश, जो हमें इस परियोजना के बारे में बता रही हैं और साथ में ये भी समझाते चल रही हैं कि किस तरह से व्यक्ति शांत हो सकता है, किस तरह से शांत रहने से बहुत सारी समस्याओं का सामना करने से हम बच सकते हैं, समस्याएं हट सकती हैं। तो निशा जी, अभी हम बात कर रहे थे कि किस तरह से बच्चों को शांत करने के लिए ये परियोजना चलाई जा रही है, और हमें ये बताइए कि बच्चों को शांत करने के सिवाय बच्चों को वो ठीक से पढ़ाई कर सके, कंसंट्रेट कर सके, इसके अलावा इस परियोजना का लक्ष्य और क्या है?
2: जी, हमारा लक्ष्य ये है इस प्रोजेक्ट से हम चाहते हैं कि बच्चे शांत हो जाए, शांत होके बैठे समझे क्लास में, फिर धीरे धीरे वो क्लास पूरा शांत हो जाएगा। वो अपने टीचर को सुनेंगे और स्टडीज़ में अपना ध्यान लगाएंगे, फिर स्कूल, हमारा विज़न है स्कूल को भी शांत करना, लड़ाई झगड़ा कम करना, ये बुली प्रॉब्लम इसको भी सॉल्व करना, ओबीडियंस ये कम हो गया है, इन सब को प्रमोट करना। और ये जब ये सब प्रमोट होता है, शांति, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स भी अच्छे आने लगेंगे। और ये इसका एक एम ये भी है कि ये बच्चे दे बिकम द मैसेंजर्स ऑफ पीस, वो अपने घर में लेके जाएंगे, शेयर करेंगे, वो अपना एटीट्यूड से, बोलचाल से, रहन सहन से अपने फैमिलीज़ में शेयर करेंगे इसको, तो शायद हो सकता है।
1: और फैमिलीज़ के अलावा घर से स्कूल तक और स्कूल से घर का जो सफ़र होता है, यहाँ पर वे बहुत से दोस्त से मिलते हैं
2: जी,
1: यहाँ पर वे स्कूल बस के ड्राइवर, मतलब कि बहुत से लोगों से इनका मिलना जुलना होता है। अगर वो शांत रहेंगे तो सिर्फ घर तक नहीं, वो इस सफ़र में जितने भी लोगों से मिलेंगे उनके साथ भी ये शांति की जो प्रक्रिया है उन तक पहुँचाएंगे।
2: हाँ, पीसफुल रिजोल्यूशंस बच्चे को आना चाहिए, ये हम उनको सिखाते हैं। फिर धीरे धीरे जब फैमिली तक पहुंचती हैं, तो व्हेन द फैमिली इज़ एट पीस, फिर कम्युनिटी पीसफुल होने लगता है, फिर इवेंचुअली द नेशन इज़ पीसफुल। तो कुछ ऐसा एम है इस प्रोजेक्ट का। और

0: इसकी शुरुआत हो रही है।
1: और बच्चों में प्रक्रिया कैसी है, जो लोग ये कोर्स ये कक्षाएं जिन्होंने अभी तक फॉलो किया है, आप लोगों को क्या दिखा है प्रक्रिया, बच्चों की उनका रिएक्शन कैसा रहा है? अशांत बच्चों को अचानक पकड़कर क्लास में बिठाकर इस तरह का प्रोग्राम चलाना वो भी आसान नहीं होगा, ये आप मानेंगे?
0: जी बिल्कुल आसान नहीं है। पहले बात, हम बच्चों को बोलते नहीं हैं कि हम आपको शांत कराएंगे।
1: जी
0: हम बच्चों को बोलते हैं वी टेक ए ब्रेक, लेट्स टेक ए ब्रेक। तो ये उनके लिए एक इट्स एन एंटरटेनमेंट।
1: ओके,
0: अब तक मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है। और फिर मैं उनको ये नहीं बोलती हूँ मेडिटेशन करेंगे, या मैं बच्चों को बोलती हूँ जस्ट रिलैक्स, वी शैल हैव सम पीसफुल म्यूज़िक, यू लेट द म्यूज़िक फ्लो इनसाइड यू। तो बच्चा वो समझता है वो म्यूज़िक सुन रहा है, तो ही अब्सॉर्ब्स, बच्चे अब्सॉर्ब करते हैं म्यूज़िक को, तो उस टाइम पे वो शांत रहते हैं। फिर जब वो शांत हो गए, देन आई टेक द टॉपिक। तो उस शांति के माहौल में बच्चे सुनते हैं, दे गेट एंगेज्ड। हमको चाहिए एंगेज्ड बच्चे क्लास में। तो मैंने ये नोटिस किया, ऐसा करने से बच्चे सुनेंगे। फिर मैं हर सब्जेक्ट के बाद ऐसा करने लगी। पहले शुरू शुरू में मैं अपना क्लास की शुरुआत ऐसे करती थी सुबह। फिर क्या हुआ, मैंने देखा आफ्टर द रिसेस टाइम फिर बच्चे दे आर टू एजिटेटेड, रेस्टलेस हैं, उनको फिर से शांत कराना पड़ेगा। तो मैं दो बार करती थी, सुबह और आफ्टर द लंच टाइम। फिर मैं देखने लगी विद टाइम कि अब हर सब्जेक्ट के बाद करना ज़रूरी बन गया है।
1: और फिर एक तो आपने कहा कि बच्चों को आप एंटरटेनमेंट का नाम लेकर इस कक्षा को शुरू करते हैं, जिससे कि उनकी रुचि इसके प्रति बढ़ती है। अब क्या क्या टेक्निक्स, क्या क्या टूल्स हैं आपका बच्चों तक ये संदेश पहुंचाने के लिए, शांति का संदेश, क्यों शांत रहना चाहिए, शांति से इंसान को क्या होता है, कैसे बच्चों को एहसास दिलाते हैं इस परियोजना के अंतर्गत कि हमारा समाज या बच्चों में जो परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं वह अशांति की वजह से है, कोई तो टूल्स चाहिए बच्चों के अप्रोच के लिए।
0: जी तो हम स्टोरीज बहुत यूज़ करते हैं,
1: कहानियों के माध्यम से।
0: हाँ, कहानियां बच्चों को सुनाते हैं, जिन कहानियों में जैसे खराब, जो लोग खराब करैक्टर्स होते हैं उनका बुरा हाल होता है, और जो लोग अच्छा पॉजिटिव रहते हैं वो दे लुक लाइक दे आर लाइक एंजल्स। तो हम बच्चों में ये पॉजिटिव ट्रेट ज़्यादा, उस पॉजिटिव साइड को पकड़ते हैं और वो उन पे फोकस डालते हैं कि बच्चों को वो पॉजिटिव कैरेक्टर्स, पॉजिटिव हैबिट्स को अपनाना है। तो यू विल बी लाइक ए हीरो, यू विल बी लव्ड बाय एवरीबॉडी। तो बच्चे को अच्छा लगता है, दे लाइक टू बी द हीरोज, तो उनको समझ में आता है। ये एक माध्यम है, हम ड्राइंग भी कराते हैं, कहानी सुना दिया तो उसके बाद वो लोग ड्राइंग करेंगे, उनकी बहुत रुचि रहती है ड्राइंग कलरिंग में। और जैसा हमने कहा, थोड़ा गाइडेड मेडिटेशंस लेते हैं, छोटा छोटा 2 मिनट्स का। अभी हमारा रिकॉर्डिंग भी हो रहा है गाइडेड मेडिटेशंस का।
1: तो ये किस भाषा में ये मेडिटेशंस, गाइडेड मेडिटेशंस होते हैं?
0: अभी के लिए, अभी शुरुआत में इंग्लिश, फ्रेंच और क्रियोल में है, फिर बाद में अन्य पता चलेगा। हाँ, अन्य भाषाओं में भी हो सकता है मे बी। तो वो अगर टीचर को मेडिटेशन नहीं आता तो टीचर उसको उस मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन को दे कैन प्ले दैट, और साथ साथ में टीचर को भी एक ब्रेक मिलेगा, मेंटल ब्रेक। वो बहुत ज़रूरी होता है,
1: क्योंकि टीचर भी परेशान हो जाते हैं बच्चों के को संभालते।
0: जी परेशान हो जाते हैं, और यू नीड ए मेंटल क्लैरिटी टू टीच। तो ये मेडिटेशन, ये सब एक्सरसाइज करते हुए जो हम बच्चों को जब टीचर्स लोग कराते हैं तो हम भी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, साथ साथ हमारा भी सोचने का प्रोसेस शांत होने लगता है, हम भी उस वातावरण में मिक्स होके टीचर और स्टूडेंट्स साथ साथ मिलकर शांत वातावरण बनाते हैं और खुद शांत महसूस करते हैं।
1: बहुत

बढ़िया। तो जैसा कि आपने सुना, बच्चों में शांति स्थापित करने के लिए, उनमें शांति को एक बार फिर वो इसका अनुभव कर सके, इसके लिए एक परियोजना है मेडिटेशन इन स्कूल्स, जो कि प्राथमिक और माध्यमिक पाठशालाओं में चलाई जा रही हैं। और इस परियोजना को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, किस तरह से बच्चों को इसके ओर आकर्षित किया जा रहा है, किस तरह से बच्चे पॉजिटिवली इस परियोजना से रिएक्ट कर रहे हैं, इन सभी बातों पर हम बात कर रहे हैं। हम प्रोग्राम की समाप्ति की ओर बढ़ेंगे थोड़ी ही देर में। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: संस्कृति की बातें
1: के अंतर्गत आज हमने बात की शांति पर। आज विश्व शांति दिवस है और हम देख रहे हैं कि किस तरह से मॉरिशस में स्कूलों में भी शांति बच्चों

0: में बनी रहे इसके लिए नई परियोजना शामिल की गई है जिसका नाम है मेडिटेशन इन स्कूल्स। और आज हमारी मेहमान रही हैं श्रीमती निशा गणेश जी। और आपने मेडिटेशन इन स्कूल्स इस परियोजना के बारे में और साथ में सामान्य तौर पर व्यक्ति को शांति की ज़रूरत जो महसूस होती है वो उसको कैसे मिल सकता है इस पर बात की। हम चाहेंगे कि प्रोग्राम के समापन की ओर बढ़ते हुए आप हमें ये बताएं कि ये जो परियोजना स्कूलों में चलाई जा रही है इसमें किस तरह से न सिर्फ अध्यापकों का, न सिर्फ मंत्रालय का, बल्कि अभिभावकों का, माता पिता का और फिर समाज का भी एक बहुत बड़ा योगदान, एक बहुत बड़े योगदान की ज़रूरत है।
1: जी, बहुत ठीक कहा आपने। हम अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं एक शांतिमय सोसाइटी, स्कूल, बच्चे शांति फैलाने में, बच्चों में। अभी हम जब ये सब एक्टिविटीज़ करेंगे बच्चों के साथ, वो स्कूल में हमारा ये प्लान है कि विज़न है कि बच्चे स्कूल में शांत रहे, वैल्यूज़ को साथ में लेते हुए चल दें। और अब उसको अगर हम बच्चे को घर पे भेजेंगे तो पेरेंट्स का भी अब इसमें एक रोल आ जाता है। पेरेंट्स, उसका सपोर्ट चाहिए, हमको पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए टू रियलाइज द प्रोजेक्ट टू पीस। ओनली बच्चों को नहीं चाहिए, ओनली टीचर्स को नहीं चाहिए, सभी को चाहिए, सभी मनुष्य को चाहिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है अभिभावकों का, पेरेंट्स का, एक ऐसा माहौल बनाएं बच्चों के लिए जो जिसमें बच्चे को जो भी चाहिए उसको उसके ग्रोथ के लिए, मेंटल
0: घर पर
1: उसके हेल्थ के लिए उसको अपने घर पे मिले
0: ज़रूर। और निशा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप प्रोग्राम में आई, आपने ये सारी बातें सामने रखी, ख़ास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के संदर्भ में। और जैसा कि निशा जी ने कहा कि एक बच्चा वही हरकत करता है जो वह घर में देखता है, जो समाज में देखता है। और अगर स्कूल में बच्चे को शांति सिखाई जा रही है तो बहुत ज़रूरी है कि घर पर भी उसको शांत वातावरण, उसको सही वातावरण में रखा जाए और समाज में भी उसको सही वातावरण में चलने उठने का मौका मिले। और इसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। शांति सिर्फ किसी एक की बपौती नहीं है, शांति के लिए सिर्फ किसी एक की जिम्मेदारी नहीं बन रही कि वो विश्व में शांति स्थापित करे, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और आप सबको अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। संस्कृति की बातें कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।

0: सुनते हैं देश विदेश की खबरें। गीता जी से आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी को हमारा नमस्कार। संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बहस की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम आज दोपहर बाद बरतानी प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम के साथ बातचीत करेंगी। इस बातचीत में मुख्य रूप से शागस द्वीप समूह का मुद्दा और मॉरिशस तथा ब्रिटेन के बीच हुए समझौते को लागू करने पर चर्चा होगी। टेलीफोन पर होने वाली ये बातचीत ऐसे समय हो रही है जब पोर्ट लुइस और लंदन के बीच इस मुद्दे पर बातचीत जारी है। रिजवी के अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन में एक वक्तव्य का आयोजन किया गया जिसका विषय था डिस्कवरिंग लीडरशिप। इसमें कई संस्थाओं के अधिकारियों के साथ साथ प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम भी मौजूद थे। सिंगापुर की सशस्त्र ताकतों के पूर्व ब्रिगेडियर जनरल ओंग बुन हुई ने इसका संचालन किया। लीडरशिप के महत्व, एक संचालक की जिम्मेदारियों और सबसे महत्वपूर्ण कि प्रभावी और सार्थक नेतृत्व के लिए वास्तव में क्या मायने रखता है, इन मुद्दों पर चर्चा की गई। ताइवान के मछली पकड़ने का जहाज एफवी ओएनडा 168 जो आज सुबह बैंदेदाम इलाके में फंस गया था उसे खींचकर बंदरगाह तक ले जाया गया है। ये जहाज कुछ दिनों के लिए मॉरिशस में रुकने वाला था। इस दौरान उसे अपनी मछलियों की खेप उतारनी थी और ईंधन भरना था। हर साल 21 सितंबर को दुनिया भर में विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि शांति केवल युद्ध की अनुपस्थिति नहीं बल्कि आपसी सम्मान, समझ और सहयोग का नाम है। विश्व शांति दिवस का संदेश है कि मतभेदों का समाधान हिंसा से नहीं बल्कि बातचीत और समझदारी से किया जाए। बच्चों और युवाओं के लिए एक ऐसा भविष्य बनाया जाए जहां उन्हें डर नहीं बल्कि शिक्षा, सुरक्षा और बेहतर अवसर मिले। और इथियोपियाई अधिकारियों के खिलाफ लड़ने वाले कई विद्रोही दलों ने अडिस अबेबा में सरकार को हटाने के लिए एक गठबंधन कायम करने का ऐलान किया है। इन 7 दलों ने प्रधानमंत्री अबी अहमद की सरकार पर युद्ध, जरसरहार, सामूहिक विनाश और गरीबी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इथियोपिया की का विघटन कगार पर है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. You're listening to RM3 Radio. Man.

0: बहुत बहुत धन्यवाद हमनी के आज के चर्चा कार्यक्रम संगे जुड़ल हवा सब कोई के नमस्ते प्रणाम। आज लंदी के दिन है तो चला आज हमनी तनी सुन बात करब जा अपन खेती बाड़ी के बारे में अपन फल सब्जी के बारे में। हमनी एगो ऐसन देश में रही लासा जकरा हमनी ट्रॉपिकल आइलैंड बोली लासा ना, और हाइजा परी इतना फल हमनी के मिले ला खाए के। अभी सीजनल फ्रूट्स जन बाते हमनी देखा तो ऐसा जन लीची लेक्सी जन बाते ऊ अभी फरल बाते, आम तो मिला था जौबालाक बाते और ढेर चीज बा, पर दुर्भाग्यवश हमनी के जितना फल मिलेला सकेला ओकर से जस्ती फेकल नहीं जाला बल्कि ऊ पक जाला जैसे हमनी बोलिल जाला। काहे कि जो कीड़ा बाते जो बैक्टेरी जो नैसक बाते और एगो एगो एक ऐसा शब्द मुश डिफ्री एकर बारे में सकेला सुनले हो बा जानेला जो आताके करेला हमनी के जितना फल उस सब बातें। तो आज ये जो मुश डिफ्री वा बातें जो फ्रूट फ्लाई है एकर मैनेजमेंट कैसे करल जाला एकर पर जस्ती हमनी बतियाब जा। फिरों से हमनी के मेहमान है वह फागे दने से सीनियर एक्सटेंशन ऑफिसर श्रीमान संजय शंभू जी, तो चला इनका स्वागत करी ला जा। भाई शंभू नमस्ते।
1: नमस्ते।
0: तो चला आज हमनी बात करब जा मुश डिफ्री। कई जना कंप्लेन करे लन जा बोले लन जा देखा भाई हमार लगे है फलबा हाउ फलबा पर हमरा खाए के कुछ नहीं मिलेला ऊ पिके हो जाला एगो मुश डिफ्री। तो है जो मुश डिफ्री बाबा ऊ कौन ची है और कितना नौजिकी बा?
1: बहुत नाशक है। कौन ची है देखा अनेक तेसे जो पिलुआ बाते ऐसे बाते ता ये भी जो इसको नाम

0: la mouche de fruit yani ki go mouche makia fruit yani ki phal ke attaque karela ta e mouche de fruit kunch karela u jab phal ke dikhela kaise tuhi bola zambalak ba aam ba amrud ba goyav jake bola sa anek prakar ke papai sab anek prakar ke phal ba ta u jake jan female mouche de fruit ba u jake u phal me अपन अंडा पारेला तो जब अंडा पारेला तो फल में तो थोड़ा कुछ नहीं लौकी क्योंकि जो अंडा पारे समय जो है छेद करेला इतना ही छोटा रहेला
1: जी
0: फिन रहेला तो नहीं बुझाला बाद में थोड़ा बुझाला एगो स्पत कहते सूखा गलबाते लेकिन कुछ होला अंदर में जो अंडा बाते अब बाद में जाके एकलो होला जब अंडा फूटेला तो में से एगो लव निकलेला अब जब लव निकलेला तो ओके तो जिए के बा
1: ना
0: जब जब अंडा में से निकलल तो फल के अंदर
1: खाइते
0: जाला हाँ तब खाइते जाला अब कुछ होला जब खाइते जाला तो जन हो जन हो भीतरे में जन खैले बा अब उ में तो गन्ना कुछ नहीं बाते ना हाँ। खाली उगल बाते हाँ। तो जब खाली उगल बा तो एक बगल तो खाली उगल बा दूसर ओर जब खैले बा तो अंदर में गन्ना एगो एगो घाव गए उगल बा सरे लगेला तोहरा कब लौकेला जब मुझ दे फुई आए सकेला आए अटाके कले फुई के तू देखेला जब फल तोड़ला तो देखा तो सरल बा या अंदर में नरम मुगल बा या ओकर रंग बदल दे ले बा तब तोरा बुझाला तब आजे आजे काट के देख बा और जहाँ पर तोरा लौकता नरम मुगल बा तोरा लौकता सरल था तो एगो आसान तरीका बा जाने खातिर मुझ दे फुई के प्रभाव से होल बा कि सकेला दूसर चीज जब बीमारी चल हो तो कुछ करबा हो फल के लेके जहाँ पर ही तोरा हो लोकल बा हो सैम्पटम बा तक काट दिया जब काट के जब खोलबा ताजे तोरा लो कि भितरे में एगो छोटा सुन लव जैसे बोला सा कन्ना कर में गंदा चलता है तो जान जब तो उतना मुझ देखी कि होकर अंडा पारल से वहाँ पर एकलो हो बा तब प्रभाव करता अभी दूसरा प्रश्न पूछता हम बनी बहुत नाशक है कितना डोज रहे जितना मुझ जितना ज़्यादातर जितना फल बाते हमने जो कंसुमे कैला सा कैसे जम्बालाक बा कैसे आम बाते कैसे पपाय बाते गोया बाते सब चीज के अटाके करेला मुझ दे फुई
1: खाली फल वे के अटाके करेला के दूसर जो सब्जी बाते
0: हाय मुझ दे फुई जके बोला सा उ फल के अटाके करेला लेकिन कैसे बोला सा टमाटर टमाटर गन्ना सब्जी में गना ला लेकिन ऊपर निकला था ना तो ओकरो अटाके करेला कैसे बोलब जा कुकुम बोलब सा कोहरा कदुआ तो इसब सब्जी है लेकिन फल में गना ला क्योंकि एगो फ्रूट है तो ऊ जाके अटाके करेला
1: तो है जो मुझे फ्रुआ ओ कहाँ से आल बा है जे के हा मोरिस के लोकली है कि बाहर से आना तो नहीं करवाते ऊ आल बा कैसे
0: जितना मुझ देखी आज हमने जानी ला जाए यहाँ पर मॉरिशस में बा वो सब बाहर से आल बातें
1: जी
0: तो कोनो बहुत आगे से बातें कोनो एगो सकेला 10-15 बरी से आल हुई तो सब जितना बा आनल बातें अब आनल कैसे बातें तो हमने नहीं आने से ना लेकिन कुछ होला जब आयात होला या पोताशों होला तो गन्ला जो जो फल और जो सब्जी पोते होता तो शायद जब आवता तो हाउ कैसे बोलने जब शुरू में जब अंडा पड़ ली माता नहीं लौकेला नहीं बुझाला तो उस अकेला जो हाउ जन फल अनाल रहल तो ओकर में हाउ अंडा ओकर में रहल
1: जी।
0: अब जब यहाँ पर मॉरिशस में आल बा तब अंडा तब भितरे में तो आई लव एक लो गल बा अंडा एक लो गल बा लव ओकर में खाता तो अब लव से कुछ होला लव जब खाले वेला खूब कहना मच्छू हो जला तो वो एगो मक्खी में वो डेवलप हो जला अब गन्ना उतना तो टून सब है फल सब तो आते रहेला है
1: जब लोग नए कर पर तो नहीं जानबे ना
0: हाँ तब अब उतना टून आवे तो अब गन्ना ओकर में खाली चारे गो अंडा हो आज आल हो ओकर में दुगो फीमेल हो दुगो माल हो तो ये पर ही तो गन्ना जब लोग निकल जब ख्वाजे सौन गो अंडा पड़ जा सौ गो सौ दस हजार हो जाए
1: एक हला वो लगभग 100 गो अंडा पारेला
0: हम ऐसे उदाहरण के रूप में बोल रहे हैं लेकिन

0: बहुत अंडा पाले लान्छ बहुत अंडा पाले मक्खी बा सब धेरै अंडा पाले लान्छ उसकेला अपन अपन अपन किसी बेला लाइफ साइकिल में अनेक बार जाके अंडा पारे त अनेक बार जाके छेद करी अंडा पारी त अनेक बार
1: तो भाई शंभू हवी जैसे बोले हवा जो नमूज डे फ्रुआ बातें ओ जो बातें अंडा पारे ला में एगो लव होला तो हबी हबियात बोलत रहला खाली मुझ डे फ्रुवे जो बातें फल के जैसे हमने देखी ला सा ऊपर से पीके होला अंडा से लव बातें कि दूसरा बीमारी और सकेला होई
0: दूसरा चीज भी बात अनेक अनेक प्रकार के बीमारी है कोनो बीमारी दाग की तरह लौकेला एगो एगो एगो एगो निमन एगो उदाहरण दे देला कैसे केला बात है
1: जी
0: तो दिखबा जोन केला बात है जोन पकता तो देखबा बाहर से उकर में वो काला रंग
1: करिया
0: पहला था चिपवा चिपवा होला तब बहुत करिया जला तो वो एक बीमारी से होला उके बेला बनाना फ्रेकल डिजीज तो ऐसे ही अनेक प्रकार के बीमारी बातें कैसे एंट्राक्नोज बातें वगैरह वगैरह लगाल बातें तो वो सब होला
1: जी।
0: और पिलुआ भी अनेक प्रकार के पिलुआ है लेकिन मुझ देखिए कि हर एक खासियत है वो अपन अंडा जाके पारी अंडा इकलू हुए लव जनबा ओकर अंदर में खाए तब फल सरे लगी और जैसे तोरा बोली जितना अंडा पारे लंच जितना कुछ जाके जितना हला जाके
1: हाँ
0: जितना हाँ तो बहुत दिगा करेला एगो एगो एगो सब्जी के खेती ले जा एगो सब्जी के खेती में आज एगो निमन एगो योजना नहीं रही मुझ देफी के खिलाफ जैसे कि वो किसान 40% तक ओकर गन्ना ओकर उत्पादन खो दे अब आज फल के लिए गन्ना फल यानी कि जैसे आम वगैरह बात है तो ओकरों में बहुत ओकर में सकी आई
1: तो है जो मुझ देफी वो बात जस्टी कौन फल के आताके करेला हावी मोरिस के कॉन्टेक्स्ट में हम बात बोल रहे थे
0: हाँ तो अब मुझ देफी अनेक प्रकार के खासकर जो फ्रूट ट्रीज ओकर फल के अफेक्टे करेला ओके बोला सा बात हो सेगा 240 हाई जो मुजदेफी बा आगे मॉरिशस में रहल
1: अच्छा
0: बहुत बहुत साल आगे रहल लेकिन उस समय कृषि मंत्रालय के जो योजना द्वारा जो जिफो का लंजा ओके मॉरिशस में से सकल सकलन सा ओके कैसे बोला सा इराडिकेट कर दे ओके निकाल ओके सब मुके मुआ दे
1: अच्छा
0: तो हमने लगे तब हमने रहल लेकिन एगो लगभग लगो 10 साल लगभग होल वो जो मक्खी बात है वो फिर से आल
1: अच्छा।
0: अब जब फिर से जब आल तब से तब कोई बट गलवा ही पर अपन खड़ बना ले लेवा तब सबके नाश करता तो ये जो मक्खी बा जैसे बनी चला था जो फ्रूट ट्रीज के फल बा कहे आम के हो जैसे बनी सांबाला के हो कोई आप के हो पपाय के हो ये सब के अताके करेला
1: अच्छा हाजा परी तोहर से पूछते खाली फलवे के वो अताके करेला के गौचवे के पत्ता के
0: नहीं मुझे देखिए खाली फल के अटाकेला पता के नहीं
1: अच्छा।
0: सिर्फ फल के लेकिन हाई जोन मक्खी बाद 240 ये ज्यादा तक गन्ना फ्रूट ट्रीज के फल के अटाके कला लेकिन आज गन्नों के खाए के नहीं मिला था खाए के नहीं सत्ता जो तक खाना नहीं माफ कीजिएगा वो गन्ना के अब फ्रूट ट्रीज के फल नहीं मिला था अंदर अंडा पारे के तब वो सकी जाके सब्जी के फल में भी सकी जाके में पारी
1: अच्छा
0: हाँ जाके नहीं मिली हूँ वहाँ पर
1: अच्छा।
0: लेकिन मॉरिशस में जैसे जाने लगा हमने के सोच में जब सोची सा पाकिस्तान 240 जो मक्खी बात है कुंज का ताकेला था आम आम के सोची ला सांबला के सोची ला अमरूद के सोची ला लेकिन हमने किसान नहीं बुलाए कि हमने के जंगल में एगो ऐसा एगो फल बा जो मॉरिशस के चारों ओर में फैलल बा वह गोयाब दिशीन
1: जी
0: यानी कि जब एगो योजना सोचब सा या जैसे जगह कितना नाशक है तब कि चला ये भी सोचे कि ओकर कितना घर बात है
1: अच्छा
0: कहाँ कहाँ अंडा पा रहता तो वहाँ वहाँ अर्थात कुछ बाकी वहाँ वहाँ पिपले होता ना तो जितना जंगल बात है जहाँ जहाँ है गोयाबेशन बा तो वहाँ से कि अंडा पा रही तब वही देखी ला सा कबू कबू गया देशन चुन चुन के लेके तब दिखाब सा ए पिके वाल बाकी नहीं तब खाब सा तो हो ही है
1: ये गो जैसे हमने बोले रहा था वाई मिनिस्ट्री हो बाप

0: पाओ इधर जैसे देखा तो हमने जब देखा था ऐसा तब पता चली ना
1: हाँ,
0: तो जो साइंटिस्ट हूँ सब रिसर्चर्स आप लोग हवा जाता कैसे करेला कैसे ओकरा जा माने कि हाँ
1: तब पहचान करे के ऐसे साधारण रूप से जैसे देखा अंडा से जब पहचान नहीं हुई कोई ना

0: जोन बाती
1: हाँ में एगो फ्लाई है एगो लाई जैसे हमने बोली लाचा हाँ. कितना छोटा बात है कितना बड़ा लिखो ला
0: नहीं छोटा छोटा ही बात
1: छोटा माने हाँ. कि कितना एगो लाई जो नॉर्मल
0: एगो मक्खी जो देखे ला घर में उसने उतनी बड़ा उसने हाँ उतनी बड़ा जैसे मक्खी घर में थोड़ा लोग ला हाँ लेकिन उतनी ही बड़ा रहेला और पूछा हाँ कौन कौन ऐसे मुशदफी बातें था बोलनी है 240 बातें तभी कोई दूसर मक्खी बा ओ स्पेसिफिकमा ओ जन जन हमने के जन फल बा जैसे लालियान है कुकुओ बीच बुझा सा कैसे बा कुकुम बा कोहरा बा कदुआ बा पिपंगाए बा
1: लत्ती जो चीज बा हाँ
0: जितना लत्ती बातें और एक अन्य जुड़ल दू गो सब्जी बातें वो है कोजे जुकिनी
1: जी
0: और पाचिसो यानी कि स्क्वाश ता हाई सब एगो कैटेगरी है क्योंकि अभीते एगो फैमिली है क्योंकि अभीते ताई सब को कोबित लोग के एगो दूसर मक्खी बाके बोला मेलन फ्लाई
1: जी
0: ता मेलन फ्लाई खास कर इस स्पेसिफिक है इन इन्हें जाए आम के ताके अटैक करे उन्हें जाए संभाला के अटैक करे ये आके केवल हाँ केवल सिर्फ जितना आए कोबित के फैमिली बा ओकर में जाके ओकर फीमेल जाके अंडा पारी है और दूसरा चीज के नहीं समय के साथ हमने देखा था जा कि मात्रा जन जन आज कंपैरिजन कर अब सा बात हो सका 240 और है मेलन फ्लाई के तो एक वो खेत में सकेला अब ज्यादा 240 होते हुए कि मेलन फ्लाई होते हुए
1: अच्छा कौन कारण
0: तो 240 के जैसे खाई की मिलता था जैसे पिपले होता ना तब गन्ना तो किसी बोला सा आय लोकाते या इन पोपेटे या हाँ तो उस आके इतना ले गन्ना पिपली होता उसका मात्रा इतना ले बढ़ाता तब घटे कहते हो कि बोला ओके घस खाओ होता ओके टेक्निकल टर्म में बोला सा डिस्प्लेसमेंट
1: जी
0: वो स्पीशीज डिस्प्लेसमेंट तो हाई भी हमने आय जैसे फील्ड में बा फील्ड में हमने आय सब देखी ला जाहूला अब फिर और दूसर कहते मुझे फ्री बातें लेकिन ये लोग गन्ना कमती मात्रा में गन्ना लोकेला लेकिन हवन सा किसी बजाय 240 सब किसी केला जैसे डिस्प्लेस कर दे लेवा तो एक में बा एक मेडिटेरेनियन फ्रूट फ्लाई
1: अच्छा
0: तो ये भी फल के अटके केला अमरूद आम वगैरह वगैरह तो 240 अकेले नहीं बातें तो और एक दूसर बातें कैसे को बोला सा टोमाटो फ्रूट फ्लाई नहीं उसे होता सेराथाइटिस तो वो भी बा वो केवल किसी को नाम में बोलनी टोमाटो फ्रूट फ्लाई तो खाली जाके टमाटर के जाके ओकर में जाके अंडा पारे ला
1: जी।
0: अब यहाँ पर ही हमने के कुछ सच चला समझे कि क्योंकि गल बार एगो कार्यक्रम का निशा टूटाप सुलता पर टूटाप सुलता एगो फ्रूट फ्लाई नहीं है
1: अच्छा
0: ठीक टूटाप सुलता एगो मफ जैसे बोला सा कोई लाई टूटाप सुलता वो रात में निकले ला
1: और इतना छोटा बा
0: हाँ वो भी तो छोटा ही रहा तो रात में निकले ला रात में वो जाके और ओकर दिगा होला इसी बार खासकर टमाटर पर ओकर फल ओकर पत्ता ओकर जो स्टेम ओकर पर होला यहाँ हमने जो बताया ऐसा फ्रूट फ्लाई मुश डे फुई ये दिन में निकलेगा ये दिन में तो रहा लौकी हो फ्रूट फ्लाई आके कैसे टमाटर के देख बता सकेला टमाटर पर आके बैठल हुई तो यानी कि वो अंडा पा रहा था या थोड़ा आम पर लौकी आज घर पे हुआ तो लगे आज आम के पेड़ बा तो कभी कभार आके आम के गन्ना उपजावे का या कब खाइबा तो दिखल कर जाए तो चला लो कि शायद एगो मक्खी आके कभी बैठल बातें
1: जी
0: थोड़ा गन्ना कभी थोड़ा सुन सकेला तन सुन कुलेजन जुन हुई पीला पीला रंग थोड़ा तन सुन हुई तो देखिया सकेला लो कि
1: मानी कि मौसम चाहे वो ठंडा के रही घामा रही लेते रही लीवे रही कुछ रही हर जन फ्रूट फ्लाई बाटे वो अटके हुए जब ले फल बाटे वो करते रही
0: हाँ करते रही लेकिन सर्दी के मौसम में उकर प्रभाव कम रहेला
1: अच्छा?
0: क्योंकि सर्दी के मौसम में जो ऐसे बा सब निकाल इतना हाली गनला आई डेवलपे नहीं होलन सा
1: अच्छा
0: हाँ तो कहते हैं लाइफ साइकिल लंबा रहेला डेवलपे हाली नहीं होलन सा तो कमटी अंडा पड़ जान सा तो सर्दी के मौसम में आई फ्रूट फ्लाई उतना नहीं रहेला गर्मी के मौसम में तब एक अलग बात बा
1: फचत आए होला बाटी
0: हाँ तो फिर और एक चीज चला सोचे के कि ज़्यादा तक हमने के जन जन फल के बात करते हैं जैसे आम कैसे अभी कोई आदिशीन वगैरह बोलते हैं सब तो ज़्यादा तक कब तोरा मिलेगा गर्मी के मौसम में मिला था उस समय जब उस समय मक्खी के ओके ओके

0: मिला था फल अंडा पारे के, यानी कि हमने चला दूसरे तरह की सोचे के आज ओके अपॉर्चुनिटी मिला था अंडा पारे के, यानी कि अपॉर्चुनिटी मिला था ओकर पॉपुलेशन के डुबले करे के ट्रिपले करे के ऐसे।
1: अच्छा जब हाइजन फ्रूट फ्लाई की बात करे थोबा भाई शंभू, तो ये कितना बखत लेवेला माने कि ओकर अंडा पारे के जब लेके उ तैयार एगो लव बना ओकर साइकिल
0: समय दो तीन समय में हो जाला
1: हो जाना है
0: बहुत बहुत हाली होला हो जाला टेम्परेचर पर दिपाना
1: जी
0: सर्दी के मौसम में है सा तो लंबा रही, गर्मी के मौसम में तो छोटा रही, तो सके एक महीना वो लग जाए।
1: अच्छा
0: कौन जी शोक इतना टेम्परेचर बात है।
1: अच्छा ला हमने आगे बढ़ हम जाइए आज की चर्चा कार्यक्रम, बहुत बहुत धन्यवाद हमने संगे जुड़ल हुआ कुछ पूछे के बातें हमने के लाइन खुलल बाती का सौ दो कैंक 402-8085। चला एगो छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक के बाद वापस आए राजा।

0: बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ, आज की चर्चा कार्यक्रम संगे जुड़ल हुआ। आज हमने बतिया था जा फ्रूट फ्लाई मैनेजमेंट जो मुझ डिफ्री बातें हमने देखा था ऐसा कितना टहलका मचावा था वन सा। हबी भाई शंभू बोलन लगभग 200-250 सकेला ओकर से जस्ती कुछ पूछे के बाद त्राका नहीं करिया हमने के फोन करिया 402-4-4-2-8-8-5। हम सुन ली ओकर से जस्ती भाई शंभू।
1: हाँ, जैसे बोली सा अनेक प्रकार के मक्खी है ना, जैसे बोली हमने सवन को बोली तो हम लगभग ऐसे बोली तो आज आप डिटेल में जैसे बोला डिटाइल में जाप सा तो कैसे जब बोली मेलन फ्लाई वो हमने के जो लत्ती बा और पाचिशों और जुकीनी के ओके अटाके करेला ओके ओकर में अंडा पारेला
0: जी
1: तो कहना सा कि 200-300 गो अंडा पारते ओकर मक्खी एक और अपन लाइफ ओकर लाइफ ओकर जितना ओकर लाइफ साइकिल में सकी 200-300 को अंडा पार दे। अब आज देखा सर 240 के तो वो हजारन को देखा था इंचा।
0: बाप रे। हाँ।
1: अब हम तो रहने बोले जैसे सकेला अनेक कुत अंडा पारे।
0: हाँ। हाँ। तो एको फलवा में वो एक हला कितना अंडा पारेला?
1: तो एक कुत में सकी वो
0: डिपेंड करेला। हाँ।
1: सकी 20 को पारे, 15 को पारे, 30 को पारे, 10 को पारे। तब जैसे बोलनी तो गन्ना मेलन फ्लाई बा अच्छे गन्ना के 200 अंडा पारी
0: जी।
1: तो हम गन्ना अब एक कुट में 20 गो अंडा पारी एक कुट में तो एक अर्थात कुंच हो 10 कुट और जाके अंडा पारी। अब आजे 5-5 गो 7-7 गो पारा था तो एक अर्थात हो कि अनेक और ज्यादा कुछ ज्यादा ज्यादा और ज्यादा गन्ना फल के ओकर ओकर में जाके अंडा पारी
0: जी।
1: तो ऐसे ही सकबा एगो कालकिल करे अब कैसे एगो मक्खी सके एक दिन में अनेक बार अनेक फल के में जाके अंडा पारे ये भी।
0: अच्छा, एगो प्रश्न आल हमारे दिमाग में धरल। हाँ, हाइजा परी हमनी के दीपशिका बोलत हवन एगो जना हवन उनका से हमनी बचाए ला जा। हेलो
2: हेलो
0: नमस्ते जी।
2: नमस्ते दीदी, vous connaissez bonne plante Maya Kobi. Namaste.
1: Namaste.
2: Bonne plante en fausse calbas, il gagne beaucoup fleur là-dedans. Mais seulement mon papa trouve calbas sorti. Vous êtes mon pierre rose, les tout.
1: Mais t'es chaman de kiki au cœur mais poule quoi une poule, poule mâle bas khali qui femelle bi bas au cœur mais.
2: Pas connu, il a beaucoup fleur seulement.
1: Non, chaman chaman de kiki, ça qui la mâle bi hoy, ça qui la khali mâle abhi, ça qui la.
0: Hi hi, mais ben quoi quoi chicken.
1: Igana ego physiological stress ça qui la khali mâle hoy.
0: Ah chaji, beaucoup d'honneur. हाँ,
1: सके लाइक वो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस से खाली ज़्यादा गना आए फूल जनवा उमाल हुए तो ये चंगा पहला देखे के क्योंकि आजे मुझदे फ्री हुए तो वो जनवा वो उता फल पर आए ना अब फल कौन फूल में हुला वो फेमेल में हुला।
0: हाँ,
1: तो अच्छा ही चंगा देखे के अब चंगा देखे के कि पंगान आए चंगा देखे के कि सकेला जो फूल बा फीमेल होते हुए लेकिन बहुत शुरुआत में ही मुजदफी होके भोंग देवता
0: अच्छा
1: गिर जाता
0: तो सकेला मुजदफी वो नहीं हो दूसरा प्रॉब्लम था वो।
1: हाँ,
0: कुछ चाहिला करे के बहन के
1: चाहा जाने के कुंज हुए माना तो हम हमने के दफ्तर में हाँ जाके हमने के क्रॉप एक्सटेंशन के वो दफ्तर में जाके तो वहाँ पर ही आए जो ऑफिशियल बाबा से बात करके एक और चीज़ यहाँ पर ही आए मैं जी जो बोला एक बार एक छोटा सुन चीज और बोल देला हमने जब बातचीत करते हैं जाए तो हमने बताया मुश दे फुई मुश दे फुई यानी कि फल पर जाके फल में जाके अंडा पारी ये गाना स्ट्रिक्ट में वाला खाली फल नहीं है जब एक फूल बा जन फीमेल बा तो ओकर में हो फुई बा अब फो में होता देखा अभी ठीक से फल बनल नहीं बा तब भी जाके सकी है जो मुश दे फुई बा जो मुश दे फुई हो वंसा जाके और फल जो अब डेवलप होता फूल में से ओके भोंक के ओके।
0: हाँ, ये प्रश्न तोहर से पूछती लगभग हाँ ये कि एगो मुझ डुफी धरला ऊ जाके अंडा पार देलक एगो फल में अब ऊ दूसर फल पर जाके ऊ अंडा नहीं पड़लक पर ओकरा छुआ दिलक तो ऊ अताके करी मतलब जाके ओकर पर बैठ गलबा सुतल बातें कुछ
1: सिर्फ जब

0: ओके अंडा पड़ला
1: हाँ।
0: तब अब देखा हमने तब जैसे बात कर ली कैसे आम बात गाते हुआ ऐसे कहते हैं तो अम्मा तो लौकीला जम्बालाक लौकीला गुआ देसी चुन के खाप सा लेकिन जन हाई सब्जी के फल जोन बा कैसे लट्टी के बा कदुआ कैसे बुलंजा कदुआ के जब फूल में जब फरी धरा था जब फर धरे के शुरू कर ले बा तब भी आके भोंक के अंडा पार दे तो क्योंकि अब फल तो इतना ले गा नाजुक बा अभी तो डेवलप ही नहीं होगा आके ओकर में बुने हुए कहना आई अंडा पार दे ले बा और लव डेवलप होगा तो ऊ जन फूल फल जन दे अब बा वहाँ पर गिर जाला नहीं मिली लौकी सरगल बा
1: हाँ तो पोलिनाशो होला मधुमक्खी तो जन ख्वाजमा सब होला कैसे होला
0: लोग के अपन रिस्पॉन्सिबिलिटी चला लेके देखा तोरा चला समझे के वो चीज कि मुझ जब एगो पेस्टिसाइड स्प्रे करा तो एगो एगो एगो कैसे बता सको असम्पशन पर है कि जहाँ पर स्प्रे करा तो वहाँ पर लगल पेस्टिसाइड तो वहाँ पर हो जो समस्या बात है वहाँ पर के तो के सुलझाए
1: तो इतना आज एगो
0: विभेद बात है तो वहाँ पर पिलुआ पर लगी तो पिलुआ के मरी ठीक मुस्त हुई जो बा माल और फीमेल बा
1: जी
0: उजन माल बा उ तो हर कारो में आके नहीं घूमेला तो खेत में आके नहीं घूमेला और जन आवेला वो खाली फीमेल आवेला आवेला सिर्फ और सिर्फ एक वो कार्य खातिन आके फल पर फल में अंडा पार के जाके खाली हई बा होकर कार्य
1: जी
0: उ नहीं वहाँ पर आके टूरिज्म ने कहला टूरिस्ट कहते घूमेला नहीं आतान करी कब कोई आके स्प्रे करी तब ओके लगी वो भी दोनों माल फीमेल मुजदफी जोन बा खेत के बाहर में रहना जा झाड़ियों में कैसे किसी बोले वाइल्ड वेजिटेशन जोन बातें वगैरह वगैरह छाँव में रहना सा तब जब फीमेल के ओके बा आके अंडा पार के तब आके खेत में प्रवेश करी फल के चुनी ओकर में अंडा पार दे अंडा पार के उछल जाए वहाँ पर नहीं बा अब जब एक किसान जब ओकर में पेस्टिसाइड स्प्रे कर देता
1: हाँ।
0: तू हमसे बोला अंडा पार के अंडवा भीतरे चल बा मुझदे फुई वा उतर खेत में नहीं बा उतर ढूक के निकल गल कौन प्रोबेबिलिटी बा जितना मुझदे फुई में सक बजा ओके कंट्रोले करे दूसर ओर से सोचा आज पेस्टिसाइड इतना एफिकास रहत मुझदे फुई के खिलाफ तो उतना बड़ी से किसी बोला 20th century से मुझदे कोनो कोनो मुझदे फुई मोगिस में बातें और तोरा बोली 42 आके चल गल फिर से चलाल 1950 से कितना प्रकार के है मुझदे फुई बा मोगिस में तो आज पेस्टिसाइड इतना एफिकास बा तो काहे ना सब पॉपुलेशन का ना डिट्रॉय
1: काहे इस्तेमाल करे थे उनसे तब
0: वहम हमें कल कुछ चीज हमने वो नाम नहीं बोला लेकिन इतना तो रास्ता कब बोले कि एगो समय आ रहा है 2006 में कृषि मंत्रालय के ओकर सहायता से
1: जी
0: बहुत मोगिस में कहला है इवैल्यूएशन ट्रायल्स हो रहा रिसर्च हो रहा कि कैसे सक सब मुझदे फुई के कंट्रोले करे तब जाके कृषि मंत्रालय ही आके बोले हो अंजा कि देखा पेस्टिसाइड एफिकास नहीं है चला बेटिंग करे के ट्रैपिंग करे के क्योंकि तब उतर खेत में नहीं माना तब बेटिंग ट्रैपिंग जब करब तो ओके बुला के वहाँ पर होला थापा में सब मुआ दे जस्ती एफिकास है तो ये 2006 के और हम चला सक बोले उस समय में ऐसा न ऐसा आदमी डालन जा बोलन सा कि हाई ने काम करी चला पेस्टिसाइड की प्रयोग करे के
1: जी
0: तो समय के साथ उस समय तो 2006 के बाद बहुत है समय के साथ देखा इतना स्पष्ट बा कि आजकल जन जन जे जाने ला जे जे जन किसान लोग जाने ला वो लोग लैपटॉप के प्रयोग कर लन जा
1: जी
0: ट्रैपिंग के लंच
1: तो हाइजा परी जब बात करत हुआ जो माल बातें फीमेल बातें तो तुहर देखे में जे जे एक जना के माने कि जोन जे इधर ल मालवा के कंट्रोले करब तो फीमेलवा के माल नहीं मिली वो अंडा नहीं पारी तो ऐसे
0: हो सकेला नहीं ऐसे नहीं चलेला देखा जैसे बोले ट्रैपिंग चला करके बेटिंग और ट्रैपिंग
1: तो जब ट्रैपिंग होला बेटिंग होला कौन के दोनों के ट्रैप करल चला के
0: दोनों के सकल जाए करे लेकिन पहला जो बात करला ओकर पर आएला

0: चलो का लॉजिक समझे जन बोल रहा हा। अंडा एगो एगो मुझे हुई के अंडा पारे खाते चाहला ओके पहला हो मक्खी के माचू हो के फिर चाहला ओके माल फेमेल के ख्वाजे हो के तब फेमेल जाके अंडा पारे
1: जी
0: ठीक। अब गन्ना सौ गो फेमेल मक्खी बा और सौ गो माल मक्खी बा। अब हो सौ गो माल मक्खी के तू लेके पचास गो कर दिला या पच्चीस गो कर क्योंकि उतना जन जन बाकी बा सबके मुआ देला ता जन फेमेल मक्खी बा अब उतना नहीं से कि ख्वाजे करे। अब गन्ना फेमेल आए माल मक्खी की अब इतना ले होकर पॉपुलेशन की जो नीचे कर दिला गन्ना अब दो तीन गो चार गो बाटे हाँ। तक ख्वाजमा हो भी तो कमती हो जाए ना तो यही लॉजिक से गन्ना आज जो मक्खी बा जो माल बा ओके ओके गन्ना मुआ दिल ओके बेटलिंग ट्रैपिंग से मुआ दिल ओकर संख्या नीचे कर दिल तो जो ख्वाजमा बा ओकर ओकर मात्रा ओकर अपने आप नीचे हो जाए कमती हो जाए। जब कमती हो जाए तो अर्थात कौन छोला कि जो फीमेल बा कमती अंडा जाए पारे कमती फीमेल जाए अंडा पारे
1: जी
0: ये होला। अब एक में एक प्रश्न आवेला कि कब जाके है कार्य करब आज तू इंतजार करब कि तुहर खेत में फल है जो सब्जी बा या फल बा फुला गल बा
1: तब
0: या फल धरता तब जाके ऐसा योजना आनब सकेला देर हो गल बा
1: तो माने कि जब रोपाई करत हुआ
0: कम से कम दो तीन हफ्ता फुलाए से आगे चला ऐसा लाथाप डाल दे के जमे माल के जो संख्या बा नीचे गिर जाए।
1: तो रोपाई से आगे कुछ चाहेला करे के जो फल बा जमे ई जो मुझ डिफ बा आगे आता के नहीं करी
0: कैसे पहले जनवली दो तीन हफ्ता आगे चाहला इस सब लाथाप डाल दे के ताकि जन माल बा का संख्या गिर जाए। लेकिन हम बोलती है को किसान जन गंदा ऐसा ऐसा सब्जी रोपेला या फल बाते और ओकर ओकर समस्या बातें मुशदेफी के खिलाफ ओके चलाओ पैमाना से लाथाप डाले के और इस सब लाथाप गंदा अनेक हफ्ता की तरह जला एक रोज डाले के नहीं बा ओकर ओकर लाथाप चला खाली रेनुवले करे के उ सकेला दो हफ्ता पर या सकेला तीन हफ्ता पर निर्भर कैला कैसे लाथाप
1: और फागदाने से मिले
0: तीन महीना दो हफ्ता या तीन महीना पर पहला ओकर रेनुवल मौ करे के इन्हें कि हर हर हफ्ता पर जाके स्प्रेइंग करके नहीं बातें
1: अच्छा
0: ठीक। अब बातें है तब माल के बोल दी
1: हाँ।
0: अब बातें सकबा जा फीमेल के भी ट्रैप करे माल के भी ट्रैप करे साथ साथ यहाँ चला समझे कि कैसे सकब सब ट्रैपिंग करे
1: जी।
0: आज खाली माल के ट्रैपिंग करे के हुए तो सकबा जा एगो फेरोमोन के प्रयोग करे एगो फेरोमोन एगो ऐसा एगो सब्सटेंस है जोन गन्ना सकी मुशदफी खातिर गन्ना सकी खाली माल के आचरे करे तो उ फेरोमोन में आज हमने गो प्वाजों डाल देब सा या तो फिर फेरोमोन की गो स्टिकी ट्रैप में लगा देब सा तो जितना गन्ना हो माल आए तो हमें चिपक के मर जाए ठीक। अब तोरा बोल रही कि एगो मक्खी के चाला मचू हो के तब सकी ख्वाजे करे मचू हो खातिर उ मक्खी के चाला खाए के तब खाए खातिर जो कि चाह एगो प्रोटीन छाला तो एगो प्रोटीन है जो मार्केट में मिलेगा उनका नाम प्रोटीन है तो लाइजेट अनेक प्रकार के हम ब्रांड में नहीं जाब नहीं तो
1: हाँ।
0: मार्केटिंग वगैरह हो जाए तो अनेक प्रकार के प्रोटीन बातें जो जो मिलेगा मार्केट में तो वो प्रोटीन में हमने सकब जा एगो या तो फिर ओकर में प्वाजों मिलावल गलबा या सकब सा एगो चीज मिला दे ओकर में तब आज ओकर या तो फिर एगो लाथाप एगो स्टिकी थाप के करीब सकब से डाल दे तो ओके जब आश्चर्य करे तो मर जाए या तो फिर कोनो कोनो पत्ता के नीचे भी सकब सा जहाँ किसी बोली मुझ देखो तुहर खेत में नहीं रहेला
1: जी
0: वो बाहर में रहेला झाड़ियों में रहेला वहाँ पर लुकाल रहेला आई छाँव में
1: जी
0: तो हम बोलती आज सकबा जा हर कोई के खास कर जो सब्जी रोपा तो बात तुहर व्यजी बात है लेकिन तुहर जो बोझी बात है बाउंड्री बात है तुहर खेत के वहाँ सकबा आज तनि सुन आए मान्योक रोप दे तनि सुन मकई रोप दे या फिर कोनो आए लीमो के पेड़ डाल दे पत्ता के तरे डाल दे
1: ये सब रिपेलेंट तनि सुन बातें कुछ हो
0: करना लेकिन अथाकता सकी काम करे कैसे तुलसी के पौधा बा तुलसी के पौधा जो मुजदफी जो फल के बा ओके आश्चर्य करेला
1: अच्छा
0: आज वहाँ पर रही तब मक्खी वहाँ पर आए पास में आज को लाथाप डाल दे ज्यादा इफिकास हो जाए
1: तो एक ये सब जो नाथाप के बात करे थे वह सब फागे देने से मिले हम जानी लाइगो एगो लाइक एगो छोटा सा लकड़ी बाटे वो एगो
0: मैट ब्लॉक
1: हाँ।

0: Matt Block farige Olsenai Mauritius me jetta jan pheromone ba ya protein hydrolyzed ki ko batte ya sticky trap batte jan pheromone batte milawal galbatte sam market me mili la lekin hamne ke krishi mantralay dwara entomology division batte ta olog bhi ho Matt Block ai moved me de wilanja
1: chi
0: Moved me de wilanja ta I jan Matt Block ba I shuru me jan bolni sa bak tro sera do salis okar katin ho to hal lagi aje am ke per ba zambala ke per ba guyab de sin guyab ke per ba aisan aisan per ba te isi bila sa fruit trees
1: ji
0: ha ta krishi mantrale se sampar ka kya entomology division se ta huma se stora se ki ho Matt Block mile aur bhi ek solution bhi de wilanja o protein hydrolyzed par adharit ha ta okar me déjà que poison minéral batte ta ok ça va déjà pas taquer ta remé à de la garde ba j'ai ces bonnes charrières mais local là ça ta ok pas taquer ta dal de ba ta jeune mouche de fruit batte mal femelle de nous aké au calme khai lagi ta mar jaye
1: acha
0: ho mat bloc ki ab dher halam dikhila ki admi log leke ok kisi bola kulu leke thong de lanta ha gonchi pat humne bolte aise kare ki halaki देखा एक दो को डालेंगे बात समय तक बात है ना है? हम बोलती एगो एगो प्लास्टिक के बोतल लेके एगो खिड़की है बनाए के
1: काट के
0: हाँ काट के तैसे मगर लेकिन खिड़की के जब बनाई बात आओ कि काट के निकाल लें दिया कंप्लीटली ऊपर के भाग के एगो ओवा कहते ऊपर कर दिया ताकि जब पानी बरसी तब पानी अंदर नहीं आए
1: जी
0: तब भीतर में एगो रस्सी भेज के खिड़की पर निकाल के तो हम मार्ट ब्लॉक के बांध दिया तब मार्ट ब्लॉक के अंदर डाल के खिड़की के जनसुन ऊपर कर दिया खींच के तब जन बूसों बा ओके से लेके सब जाओ रस्सी पर सेरे कर दे तब आपने लटकल रही
1: जी
0: तब वो बोतल के लेके वहां पर ही एक पेड़ के नीचे जहाँ छाव बा लगा दिया तब तोरा लो कि कैसे मक्खी आके अंदर प्रवेश करके दिख पा कितना मक्खियों का में मरेला हजारन के हजारन और कितना हाली भरेला
1: अच्छा।
0: तब तोरा पर ही बोतल के खलिया के
1: जी
0: तब कैसे शुरू में बोली लाथाप के रेनुवले कर लला तब ऐसे नहीं को मार्ट ब्लॉक सकेला तीन महीने तक सकेला ज्यादा ही आज एक घमाऊ सब ने लगत हुई तब जैसे ज्यादा ही चल रहा है तो तोरा लोग की जब ले मक्की की पकड़ता तीन महीना चार महीना तक तो हवे काफी बात है तब बाद में सकबा जाके फिर से ओके रिन्यूवले कर दे
1: जी तो चला हमने अस्पेरे करे थे जा ही आशा करे थे जा कि जितना जना अभी हमने के स्वीव करे थे जा तो जो मुश्ड फ्री वा बातें हमने यही आशा करे थे जा कि लोग के लगे नए बातें और जो बात है तो अपन प्रिकॉशन सब लिया हमने के सुनत हुआ फागे के संगे जुड़ल रही है चला एगो छोटा सा मिस कॉल ब्रेक के बाद फिर उसे वापस आए राजा

0: बहुत बहुत धन्यवाद चचेरा फिरों से हमने संगे जुड़ल हुआ आज की चर्चा कार्यक्रम में मुझ दे फ्रीवा बाते बाप रे बाप कितना फचत करेला कितना नुकसान पहुंचावेला हमने के जितना फल बाते हबी आम त मिलता लिक्सी मिली हबी लोगानवो मिली हमने जानिया सब बिबासु सब हमने ढेर चीज हमने लगे मिलेला जो सीजनल फ्रूट्स बाते निमन से चाहेला खाए के भरपूर लेकिन जब उमे अंडा पार देवेलन सा ई मुझ दे फ्रीवन त नहीं सक पसा खाए त अभी भाई सबू हमार दिमाग में एगो प्रश्न बाती धरला एगो खेतीहर उ हबी जनलक कि जन पेस्टिसाइड उ डलते जाता उ कोनो काम में नहीं आवता तो उ अब कौन ची करी जैसे बोले हुआ ट्रैप बाते जन कोनो ट्रेनिंग बाते
1: हाँ हाय जितना खेतीहर लोग बा सकें जा हमने के क्रॉप एक्सटेंशन के दफ्तर संगी संपर्क रखे और जन ऑफिसर बा वहाँ पर ही या तो वहीं पर जाके वहीं सकी ऑफिसर थोड़ा अगर एक्सप्लेनेशन दे कुछ चाहला करे के दूसरा सकियन आके खेत में डेमोन्स्ट्रेशन भी करे यानी कि जितना योजना बोला था जा और एक चीज़ बाकर पड़ा जितना जितना योजना सकल जाए करे उसे कि खेत में आके डेमोन्स्ट्रेशन एक्सप्लेनेशन ही नहीं डेमोन्स्ट्रेशन भी करे थोड़ा ऐसे थोड़ा तोरा लौकी कैसे काम करता ऐसी सब स्ट्रेटजी
0: जब लौकी जब बचायन तब लोग के हाँ पता चली कि हाँ
1: देर हला जब ऐसे जब बातचीत के ला जाता सोचला का बचाता नहीं
0: जब नहीं दिखबा ना तब लिखा
1: दिखबा जाता या तो फिर ऐसा नहीं है तो डेमोन्स्ट्रेशन बोली ना या तो फिर तोरा सकी लेके जाए ऐसा एगो खेतीघर के पास जो ऐसा योजना वो करता ओके कंडक्टर टू बोला सा हमने सकें जा खेतीघर लोग के लेके जाके ऐसा खेत में एगो विजिट भी करे ताकि वो लोगों के एक्सपीरियंस मिली कैसे दूसरा कोई कराता यहाँ पर ही हम और कुछ हाँ ट्रेनिंग भी बात है तो उसा की तब ऑफिशे ही खातिन सब ऑर्गेनाइज करी यहाँ पर ही और एक चीज जितना खेतीहर लोग बा देखा हम बोलनी लाथाप बोलनी बेटिंग ट्रैपिंग पोटिन हाइड्रोलाइजेड वगैरह बोलनी जा एक में और एक चीज बा जो एकदम से बेसिक लौकेला में ओकर मूल्य बहुत बात है और जब जो फुई जो फल बाते पिके हो गल बाते तब कुछ बोलने जाओ का मैं तब 20 गो अंडा हुई ना 25 गो सके अंडा हुई तब आज पिके हो गल बाते तक ना कदुआ के खेत बा और पिके हो गल बाते अब खेती हर जब खेत में आवता तो के लौका तब पिके होल बा लेकिन छोड़ देवता फल के हुए पड़े तब कुछ होला तब वहाँ से तब 20 गो अंडा में फूटी 20 गोंडा में से 20 गुलाब निकली 20 गुलाब में से 20 गो मक्खी निकली अब 20 गो मक्खी में से सकेला 10 गो मक्खी फीमेल हुई 10 गो माल हुई अब देखा
0: 20 गो अंडा से
1: 10 गो फीमेल अंडा आज पारी तो कितना दूसरा होगा अब हम तब एक गो फीमेल था दूसरा गो अंडा पारी तो 10 गो फीमेल आज निकला लोग में से तो 200 वह देखा कितना होगा 4000
0: मतलब ये निमन से चाहेला सैनिटाइजेशन करे के
1: हां त जन खेती हर बार अब ओकर खेत में लौकाता मुजदफी प्रभाव कर लेबा फल पर तो के चला एगो एगो एगो चिपा एगो एगो एगो केज काज ओके बोला सा ऑगमेंटोरियम
0: जी
1: कुंचिया ओकर में एगो एगो छोटा सुन गन एगो नेटिंग की तरह लेकिन नेटिंग इतना ले पतरा है ओकर मेश इतना ले पतरा है कि मुजदफी जन मक्खी बा नहीं सकला निकले तो जितना फल बा जो जानता वो बिगड़ गल बा है मुजदफी द्वारा तो उस सकी हाउ ओकर में फेंक दे बीते अंदर में कैसे प्लास्टिक के बोतल एगो काज बा डाली ला जा तो उसी प्रकार है ऑगमेंटोरियम में हाउ फल के लेके डाल दे तो फल में से तो वो तो लव तो मक्खी बनी मक्खी तो निकली फल में से लेकिन जब निकली तो ऑगमेंटोरियम में फस गल रही वहीं पर ही फसल बात है नहीं सकी बाहर निकले।

0: यानी कि नहीं चाहे खुआसी हो नहीं चाहे अंडा पारी इस प्रकार से जो मुझे कि प्रेशो बातें खेत में वो नीचे हो जाए कमजी हो जाए
1: जी
0: तो हाँ एगो चीज बात है।
1: चलो हमने के आज के चर्चा कार्यक्रम है जी बड़ी समाप्त होला जाए से आगे अभी जितना जना खाली खेतीहर लोग नहीं कहे कि हमने के घर आंगन में भी जैसे अभी ट्रॉप सब मिलेला डाले के
0: हाँ हाँ क्यों नहीं आज तोहरा आए आज घर पे तोहर फल के पेड़ बा आम के पेड़ बा करने चाहो संबालाक बा गुयाब बाते कुछ बाते तो सकबा जा किसी कृषि मंत्रालय संगे संपर्क रखे और एंटोमोलॉजी डिवीजन के पास जाइया समझाइया कि तोहर लगे कौन सी बातें रहता नहीं जाना चाहना और लोगों के चला जाने की कौन सेवा चला प्रदान करे के तब बोलिया जा हमारे लगे इस तरह के पेड़ बाते और में फल बात या सकबा जा फल लेके लेके जाए तो लोग जान जाए जा तब तोरा हो मैट ब्लॉक बन बा सके जा दे या फिर जन सोल्यूशन बा सके जा दे घर पे सकबा जा प्रयोग करे
1: जी।
0: और एक चीज हम बोलती इस तरह घर घर घर की बात किसान लोग की हम बोलती देखा जा पेस्टिसाइड मुजदेफी कंट्रोल करे खातिर एफिकास नहीं है एक में तोहर खर्चा बढ़ाता तोहर आमदनी कम होता और पेस्टिसाइड तोहर स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है। हम बोलती जितना चीज हमने बोलने जा कैसे बेटिंग ट्रैपिंग बा सीखे के जे कराता था अच्छा बात है जे नहीं कराता तोहर पड़ोसी ने कराता था ओके सीखाया क्योंकि कभी कभार कुछ होला हम नहीं कर ला जाता दूसरा के देख ला सा ओके हाउ समस्या बात है तो कभी कभार बजा सकता ओके हम नहीं सीखा हम तो अच्छा हमारे हमारे हम हम कितना समस्या नहीं बात है लेकिन चला सोचे कि जब हमारे जन पड़ोसी बा खेत के वैसा योजना नहीं आता तो हम मुझे हुई कि प्रेशो हम लगी भाई
1: जी
0: तो एक चाहला सबको के समझाए के सबको के बोलती बेटिंग ट्रैपिंग कर जा फागे के उड़ावा जा कैसे चाहला करे के हमने थोड़ा थोड़ा संगे सिखाब जा।
1: तो चलो हमने यही आशा कर रहा था जा कि निमन से सुनना निमन से देखला और निमन से समझ गएला। आज की चर्चा कार्यक्रम है जे परी समाप्त होला। आप सब लोगन के बहुत धन्यवाद भाई संजय शंभू और आवत हफ्ता हमनु फिरों से मिलब सा। नमस्ते प्रणाम।

0: 94.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3
1: एक्जैक्टली 4 PM आइए सुनते हैं समाचार गीता के साथ नमस्कार
2: नमस्कार गिनिशा सभी को हमारा नमस्कार संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बहस की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम आज दोपहर बाद बरतानी प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम के साथ बातचीत करेंगे इस बातचीत में मुख्य रूप से शागस द्वीप समूह का मुद्दा और मॉरिशस तथा ब्रिटेन के बीच हुए समझौते को लागू करने पर चर्चा होगी टेलीफोन पर होने वाली ये बातचीत ऐसे समय हो रही है जब पोर्ट

0: पेरिस और लंदन के बीच इस मुद्दे पर बातचीत जारी है। रिजवी के अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन में एक वक्तव्य का आयोजन किया गया जिसका विषय था डिस्कवरिंग लीडरशिप। इसमें कई संस्थाओं के अधिकारियों के साथ साथ प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम भी मौजूद थे। सिंगापुर की सशस्त्र ताकतों के पूर्व ब्रिगेडियर जनरल ओंग बुन वी ने इसका संचालन किया। लीडरशिप के महत्व, एक संचालक की जिम्मेदारियों और सबसे महत्वपूर्ण प्रभावी और सार्थक नेतृत्व के लिए वास्तव में क्या मायने रखता है, इन मुद्दों पर चर्चा की गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने मॉरिशस से जुड़ी अपनी तकनीकी सहायता रिपोर्ट सार्वजनिक की है। इसमें देश के पब्लिक फाइनेंस प्रबंधन से जुड़े कानूनी ढांचों की समीक्षा के बाद सामने आए निष्कर्ष और सिफारिशें दी गई हैं। ये दस्तावेज वित्तीय जिम्मेदारी से जुड़े कानून यानी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेशन तैयार करने में मदद करेगा। इस रिपोर्ट में कुल 7 सिफारिशें की गई हैं। इनमें कुछ संस्थाओं में सुधार, परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए बजट के बीच में समीक्षा करना और मंत्रालयों के खर्च की अधिकतम सीमा तय करना शामिल हैं। आज दोपहर बाद रोजबेल हॉस्पिटल में बुजुर्गों के लिए एक नई विशेष वार्ड का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी मौजूद थे। अक्यूट केयर फॉर एल्डरली वार्ड में 80 पलंग हैं। यहाँ ऐसे मरीजों का इलाज और देखभाल की जाएगी जिन्हें विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है, खासकर अल्जाइमर से पीड़ित मरीजों की। सिर्फ नई सुविधाओं पर ही नहीं बल्कि मरीजों की उचित देखभाल, स्वास्थ्य कर्मियों की ट्रेनिंग और बुजुर्गों की ज़रूरतों के अनुसार इलाज के लिए एक विशेष प्रोटोकॉल पर भी जोर दिया जा रहा है। और विदेश खबरों में अमेरिका ने अपने नागरिकों से ईरान की यात्रा न करने के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है। इसमें अमेरिकी नागरिकों से कहा गया है कि वे किसी भी वजह से ईरान न जाएं और जो लोग पहले से वहां मौजूद हैं वे तुरंत वहां से निकल जाएं। ये कदम पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव और हालात के और बिगड़ने के खतरे को देखते हुए उठाया गया है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv. You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
2: Aapke sitare.
3: सोमवार 21 सितंबर घड़ी मिला लीजिए 4:04 RM3 रेडियो मनोरंजन पर आप सभी लवली लिसनर्स का वेलकम हम करते हैं। मैं सुमी और आपके सितारे इस प्रोग्राम को लेकर हम आ गए हैं आपका साथ देने के लिए। और चलिए अभी से लेकर शाम के 6 बजे तक आपके सितारे इस प्रोग्राम में हम जो है आपके साथ साथ रहेंगे। और आज हम सोच ही रहे थे कि आज आपके सितारे इस प्रोग्राम में हम किस कलाकार पर बात करें, तब पता चला कि कल यानी कि 20 सितंबर 1948 को जन्म हुआ था बॉलीवुड के पॉपुलर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर का, जिन्होंने हिंदी फिल्मी सिनेमा में अपना काफ़ी नाम बनाया है और काफ़ी बेहतरीन फिल्में दी हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं महेश भट्ट जी के बिलेटेड हैप्पी बर्थडे इनको, इनके सभी फैंस की ओर से। और चलिए उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे और हमेशा की तरह आज भी हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं हमारा साथ देने के लिए। तो चलिए इस खूबसूरत गाने के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं।

0: के सितारे।
1: चलिए ऑन रेडियो मनोरंजन आप सुन रहे हैं आपके सितारे, और आज आपके सितारे में हम बात कर रहे हैं महेश भट्ट साहब की। ऐसे काफ़ी सक्सेसफुल करियर रहा है इनका बतौर डायरेक्टर प्रोड्यूसर, और काफ़ी बेहतरीन फिल्में इन्होंने जो है बनाई हैं। और जहां पर इनके करियर की शुरुआती दौर की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है अपने करियर की शुरुआत की थी बतौर डायरेक्टर जब ये महज 26 साल के थे, जहाँ पर उन्होंने मंजिलें और भी है इस फिल्म को डायरेक्ट किया था जिसमें कबीर बेदी नज़र आए थे। उसके बाद 1979 में आई थी लहू के रंग फिल्म, जिसका गाना थोड़ी देर पहले हमने चलाया। ये फिल्म काफ़ी सक्सेसफुल रही थी। शबाना आज़मी, विनोद खन्ना इस फिल्म में नज़र आए थे। इस फिल्म ने 2 फिल्म फेयर अवार्ड भी जीते थे। यस, और उसके बाद जो है इन्होंने अर्थ ये फिल्म बनाई, अर्थ जिसका गाना अभी आप सुन रहे थे, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। ये फिल्म भी इतनी आइकॉनिक है क्या कहे, और फिल्म का ये जो तराना अभी आप सुन रहे थे, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। और उसके बाद इन्होंने बनाई फिल्म जन्म, और वहीं सारांश, ये फिल्म भी इनके करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक है। और फिल्म में अनुपम खेर नज़र आए थे। फिल्म के रोल को, फिल्म के किरदारों को, फिल्म की स्टोरी को लोगों ने बहुत पसंद किया था। और वहीं पर फिर जब 90s का साल आया, इन्होंने रोमांटिक फिल्मों की ओर रुख किया, और ऑब्वियसली रोमांटिक फिल्मों की बात करते हैं तो आशिकी इस फिल्म को कौन भूल सकता है।
2: RM3 रेडियो।

0: के सितारे।
1: चलिए आपके सितारे इस प्रोग्राम में आप लोगों का प्यार भरा साथ हमें मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। के मैसेजेस के लिए भी धन्यवाद। 5250600 पर आपके सितारे ये प्रोग्राम। आज महेश भट्ट जी पर हम बात कर रहे हैं, और जब महेश भट्ट जी की बात करते हैं तो कैसे हम उनकी उस फिल्म के बारे में ना बात करें जो इतनी पॉपुलर हुई थी। जी हाँ, नाम ये फिल्म जो है 1986 में आई थी। इस फिल्म को महेश भट्ट साहब ने डायरेक्ट किया था। ये फिल्म एक बड़ी कमाल की फिल्म थी। फिल्म में नूतन कुमार गौरव, संजय दत्त, पूनम ढिल्लन, अमृता सिंह, परेश रावल, एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। और इस फिल्म की जब हम बात करते हैं तो फिल्म की स्टोरी तो कमाल की है। फिल्म को लिखा था सलीम खान साहब ने, फिल्म को प्रोड्यूस किया था कुमार गौरव ने। और यहाँ पर जो है ये फिल्म अपने टाइम की पॉपुलर फिल्मों में से एक है। और इस फिल्म की जब हम बात करते हैं तो इस फिल्म का ये जो गाना है पंकज उदास जी की आवाज़ में, उसे हम कैसे भूल सकते हैं।

चलिए नाम फिल्म का ये आइकॉनिक गाना या आइकॉनिक तराना भी आप सुन रहे थे और नाम इस फिल्म के ज़रिए महेश भट्ट साहब ने कमर्शियल फिल्मों की ओर कमबैक किया था क्योंकि इससे पहले

ये काफ़ी आठ फिल्मों की ओर इन्होंने रुख कर लिया था, जहाँ पर अर्थ और सारांश जैसी फिल्में इनके करियर की बहुत कमाल की कर रही थी, वहीं पर कुछ समय बाद नाम इस फिल्म के ज़रिए इन्होंने अपने फिल्मी करियर को, अपने डायरेक्शन को, अपने प्रोडक्शन के करियर को एक अलग रुख दिया और लोगों ने इनके इस अंदाज को भी बहुत पसंद किया। ऐसे महेश भट्ट साहब की बात कर रहे थे, इनकी फिल्मों में जो है काफ़ी सारी फिल्मों में अनुपम खेर जी ने काफ़ी रोल किया है। अनुपम खेर जी के साथ इनकी जो जोड़ी है, मतलब कि बतौर डायरेक्टर और एज एन एक्टर अनुपम खेर काफ़ी जो है लोगों ने पसंद की है। ये दोनों जब भी एक साथ आते हैं तो कमाल ही करते हैं, क्योंकि अभी जो गाना हमने चलाया है ये काश फिल्म का गाना यहाँ पर चल पड़ा है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था महेश भट्ट साहब ने, साथ में फिल्म की कहानी को भी महेश भट्ट साहब ही ने लिखा था। और ये काश, ये जो फिल्म है 80s के सालों में आई थी, और इस फिल्म में जैकी श्रॉफ, डिम्पल कपाडिया और अनुपम खेर नज़र आए थे। और फिल्म जो है, फिल्म में संगीत दिया था राजेश रोशन जी ने। फिल्म के गाने बड़े कमाल के थे, जैसे कि ये तराना।

0: के सितारे।
1: वहीं पर महेश भट्ट साहब ने अपनी बेटी पूजा भट्ट को भी लॉन्च किया और पूजा भट्ट की फिल्मी करियर को जो है एक नया आयाम मिला, एक नया मौका मिला। और पूजा भट्ट की बात करें तो उन्होंने भी 90s के सालों में काफ़ी रोमांटिक फिल्मों में काम किया है। दिल है कि मानता नहीं, इस फिल्म को कौन भूल सकता है, देन वी हैव फिल्म सर जिसमें ये नज़र आई थी, फिर तेरी कहानी याद आई। इन सभी फिल्मों की बात करते हैं तो फिल्मों के किरदार तो अपने आप में कमाल के रही ही हैं, फिल्म की स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छी रही है और वहीं पर फिल्म के गाने भी कमाल के रहे हैं। 90s का साल जो है अपने खूबसूरत गानों के लिए हमेशा से ही जाना जाता है और शायद हमेशा ही जाना जाता रहेगा। और दिल है कि मानता नहीं, इस फिल्म की बात करें तो ऑब्वियसली पूजा भट्ट के साथ इस फिल्म में आमिर खान नज़र आए थे। इस फिल्म में अनुपम खेर भी थे जिन्होंने पूजा भट्ट के फादर का रोल प्ले किया था। और इस फिल्म में ने जो है इस फिल्म ऐसे काफ़ी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुई थी, बेस्ट फिल्म के लिए, बेस्ट डायरेक्टर के लिए, बेस्ट एक्टर, बेस्ट कॉमेडियन, बेस्ट लिरिसिस्ट के लिए भी। लेकिन इस फिल्म को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था अनुराधा पौडवाल जी को। दिल है कि मानता नहीं इस फिल्म के इस टाइटल ट्रैक के लिए।

0: इसलिए सर फिल्म का ये खूबसूरत सा गाना अभी आप सुन रहे थे। ऑब्वियसली इस फिल्म में पूजा भट्ट थी और साथ में नजर आए थे अतुल अग्निहोत्री। और इस समय बहुत सारे हमारे सुनने वाले हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रेडियो मनोरंजन पर हमारा साथ दे रहे हैं। शुक्रिया आपके प्यार।
1: आपके सितारे
0: विजय जी इस समय हमें सुन रहे हैं और शुक्रिया विजय जी आपके इस प्यार भरे साथ के लिए। एंड देन वी हैव कटरबोन से सरिता जी कह रहे कि शो को एंजॉय कर रही है, गाने काफ़ी सारे गाने जो चल रहे हैं इस प्रोग्राम में उनके फेवरेट है, तो बहुत बहुत शुक्रिया सरिता जी आपके प्यार भरे साथ के लिए भी। और महेश भट्ट जी की बात करें तो इस फिल्म को हम कैसे भूल सकते हैं, है ना, सड़क इस फिल्म को कैसे भूल सकते हैं। सड़क की फिल्म 1991 में आई थी, संजय दत्त इस फिल्म में नजर आए थे, साथ में पूजा भट्ट थी, दीपक तिजोरी थे और ये भी 90s के एक सुपर डुपर हिट फिल्मों में शामिल होता है इस फिल्म का नाम।

0: आपके सितारे।
1: चलिए आपके सितारे, अभी तड़ी पार फिल्म का ये गाना सुन रहे थे। इसमें मिथुन चक्रवर्ती और साथ में पूजा भट्ट नजर आई थी। 90s के सालों की ये फिल्म रही है। महेश भट्ट बतौर डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो काफ़ी कमाल के रहे हैं, साथ ही काफ़ी एक्ट्रेस को इन्होंने मेंटर भी किया है और साथ ही इन्हें जो है लॉन्च भी किया है, उनके करियर को एक नई उड़ान दी है। जैसे कि अनुपम खेर जी की बात करें तो अनुपम खेर जी को सारांश इस फिल्म में इन्होंने लॉन्च किया है। राहुल रॉय, अनु अग्रवाल और दीपक तिजोरी, इनको लॉन्च किया गया था आशिकी इस फिल्म के द्वारा। साथ ही दिल है कि मानता नहीं, जी हाँ, इस फिल्म में इनकी अपनी बेटी को इन्होंने लॉन्च किया था, पूजा भट्ट। और अतुल अग्निहोत्री जो है इन्हें मेंटर किया था और लॉन्च किया था महेश भट्ट साहब ने। सर इस फिल्म के ज़रिए नाराज़ इस फिल्म में पहली बार के लिए हमने सोनाली बेंद्रे को देखा था। और वहीं पर दस्तक इस फिल्म की बात करें तो इस फिल्म में मुकुल देव नज़र आए थे, साथ में सुष्मिता सेन नज़र आए थे उसी साल के दौरान जो है, तब 90s के सालों में जब सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनी थी। उसके बाद इन्होंने पहली फिल्म जो की थी दस्तक थी और इस फिल्म में मुकुल देव ये एक्टर नज़र आए थे। वहीं पर काफ़ी अन्य फिल्मों में इन्होंने काफ़ी जो है एक्टर्स को मेंटर भी किया है। जैसे कि अगर हम बात करें कुणाल खेमू की जो नज़र आए थे फिल्म कलयुग में, मलिका शरावत जो ऑब्वियसली नज़र आई थी मर्डर इस फिल्म में, डीनो मौर्या और बिपाशा बासु जो नज़र आए थे राज इस फिल्म में। अभी क्या हो जाए दस्तक फिल्म का ये तराना, मुकुल देव और सुष्मिता सेन इसमें नज़र आए थे।

0: आपके सितारे
1: चलिए दिस इज योर आपके सितारे और इस समय आप रेडियो मनोरंजन पर हमारा साथ दे रहे हैं। आज आपके सितारे इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं महेश भट्ट साहब की। कल इनका बर्थडे था और इन्होंने मतलब कि अगर हम अवार्ड्स की बात करें तो अपने करियर के दौरान इन्होंने काफ़ी अवार्ड्स जो है वो जीते हैं, काफ़ी इनकी फिल्मों के लिए जो इन्होंने बनाए हैं। अगर हम फिल्म फेयर की बात करें तो अर्थ इस फिल्म के लिए बेस्ट डायलॉग की इनकी फ़िल्म को अवार्ड मिला था, वहीं पर सारांश इस फिल्म के लिए

फिल्म फेयर की ओर से बेस्ट स्टोरी इस फिल्म के लिए अवार्ड इनकी फिल्म को मिला था. जख्म इस फिल्म के लिए बेस्ट स्टोरी और आउटस्टैंडिंग फिल्म ऑफ द ईयर के लिए अवार्ड मिला था. वहीं पर कई अन्य इंटरनेशनल अवार्ड से भी ये नवाजे गए हैं. और अगर हम बात करें नेशनल फिल्म अवार्ड्स की, तो हम है राही प्यार के इस फिल्म के लिए मतलब कि स्पेशल मेंशन मिला था इस फिल्म के लिए. वहीं पर तमन्ना, जख्म, गुड़िया और सरदारी बेगम इस इन फिल्मों के लिए भी जो है इन्हें नेशनल अवार्ड मिला है. और अभी के लिए चलिए एक और तराना हो जाए और हमारे इस प्रोग्राम को हम आगे ले जाते हैं.

0: के सितारे।
1: चलिए महेश भट्ट जी के बारे में कुछ बातें करते करते और इनके बनाए हुए फिल्मों के गानों को सुनते सुनते कब ये जो सफर है लगभग अंत तक आ गया पता ही नहीं चला। चलिए फिल्मों में तो ये अपना कमाल दिखा ही चुके हैं, वहीं पर टेलीविजन पर भी इन्होंने काफ़ी बेहतरीन जो है अपना योगदान दिया है। जैसे कि टेलीविजन की बात करें तो 90 के सालों में जो है एक सीरियल आया करता था स्वाभिमान, ये इन्होंने डायरेक्ट किया था। वहीं पर उनके अलावा कई अन्य जो है टीवी प्रोग्राम्स इन्होंने बनाए हैं, जैसे कि अ माउथफुल ऑफ स्काई, कभी कभी सीओज गॉट टैलेंट, इसमें ये जज थे। वहीं पर नामकरण और कई अन्य जो है दिल जैसे धड़के धड़कने दो, पहचान, तू आशिकी जैसे सीरियल्स में काफ़ी सीरियल्स को इन्होंने डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूस किया है। और महेश भट्ट जी ने जो है बड़े पर्दे के साथ साथ छोटे पर्दे पर भी अपना कमाल दिखाया है। इसी के साथ आपके सितारे इस प्रोग्राम के हम लगभग अंत तक आ पहुँचे हैं, तो जाते जाते ये खूबसूरत सा तराना आपके नाम करते हैं। उम्मीद करते हैं आपके सितारे जो प्रोग्राम का सफ़र रहा आपने इसे इंजॉय किया होगा। और आज महेश भट्ट जी पर हमने बात की, कल इनका बर्थडे था तो इनको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे एक बार फिर इनके सभी फैंस की ओर से, इनके सभी चाहने वालों की ओर से। और इस गाने के साथ प्रोग्राम को हम खत्म करते हैं। 5:50 पर आप हमारी धरोहर इस प्रोग्राम को सुन पाएंगे किरण जानकी जी से, उसके बाद बारी होगी एक भोजपुरी गीत की और 6 आप सुन पाएंगे पूरा समाचार MBC रेडियो पर। हमारी आपकी मुलाकात दोबारा होगी 6:30 रेडियो मनोरंजन पर, तो ऐसे ही आप हमारा साथ देते रहें। शुक्रिया।

0: Center, 95.5. North, South, 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station. हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ. हमारी धरोहर.
3: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा.

हमनी 21 सितंबर के जोन विश्व शांति दिवस मनावल जाला ओकर पर बात करब जा। शांति के मतलब के नहीं जानेला। शांति मतलब कि एक पल खातिर नफरत छोड़ के दिल के जोड़े के, कहे कि शांति के शुरुआत हमनी के मन से होवेला। 21 सितंबर के दिन ई जोन दिन मनावल जाला एकर स्थापना यूनेस्को कर लेबा और एकर पहला लक्ष्य है ई दुनिया से नफरत के हटा के शांति के स्थापित करेगी। और एकर स्थापना दूसरा विश्व युद्ध के बाद यूनेस्को कर ले रहल ई मकसद से कि शांति हमनी के धरोहर ही नहीं है बल्कि हमनी के एगो प्रवृत्ति है और हमनी के चाहिए एक पहचाने के। शांति हमनी सब कोई के जन्म सिद्ध अधिकार है। सब कोई के शांति चाहेला। यूनेस्को के एगो नारा है कि जबकि लड़ाई इंसान के मन से शुरू होवेला तो चाहे शांति भी इंसान के मन में ही स्थापित करेगी। आज काल दिखत है जा कि एगो ऐसा दुनिया में जियत है जा जहाँ पर सब कोई बोले रंजा कि उ लोग के जीवन में तनाव बा, उन लोग के बहुत परेशानी बा और सब कोई बोलेला कि उ लोग शांति से जिए चाहत हवन जा। एक पल के शांति खातिर सब कोई तरसता, सब कोई हर बात पर बोलेलन जा। एक पल खातिर हमके, एक मिनट खातिर हमके कम से कम शांति से सांस लेवे दा। ता संयुक्त राष्ट्र के जोन महासचिव हवन उ सब देश से मांग कर ले हवन कि उ लोग अपन जोन आपसी लड़ाई बा ओके रोक दियन जा और ये बात पर ध्यान दियन जा कि सबसे पहला जोन दुश्मन हमने के पा वो है जोन बड़ा बड़ा समस्या उत्पन्न होता, जैसे कि मौसम परिवर्तन, जैसे कि मौसम परिवर्तन से जुड़ल जोन असर हमने पर पड़ा था और साथ में गरीबी बा, भूखमरी बा, औरत और पुरुष के बीच जोन फर्क बा, जोन असमानता बा, कहूँ पर ढेर कोई बहुत ज़्यादा धनवान हवन जा तो कहूँ पर कोई के एक बखत के खाना भी नहीं नसीब होता। तो ये सब के सामना हमने के चाहे मिल के करेंगे और जब सब कोई आपस में एक दूसरे की मदद करी और जोन समस्या वास्तविक समस्या हमने के सामने बा ओकर से निपटे खातिर सब कोई संगे मिल के समाधान ढूँढी तब जाके ये देश में ये विश्व में शांति सच में स्थापित हुई। हमने देख लीजा कि कैसे अलग अलग समस्या जब पैदा होवेला तो सबसे आगे जब मन परेशान हो जाला तो ऐसन में शांति बहुत कठिन हो जाला महसूस करेंगे। कोविड-19 आ रहा, सब कोई सोशल डिस्टेंसिंग के कठिन घड़ी से गुजर लीजा और फिर इधर अभी हाल ही में नेपाल के जो प्राकृतिक प्रकोप गुजरल, मन कितना अशांत हो गल, ये दुनिया कितना अशांति के सामना कर लग, ये सब जब घड़ी देखिला जा, ये सब जो दुर्घटना देखिला जा तब समझ में आवेला कि हमने के जो छोटा छोटा मतभेद बा, जो बिना भेद के नफरत के भावना, ईर्ष्या के भावना, स्वार्थ के भावना बा ओके चाहे त्याग के एगो ऐसन भावना अपनावे के जहाँ पर सबके भलाई ओकर में शामिल रही। जब सबके भलाई के बारे में सोचबा तो एकर से आपके मन के सबसे पहला शांति मिली। मतलब कि शांति कहूँ बाहर नहीं मिली, कोनो रिजोर्ट में, कोनो विशेष देश में नहीं है, कोनो विशेष यात्रा से नहीं मिलेला। शांति अपन मानसिकता बदलला से होवेला। शांति हमने सब कोई में बा, हमने के चाहे ओकर एहसास करेंगे और जो दुर्गुण अवगुण हमने के मन मस्तिष्क में बैठ जाला चाहे ओके सबसे आगे दूर करेंगे। आप सब कोई के शांति दिवस के बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। नमस्ते।

पेश है आज की आज का मुख्य समाचार। सबसे पहले सुर्खियां। लीडरशिप, उसकी असली पहचान, उसकी जिम्मेदारियां और एक प्रभावी नेता बनने के लिए वास्तव में क्या मायने रखता है। डिस्कवरी लीडरशिप नाम के वक्तव्य का संचालन ओंग बुन हुई ने किया, जो सिंगापुर की सशस्त्र सेनाओं के पूर्व ब्रिगेडियर जनरल रह चुके हैं। इस बैठक में कई सरकारी संस्थाओं के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। आज दोपहर बाद रोजबेल हॉस्पिटल में बुजुर्गों के लिए एक नई विशेष वार्ड का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू भी मौजूद थे। अक्यूट केयर फॉर एल्डरली वार्ड में 80 पलंग हैं। यहां ऐसे मरीजों का इलाज और देखभाल की जाएगी जिन्हें विशेष देखभाल की जरूरत होती है, खासकर अल्जाइमर से पीड़ित मरीजों की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने मॉरिशस से जुड़ी अपनी तकनीकी सहायता रिपोर्ट सार्वजनिक की है। इसमें देश के पब्लिक फाइनेंस प्रबंधन से जुड़े कानूनी ढांचों की समीक्षा के बाद सामने आए निष्कर्ष और सिफारिशें दी गई हैं। और जापान में जोरदार तूफान डुजुआन के करीब आने से 12

0: बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। देश के पूर्वी तट में टोक्यो के पास रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। और अब पेश है समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बहस की पूर्व संध्या पर आज प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम बरतानी प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम के साथ बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत में मुख्य रूप से शागस द्वीप समूह का मुद्दा और मॉरिशस तथा ब्रिटेन के बीच हुए समझौते को लागू करने पर चर्चा होगी। टेलीफोन पर हो रही इस बातचीत ये बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब पोर्ट लुइस और लंदन के बीच इस मुद्दे पर बातचीत जारी है। लीडरशिप, उसकी असली पहचान, उसकी जिम्मेदारियां और एक प्रभावी नेता बनने के लिए वास्तव में क्या मायने रखता है, इन्हीं सवालों पर आज सुबह गजवी में पब्लिक सर्विस मंत्रालय की ओर से आयोजित एक विशेष वक्तव्य में विचार विमर्श किया गया। डिस्कवरिंग लीडरशिप नाम की इस चर्चा का संचालन ओंग बोनहुई ने किया, जो सिंगापुर की सशस्त्र सेनाओं के पूर्व ब्रिगेडियर जनरल रह चुके हैं। इस बैठक में कई सरकारी संस्थाओं के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे और इस मौके पर प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। ज्यादा जानकारियां करुणा लालू के साथ।
1: डेढ़ घंटे से अधिक समय तक नेतृत्व की असली परिभाषा, उसकी जिम्मेदारियों और मूल्यों पर गहन चर्चा हुई। सिंगापुर सशस्त्र बलों के पूर्व ब्रिगेडियर जनरल और अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार ओंग बोनहुई ने सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और विभिन्न संस्थानों के अधिकारियों के साथ अपने अनुभव साझा किए। अवसर पर प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम भी मौजूद थे। ओंग बोनहुई के अनुसार एक नेता होने का अर्थ सबसे पहले एक मजबूत मानवीय संबंध स्थापित करना है। नेतृत्व सबसे पहले इंसानों के बीच एक संबंध है और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि नेता के रूप में हम अक्सर इस बात को भूल जाते हैं। जैसे जैसे हम अपने करियर में आगे बढ़ते हैं, कभी कभी हम अपने सहयोगियों और अपनी टीम को महज आंकड़ों, संसाधनों या किसी लक्ष्य को हासिल करने के साधन के रूप में देखने लगते हैं, लेकिन आप स्वयं एक इंसान हैं और जो व्यक्ति आपका अनुसरण कर रहा है वो भी एक इंसान है। जिस क्षण आप इस सच्चाई को गहराई से समझ लेते हैं, उसी क्षण आप जीवन को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं। एक अच्छे नेता के गुण इस विशेष संवाद के केंद्र में रहे नैतिकता, उत्कृष्टता और सबसे बढ़कर ईमानदार। जिन नेताओं का हम सबसे अधिक सम्मान करते हैं वे आमतौर पर वे लोग नहीं होते जो केवल सबसे अधिक प्रभावशाली दिखाई देते हैं, बल्कि वे होते हैं जो वास्तव में अपने व्यवहार में सच्चे और सहज होते हैं। ये संवाद कई अनुभवों और रोचक प्रसंगों से भी जुड़ा है। एक नेता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है दिशा तय करना, मार्गदर्शन देना और अपनी मंशा को स्पष्ट रूप से समझाना। आशा करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री की मेरा आपका उदाहरण देने पर कोई आपत्ति नहीं होगी। 12 वर्ष पहले जब मैं पहली बार प्रधानमंत्री से मिला था तो मैं उनसे मिलकर गहरी छाप और सम्मान की भावना के साथ लौटा था, क्योंकि उनकी दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट थी। जब हमने साथ मिलकर नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन पर काम किया तो ये पूरी तरह प्रधानमंत्री की उस दृष्टि पर आधारित था। उसके बाद से उन्होंने कभी भी उस दृष्टि से विचलन नहीं किया। 12 साल बाद इस कार्यक्रम की पुनः शुरुआत उनके उसी समर्पण का प्रमाण है। यही दूरदर्शी नेतृत्व है, लेकिन इसके साथ साथ ये निरंतरता बनाए रखने की क्षमता भी है। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को सिंगापुर के पूर्व ब्रिगेडियर जनरल से अपने सवाल पूछने का भी मौका मिला।
2: And your junior comes over with something, an idea, laudable idea, according to the person who brings it, and the leader takes the idea and puts it in the drawer.
3: Obviously, that leader did not understand the leadership.
1: मंत्री राज पेंसिया के अनुसार सार्वजनिक सेवा में भर्ती की प्रक्रिया पर भी नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है।
4: Nous devons inclure dans cette année probation là un continuous training and capacity building. Nous devons montrer en matière comme l'intégrité, redevabilité, la transparence, bonne gouvernance. Ça besoin font partie du syllabus de sa première 12 mois là.
1: इस कार्यक्रम के द्वारा

0: एंड अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन के नए लोगो का भी अनावरण किया गया।
1: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने मॉरिशस से जुड़ी अपनी तकनीकी सहायता रिपोर्ट सार्वजनिक की है। इसमें देश के पब्लिक फाइनेंस प्रबंधन से जुड़े कानूनी ढांचे की समीक्षा के बाद सामने आए निष्कर्ष और सिफारिशें दी गई हैं। ये दस्तावेज वित्तीय जिम्मेदारी से जुड़े कानून यानी फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेशन तैयार करने में मदद करेगा। इस रिपोर्ट में कुल 7 सिफारिशें की गई हैं। इनमें कुछ संस्थाओं में सुधार, परियोजनाओं की क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए बजट के बीच में समीक्षा करना और मंत्रालयों के खर्च की अधिकतम सीमा तय करना शामिल हैं। रजनी बिकर को सुनते हैं।
2: बजट संबंधी जिम्मेदारियों पर एक कानून को अमल में लाने के वास्ते कई विकल्पों पर विचार किए जा सकते हैं, लेकिन साथ में कई जरूरतें भी हैं। मॉरिशन सरकार के लिए इस रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इसी मुद्दे की चर्चा की। खोजकर्ताओं ने जायजा लिया सार्वजनिक फाइनेंस के संचालन का मौजूदा ढांचा, अनुशासन और वित्तीय जिम्मेदारी का पालन करवाने के लिए इतना कारगर साबित नहीं हुआ। 2008 से कई बार कर्ज सीलिंग पार हो चुकी, पूर्वानुमान ज्यादा आशावादी होने के चलते योजनाएं फिर से बनानी पड़ी। खोजकर्ताओं के अनुसार इन कमजोरियों से पूर्वानुमान और नतीजों के बीच फासला बढ़ता चला गया। इस तरह वित्तीय जिम्मेदारी और विश्वसनीयता कमजोर हो चली। फिर भी विश्लेषण से पता चलता है कि मॉरिशस ने पिछले दशकों के दौरान आर्थिक विकास को लेकर मजबूत नतीजे दर्ज किए हैं। कहा गया कि मजबूत संस्थाओं और सावधानीपूर्वक मैक्रो इकोनॉमिक फाइनेंस के संचालन के वर्तमान ढांचे अहम उपलब्धियां हैं। ये बजटरी अनुशासन का पालन करवाने के लिए कारगर नहीं रहा। रिपोर्ट में मध्यम अवधि में एक ऐसे कानून का प्रस्ताव है जो एक विस्तृत ढांचे में सम्मिलित हो, साथ में पारदर्शी और संशोधन के लिए मजबूत मेकानिज्म की बात भी शामिल। कारगर तरीके से इसे अमल में लाए जाने की बात कुछ संस्थाओं की सुदृढ़ता और सार्वजनिक फाइनेंस के संचालन पर निर्भर करेगी। IMF की ओर से सरकार को सार्वजनिक कंपनियों के लिए एक न्यायिक ढांचा तैयार करने के वास्ते आमंत्रित किया गया है, ताकि प्रशासन रिपोर्टिंग की बाध्यता और साथ में उसके नियंत्रण और संचालन में सुधार लाए जा सके। इस तरह ये सुझाव रखा गया है कि बजट कदमों को कार्यान्वित करने के लिए मध्य सफर के लिए एक जांच के अंतर्गत नियमित रिपोर्ट कायम की जानी चाहिए। इसके अलावा मिनिस्टेरियल खर्चों की सीलिंग भी कायम किया जाना चाहिए। नए कानून से संस्थागत जिम्मेदारियां और भूमिकाएं स्पष्ट हो सकेंगी। इसके अलावा ऐसे नियम कायम करने की भी मांग पर भी जोर, जो वर्तमान में निर्धारित 80% की कर्ज सीलिंग के अनुरूप हो। अंत में दस्तावेज में ये निष्कर्ष निकाला गया कि इन सुधारों से जिम्मेदारियां मजबूत की जाएंगी, ये नियमों के पालन के हक में होंगे और धीरे धीरे बजटरी रिजर्व के पुनर्गठन में इनका योगदान होगा। इसके लिए उचित तरीके से सुधार लाना और पदों को क्रम में डालना अहम होगा।
1: आज दोपहर बाद रोजबेल हॉस्पिटल में बुजुर्गों के लिए एक नई विशेष वार्ड का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू भी मौजूद थे। अक्यूट केयर फॉर एल्डरली वार्ड में 80 पलंग हैं। यहां ऐसे मरीजों का इलाज और देखभाल की जाएगी जिन्हें विशेष देखभाल की जरूरत होती है, खासकर अल्जाइमर से पीड़ित मरीजों की। मॉरिशस में फिलहाल 18,000 लोग अल्जाइमर से पीड़ित हैं। सिर्फ नई सुविधाओं पर ही नहीं, बल्कि मरीजों की उचित देखभाल, स्वास्थ्य कर्मियों की ट्रेनिंग और बुजुर्गों की जरूरतों के अनुसार इलाज के लिए एक विशेष प्रोटोकॉल पर भी जोर दिया जा रहा है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सिर्फ सुरक्षा का साधन ही नहीं, बल्कि रचनाकारों के विकास के लिए एक मजबूत माध्यम बनाना, यही संदेश वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक डायन टांग ने मॉरिशस की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान दिया। वे गुरुवार को पोर्टविस में थे, जहां कला और संस्कृति मंत्रालय द्वारा एक कार्य सत्र आयोजित किया गया था। इस बैठक में खास तौर पर कॉपीराइट, डिजिटल क्षेत्र और क्रिएटिव इकोनॉमी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। मॉरिशस विश्वविद्यालय और हायर एजुकेशन कमीशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पक्ष में अपनी कटिबद्धता मजबूत कर रहे हैं। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर ग्रीन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी की औपचारिक लॉन्चिंग दोनों संस्थाओं के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर के साथ की गई।

0: गुरुवार को मॉरिशस विश्वविद्यालय में उद्घाटन समारोह लगा। पूजा सुकालू को सुनते हैं।
1: जल संसाधनों को प्रभावित करने वाले सूखे, अचानक आने वाली बाढ़, ऊर्जा संक्रमण और गरीबी जैसी चुनौतियों का सामना मॉरिशस कर रहा है। इन पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियों का समाधान ढूंढने में विश्वविद्यालय शोध महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसी उद्देश्य से सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर ग्रीन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी की शुरुआत की गई है। ये पहल मॉरिशस विश्वविद्यालय और हायर एजुकेशन कमीशन के बीच हुए साझेदारी समझौते के साथ साथ स्वास यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन और नॉर्वे के यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो के सहयोग से शुरू की गई है। प्रोफेसर संजीव सोबी कहते हैं, ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस मॉरिशस विश्वविद्यालय में स्थापित है, जहां पर ट्रेनिंग के साथ साथ शोध कार्य चलाए जाएंगे। इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के छात्र, डॉक्टरेट विद्यार्थी तथा निजी और सार्वजनिक सेक्टर की भागीदारी देखी जाएगी। गैर सरकारी संगठनों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। वेरिना तंड्रायन रघुबा कहती है, हमारा उद्देश्य है शोध कार्य के साथ साथ समाज में भी इसे शामिल करना। इस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में जो भी शोध कार्य हम चलाएंगे, हम चाहते हैं कि हम एक पॉलिसी ब्रीफ के साथ इसे प्रस्तुत करें। इस परियोजना के लिए हायर एजुकेशन कमीशन की वित्तीय मदद प्राप्त हुई है। प्रोफेसर रोमिला मोही कहती है,
2: सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑन ग्रीन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी,
1: हायर एजुकेशन कमीशन द्वारा इस परियोजना का वित्त पोषण किया जा रहा है। आने वाले 4 वर्षों के लिए कई गतिविधियां निर्धारित हैं, जिनमें प्रशिक्षण, शोध कार्य, माइक्रो क्रीडेंशियल्स आदि शामिल हैं। मंत्री कविराज सुकों के अनुसार ये केंद्र मॉरिशस के शोधकर्ताओं और अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं को एक दूसरे के करीब लाने में मदद करेगा। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि इन शोधों का मॉरिशस के समाज पर ठोस और प्रत्यक्ष प्रभाव पड़े। वे कहते हैं, सरकार द्वारा शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे कि ये शोध कार्य आम जनता के जीवन में एक सुधार लाए, विकास लाए, ताकि जलवायु परिवर्तन से जुड़ी समस्याओं का समाधान ढूंढा जा सके। इस साझेदारी के माध्यम से मॉरिशस विश्वविद्यालय और हायर एजुकेशन कमीशन को उम्मीद है कि एकेडमिक शोध से देश को लाभ मिले।
0: न्यूयॉर्क से हमें दिए गए इंटरव्यू में राष्ट्रसंघ में मॉरिशस के राजदूत ने महासभा के 81वें सत्र के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। इनमें महासचिव का चुनाव, जल संरक्षण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक साझा नीति को अमल में लाना और जलवायु परिवर्तन को लेकर देशों की जिम्मेदारी जैसे विषय शामिल रहे। मिलान मिटावान ने पिछले सत्र का भी उल्लेख किया, जिसके दौरान दास प्रथा को मानवता के खिलाफ अपराध घोषित किया गया और साथ में दुनिया के नक्शे में अफ्रीकी महाद्वीप के वास्तविक आकार में बदलाव लाने के वास्ते करेक्ट द मैप परियोजना पर भी चर्चा की गई। उनको सुनते हैं।
3: En principe, avant la fin de l'année, l'élection d'un nouveau secrétaire général des Nations Unies. Et ça, évidemment, c'est une question majeure qui préoccupe tout un délégué pendant les prochaines semaines. On connaît la question de l'eau, une question très importante pour la communauté internationale et non une conférence que les Nations Unies peut organiser en décembre à Abu Dhabi. L'eau de l'eau, en principe, il y a un amendement de résolution qui va adopter l'eau, ce qu'on appelle disaster preparedness. Comment un pays bizarre prépare pour faire face à un désastre. Et dans le même contexte, capable aussi souligner les débats qui poignent l'eau, préparation pour une pandémie. Nous bizarre tirer des sons qui n'arrivaient dans le passé. Une des préoccupations aussi majeures pour nous en particulier et pour les autres îles, c'est ce qu'on appelle sea level rise. Donc, c'est tout l'effet du changement climatique, mais en particulier la montée du niveau de la mer qui menace l'existence même de plusieurs îles. Et on a aussi un sujet qui peut faire l'objet de beaucoup de débats, mais au Cap-Avatan,

0: session précédente et qui pourrait certainement continuer dans cette session-là, c'est ce qu'ils appellent Beyond GDP. Parce que pendant de nombreuses années, en fait, GDP fut l'indicateur principal de beaucoup de questions liées au développement, au financement du développement. Et là, finalement, un début, on a encore tout au début, mais vous avez souligné, de débat sur comment nous visons et non, par les autres indicateurs, comment nous visons assessment de vulnérabilité spécifique de certains États et pas et non un seul critère qui applique à tout le monde et qui est le critère traditionnel de GDP.
1: मॉरिशस में गिनी गणराज्य के नए राजदूत मुरीबा अलैं कुने ने आज दोपहर बाद गणराज्य के राष्ट्रपति धरम गोकुल को अपना परिचय पत्र सौंपा। दोनों देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और समान हितों वाले कई सेक्टरों के बारे में चर्चा की गई। गिश्मा स्थित गायत्री भवन की स्थापना को 100 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर वहाँ 4 दिवसीय पारायण महायज्ञ का आयोजन किया गया, एक ऐसा स्थल जिसने देश के इतिहास को बदलते देखा है और जो अभी भी भाषा और संस्कृति के प्रचार प्रसार का माध्यम बना हुआ है। कई महानुभाव इस विशेष अवसर पर वहां उपस्थित थे। याचना मिश्रा।
2: गिश्मा के निवासियों के लिए गायत्री भवन एक ऐसा स्थल है जिसने इस गांव को बदलते देखा। 100 साल पहले 1926 में गिश्मा में अंबावती कन्या पाठशाला के नाम पर इस भवन की स्थापना हुई। महर्षि दयानंद के मूल्यों को आधार बनाते हुए धर्म और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी शताब्दी के अवसर पर आर्य सभा मॉरिशस की पहल पर 4 दिवसीय पारायण महायज्ञ का आयोजन किया गया। कई महानुभाव इसमें उपस्थित रहे।
3: आज इस समाज के 100 साल मनाए गए, लेकिन हम चाहे न रहें, लेकिन यह समाज 200 साल भी मनाए, ऐसी हम आशा करते हैं, उम्मीद रखते हैं। लेकिन कब ऐसा होगा भाइयों बहनों? तब जब हम स्वामी बन के रहेंगे, दास बन के नहीं रहेंगे। कब स्वामी बन के रहेंगे? जब हम अपनी संस्कृति को ऊंचा रखेंगे, अपनी पोशाक की रक्षा करेंगे, अपने यज्ञ अग्निहोत्र की रक्षा करेंगे, अपने वेदों की रक्षा करेंगे।
4: हमारे देश में आर्य समाज का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। हम सभी जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदू धर्म के प्रचारक सुधारक रहे हैं। हिंदू समाज बर्बाद हो चुका था, उनकी परिस्थिति दयनीय हो चुकी थी, वे अपने अस्तित्व खो चुके थे। ऐसे समय में वे भारत में अपना प्रचार शुरू किया। उन्होंने हिंदू समाज को प्रेरित किया, उनको प्रोत्साहित किया। हमारी प्राचीन गौरव प्रथा को उन्होंने फिर से उठाया, ऊपर किया।
2: 100 साल पुराना भवन अपनी स्थापना के समय के उद्देश्य को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ रहा है, इलाके के एक ऐतिहासिक विरासत के रूप में। इस अवसर पर भवन पर आधारित एक पुस्तक की लॉन्चिंग भी की गई।
1: और विदेशी खबरों में, जापान में जोरदार तूफान डुजुआन के करीब आने से बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। देश के पूर्वी तट में टोक्यो के पास रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। करीब 300 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और ट्रेन सेवाएं रोक दी गई हैं। मौसम संबंधी जानकारियां करुणा लालू के साथ।
5: पूर्व की ओर से आने वाली अस्थिर हवाओं से जुड़े बादल आज रात को हमारे मौसम को प्रभावित करेंगे। कल सुबह भी आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे जो रह रहकर घने हो जाएंगे और बारिश होगी, खासकर पूर्व दक्षिण एवं सेंट्रल प्लाटो पर। दोपहर में भी जहां तहां बादल घेराएंगे और बारिश होगी, खासकर देश के पश्चिमी हिस्से में। तापमान सेंट्रल प्लाटो पर न्यूनतम 15 से 17, अधिकतम 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच, शहरी इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्व की ओर से 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण

और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन पूरा हुआ। इसे आप तक पहुंचाने में हमें लुडोविक का सहयोग मिला है, उन्हें धन्यवाद देते हैं। आपको भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। कुछ ही देर में शोक समाचार सुन सकेंगे।

बिस्वा लेन प्लेनमायों में 45 साल के 45 ईयर ओल्ड के श्री राजेंद्र बालिया, जो विनोद से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनकी माँ लक्ष्मी गुनाबाई बालिया के घर बिस्वा लेन प्लेनमायों से उठाकर प्लेनमायों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 11 AM। एपास सहाय रॉयल रोड गुडलैंड्स में 91 साल की 91 ईयर ओल्ड की श्रीमती दुनवंती सहाय, जो पति से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दिन के 2 बजे उनके बेटे गोय दामगी के घर एपास सहाय रॉयल रोड गुडलैंड्स से उठाकर बागोश गुडलैंड्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 2 PM। मॉरिस मार्टिन स्ट्रीट लेस्पेरेंस पितो में 72 साल के 72 ईयर ओल्ड के श्री आनंद चमन, जो आनंद से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे रंजीव चमन के घर मॉरिस मार्टिन स्ट्रीट लेस्पेरेंस पितो से उठाकर पितो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 11 AM। 74 साल के 74 ईयर ओल्ड के श्री नरेंद्र नाथ राम गुलाम, जो नारायण से ज़्यादा जाने जाते थे और जो प्राइमरी स्कूल में फिजिकल एजुकेटर थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल सुबह 10:15 बजे मुगा फ्यूनरल पॉलर पेचित रिविया से उठाकर लावंचियर की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 10:15 AM। एवेन्यू फ्लोरिस्ट प्लेजेंस रोजिल में 34 साल के 34 ईयर ओल्ड के श्री ऋषि हलकुरी, जो अर्जुन से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके घर एवेन्यू फ्लोरिस्ट प्लेजेंस रोजिल से उठाकर कॉन्लेव्यू की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 10 AM। नंबर 103 सिते गारीबू वाले डे प्रथ में 64 साल के 64 ईयर ओल्ड के श्री राज उजागिया, जो सुनील से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके घर नंबर 103 सिते गारीबू वाले डे प्रथ से उठाकर सिपाही भूले वाले डे प्रथ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 10 AM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।

0: MBC Radio 24 hours a day.
1: सेबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। बुधवार 23 सितंबर को सुबह के 8 बजे से लेकर 9 बजे तक और दोपहर के 3 बजे से लेकर 4 बजे तक वालेंसिया और पेटिकॉन फिनिक्स में और आसपास के इलाकों में जैसे कि मोसलमॉन लेनोआ और पेटिकॉन, मोसलमॉन रिवर एज, सोफिया ब्रांच रोड, मोसलमॉन दामरी और आसपास के इलाकों में। और कल यानी कि मंगलवार 22 सितंबर को दिन के 1 बजे से लेकर 4 बजे तक आर्सेनल और आसपास के इलाकों में, लारूत बालाक्लावा, एवाको और आर्सेनल गवर्नमेंट स्कूल में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना दिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी और सीबी अपने ग्राहकों से क्षमा चाहते हैं और अपना इंतजाम कर लेने की मांग करते हैं।

0: Center, 95.5. North, South, 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: सोमवार 21 सितंबर घड़ी मिला लीजिए शाम के 6:30 बज रहे हैं। रेडियो मनोरंजन पर आप सभी सुनने वालों का स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। एक बार फिर से हम आ गए हैं आपका साथ देने के लिए, आप सभी को एंटरटेन करने के लिए ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मनोरंजन। उम्मीद करते हैं पूरा दिन अच्छे से बीता होगा और अभी से लेकर रात के 9 बजे तक, जी हाँ, हमारा आपका साथ रहने वाला है। खूबसूरत गाने तराने आपके लिए यहाँ पर चलेंगे। नहीं सोचिए जो प्रोग्राम है चलेगा शाम के 7 बजे तक और 7 से 9 बजे के बीच आप सुन पाएंगे दिलों की आवाज़ इस प्रोग्राम को। तो चलिए आज के इस नई सोच की शुरुआत करते हैं रेफ्यूजी फिल्म के इस खूबसूरत गाने के साथ।
4: You're listening to RM3 Radio Mana.

0: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस पार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
1: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी। समझूंगी तुम्हारे होंठों को छू लिया।

0: RM3 Radio. Radio.
1: जी हाँ, कभी कभार लाइफ में काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जिस पर हम अपना बस चलाना चाहते हैं, जिसे हम रोकना चाहते हैं, जहाँ पर हम चाहते हैं कि ये पल, ये वक्त, ये व्यक्ति बस ठहर जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है ज़िंदगी में। बहुत सारी चीज़ें जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है, लेकिन कहते हैं ना कि जो भी होता है वो कहीं ना कहीं अच्छे के लिए होता है। चलिए, नई सोच इस प्रोग्राम से आप जुड़े हुए हैं, आपके प्यार भरे साथ के लिए शुक्रिया।

0: नहीं सो।
1: जी हाँ, यकीनन कभी कभार हम अपने जीवन की डोर उसके हाथ में दे देते हैं, ये सोच कर के वही है जो हमें संभालेंगे, वही है जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। कहीं ना कहीं जीवन में जब हम भटक जाते हैं, थक जाते हैं, रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है, तो बस हर कोई जो है उस परमपिता परमेश्वर की शरण में ही चला जाता है। क्योंकि शांति और सुकून की अगर हम बात करें तो ये जीवन में हमें वहीं पर मिलता है ना। चलो, ऐसे में जब हम इसके बारे में सोच रहे थे तो ये गाना मन में आया जो आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, हनुमान अंश इस फिल्म से लिया गया। चलिए साथ मिलकर इसे सुनते हैं।

चले भावगीतों की बात जब हम करते हैं नई सोच इस प्रोग्राम में ऐसे ही गाने हम चलाते हैं तो ये गीत जो है कहीं ना कहीं डिवोशनल तो है ही कहीं ना कहीं ये आवाज़ इतनी भावपूर्ण है कि हम इसको चलाए बिना रह नहीं पाए। और चले इसी गाने के साथ जो है आज का नई सोच ये जो सेगमेंट है ख़त्म होने को चला और 7 बजे से शुरुआत होगी दिलों की आवाज़ की। तो आप यूँ ही हमारा साथ देते रहे रेडियो मनोरंजन पर।

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
1: मंडे 21 सितंबर, घड़ी मिला लीजिए शाम के 7 बज रहे हैं। रेडियो मनोरंजन पर एक बार फिर से आप सभी लिसनर्स का वेलकम है। मैं हूँ सुमी और यहाँ पर हम आपके साथ साथ हैं और यस, रात के 9 बजे तक हम आपका साथ देने वाले हैं। तो चलिए दिलों की आवाज़ के इस खूबसूरत सफ़र की शुरुआत होने को है, जहाँ कहीं से भी आप साथ दे रहे हैं। वेरी वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। शाम का वक्त है, फैमिली के साथ टाइम बिता रहे होंगे। बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे भी हैं, लिसनर्स ऐसे भी हैं जो नाइट शिफ्ट पर होंगे, काम पर होंगे और रेडियो के ज़रिए जुड़े हुए हैं। बहुत से ऐसे लिसनर्स भी होंगे जो डिनर करते करते साथ दे रहे हैं। तो चलिए, जहाँ कहीं से भी आपका साथ हमें मिल रहा है, आपके इस प्यार भरे साथ के लिए शुक्रिया। नॉट टू फॉरगेट, आप हमें जो है मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपनी डेडिकेशन हम तक पहुंचा सकते हैं ऑन 4028070 एंड फॉर योर मैसेजेस 5250 6200 पर। विल ट्राई के थोड़ी देर के लिए हम हमारे टिकटॉक पेज पर लाइव भी आए। तो चलिए, अभी के लिए साथ में मिलकर आज के इस प्रोग्राम की शानदार शुरुआत करते हैं।

0: दिलों की आवाज़ की आवाज़ दिलों की आवाज़
1: चलिए अभी के लिए तो हमारी आपकी मुलाकात हो रही है ऑन रेडियो मनोरंजन इन योर दिलों की आवाज़। और यहाँ पर आपके दिल की आवाज़ हम तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए यहाँ पर इस समय आपके जो डेडिकेशंस है वो हम तक पहुँच रहे हैं। सुदेवी जी हमारा साथ दे रही है, गुड इवनिंग, आपको भी गुड इवनिंग, थैंक यू फॉर एंजॉइंग द प्रोग्राम। और गाना जाता है आपकी दीदी लालिता के लिए, कुशल फैमिली के नाम, दीदी सुनीता है, शोभा है, साथ में है देवीना, वी हैव कृषय कृष्णी, सभी राम रतन परिवार, सभी कुवारू परिवारों के नाम अगला तराना। और यही गाना हम आपके लिए भी करेंगे। सुदेवी जी आप हमेशा हमारा साथ देती हैं, आपने कहा कि हो सके तो सनम तेरी कसम का टाइटल ट्रैक हो जाए, तो चलिए यहाँ पर ये गाना आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए चल पड़ा।

0: आप वहां पर भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं ये जो खूबसूरत गानों के साथ साथ ये जो सफ़र है दिलों की आवाज़ का, ये अच्छे से बीत रहा होगा हमारे साथ। तो चलिए, अगर किसी के नाम को एक खूबसूरत सा गाना करना चाहते हैं, आप सभी का वेलकम है यहाँ पर। और अभी के लिए जो है आपका प्यार भरा साथ हमें मिल रहा है, इसके लिए शुक्रिया। और अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं। अगला तराना जो है यहाँ पर एजेंट विनोद, इस फिल्म का ये गाना होगा अरिजीत सिंह और साथियों की आवाज़ों में। तो चलिए आप बताइएगा कि आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, किसके नाम कौन सा डेडिकेशन करना चाहते हैं। थोड़ी देर में टिकटॉक के जितने भी डेडिकेशन हमें मिल रहे हैं उन्हें हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड ज़रूर करेंगे। अभी के लिए ये तराना हो जाए हमारे सभी लवली लिसनर्स के नाम, साथ ही हमारे तमाम फॉलोअर्स के लिए भी जो इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है।
1: You're listening to RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज
1: चलिए रेडियो मनोरंजन पर आप हमारा साथ दे रहे हैं इन दिलों की आवाज और यहां पर रात के 7:22 ऑलरेडी हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच आपके मैसेजेस के लिए, आपके डेडिकेशंस के लिए, और साथ ही इस समय हम लाइव है हमारे टिकटॉक पेज पर रेडियो मनोरंजन के।

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: चलिए अरिजीत सिंह की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत सा तराना था ये, एजेंट विनोद, इस फिल्म से लिया गया राबता। और ये गाना जब रिलीज़ हुआ था तब काफ़ी पॉपुलर हुआ था, बहुत से लोग इस गाने को आज भी पसंद करते हैं। और अब बारी है इस अगले तराने की, और बहुत सारे हमारे जो टिकटॉक के फॉलोअर्स हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वी हैव निज़ाम बहादुर जी, कटरबोन से वेदना है, वेदना अगला गाना आपके नाम हम करते हैं। देन वी हैव रेशमा, ज्ञानती, रोशनी, मिंटा हु इज़ विशिंग हर कज़िन हैप्पी बर्थडे, वानेशा रामप्रसाद जो कल अपना बर्थडे मनाने वाली है। वानेशा, आपको मिंटा जी की ओर से हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, और हमारी पूरी टीम की ओर से भी और सभी रामप्रसाद परिवार की ओर से बर्थडे विशेस आपके नाम। देन वी हैव सुबी जो हमेशा हमारा साथ देती है हमारे सभी प्रोग्राम्स में, फिर चाहे वो रेडियो मनोरंजन हो या रेडियो मॉरिशस। किरण जी जो है कच्चे से हमारा साथ दे रही है यहाँ पर। एंजल भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, थैंक यू सो मच एंजल। स्वीटी, आपने कहा हकीकत का गाना अगर हो सके तो, और राइट, थोड़ी देर में हम इसे चलाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सुबी आपके इस मैसेज के लिए। सिमी लंदन से हमारे साथ जुड़ी है और सभी को हेलो कह रही है फ्रॉम लंदन। हेलो सिमी, आई होप यू आर डूइंग वेल। हेलो, माई नेम वी हैव विश्वानी यहाँ पर जो बोबासा से हमारा साथ दे रही है। विश्वानी जी की मम्मी का बर्थडे है आज, जो 77 ईयर्स की हो रही है। लेकिन विश्वानी जी, आपने अपने मम्मी का नाम नहीं बताया, आप उनका नाम बता दीजिए। तब तक के लिए जो अगला तराना चलने वाला है आपकी मॉम के नाम हम करते हैं, उनको जो है हम हैप्पी बर्थडे विश करते हुए ये गाना उनके नाम करते हैं।

0: दिलों की आवाज
1: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपनी दिल की आवाज हम तक पहुंचाने के लिए आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस के जरिए और हमारे लवली लिसनर्स और हमारे प्यारे फॉलोअर्स का साथ मिलता है दिलों की आवाज का ये जो 2 घंटों का सफर है कैसे शुरू होता है और कैसे खत्म होता है पता ही नहीं चलता और इस बीच खूबसूरत गाने जुड़ते हैं आपकी प्यार भरी बातें जुड़ती हैं आपके बर्थडे डेडिकेशंस जुड़ते हैं तो चलिए यहाँ पर स्वीटी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है कह रही अगला गाना हो जाए इनके बेटों के नाम विहा भीतेश हर्ष और साथ में इनके पति के बच्चों का नाम तो लिख दिया पति का नाम नहीं लिखा अरे कोई बात नहीं हकीकत फिल्म का ये जो गाना है आपके नाम हम करते हैं देन इकरम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अगला गाना जाता है बेटे रोहन रामबन के नाम वालिद प्रेत से पूरा रामबन परिवार हमारा साथ दे रहा है रेशमा जी इज़ विशिंग हिज ब्रदर रेशमा जी जो है अपने भाई देवानंद को हैप्पी बर्थडे विश कर रही है देवानंद जी आपको हैप्पी बर्थडे आपकी बहन रेशमा की ओर से और हमारी पूरी टीम की ओर से भी श्यामा जी शमी ग्रहणी से हमारा साथ दे रही है गाना जाता है आपकी ओर से यति और संजना के नाम वी हैव शारदा नलिनी करिश्मा आशा मुस्ताक खान जी काफ़ी दिनों बाद हमारे साथ जुड़े अच्छा लगा आपका मैसेज हमें मिला वी हैव सिबू देन वी हैव ललित मोहन जी जेसीना जेसीना ने कहा से हाई टू मी हाई जेसीना लालमाची से रेशमा जी हमारा साथ दे रही है ऐसे जितनी बार हमने माइक लिया जब से हम लाइव पर है काफ़ी रेशमा हमारे साथ जुड़ रही है तो चलिए जितने भी रेशमा इस समय हमें सुन रही है या हमारे टिकटॉक के जरिए हमारे साथ लाइव जुड़ी है हाय आप सभी को देन मेलबोर्न से वी हैव योशिता जो बड़े ही प्यार से हमारा साथ दे रहे हैं और यही गाना विनय की ओर से उनकी प्यारी वाइफ विमला के नाम

0: दिलों की आवाज।
1: चलिए अभी हकीकत फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, इंडिया दिलों की आवाज। और हकीकत इस फिल्म में अजय देवगन, तब्बू नजर आए थे। और ये सारे गाने इतने एवरग्रीन है, इतने जैसे कि मेमोरेबल है, क्या कहे। कभी भी इस गाने को सुने तो अच्छा ही लगता है ना। और ऐसे भी दिलों की आवाज इस प्रोग्राम में ज्यादातर हम 90s के गाने चलाते हैं, ज्यादातर हम हिट गाने चलाते हैं, पुराने गाने इस सेगमेंट में नहीं चलते हैं। पुराने गाने अगर आप सुनना चाहते हैं तो बेशक दोपहर का जो हमारा सुहाना सफर प्रोग्राम होता है, जो हर रोज दोपहर के 12 बजे से चलता है,

बेशक आप वहां पर पुराने गानों की फरमाइश कर सकते हैं। अभी के लिए अगर 90s का कोई तराना है, कोई नया रोमांटिक सा गाना है आप सुनना चाहते हैं या किसी के नाम डेडिकेट करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। 5250-6200 है नंबर हमारा फॉर योर मैसेजेस। साथ ही इस समय वी आर लाइव ऑन आवर टिकटॉक पेज ऑफ रेडियो मनोरंजन। बहुत सारे हमारे फॉलोअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सो वी हैव एम डी बाबू, कवि किशन, श्रेया, सुनीश, ललिता, नुश। आपने कहा अगर आशिक की फिल्म का गाना हो तो चलिए अगला गाना आशिक की फिल्म का है, आपके नाम। देन वी हैव इंदिरा जी, इंदिरा जी अगला गाना आपके नाम, आपकी ओर से राजेश उगाव के लिए। एंड वी हैव राजेश जूतन जी, संजना जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। वी हैव नीलिमा, किशन राम गुलाम जी है, कृष्णवंती जगू जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। वी हैव निज़ाम उजिया जो अमेरिका से हमारा साथ दे रहे हैं। हम बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? ऐसे टिकटॉक और व्हाट्सएप के ज़रिए हुआ ये है कि मॉरिशस ही से नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से हमारे साथ जो है हमारे लिसनर्स और हमारे फॉलोअर्स जुड़ते हैं और हमें भी आप लोगों से बात करके बड़ा अच्छा लगता है। चलिए इकतार जी, थैंक यू आपके इस मैसेज के लिए। माधवी दुमौ जी, आपके प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड यहाँ पर वी हैव रोशनी, चलिए आप सभी का साथ हमें मिल रहा है। और यहाँ पर अभी के लिए आशिकी फिल्म का ये गाना चल पड़ा।

0: और चलिए यहाँ पर शाम के 7:50 ऑलरेडी होने को है। दिस इज़ या दिलो की आवाज़। आप इतने प्यार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए शुक्रिया। और ढेर सारे मैसेजेस हमें यहाँ पर मिल रहे हैं ऑन 5250620 पर। और चलिए यहाँ पर कुछ डेडिकेशंस हम जोड़ते हैं।
1: की आवाज़।
0: और अगला ताराना जो है वो होगा शबनम, मूवी से लिया गया। इस समय बड़े ही प्यार से जो है अपादू फैमिली हमारे साथ कनेक्टेड है फ्रॉम रोशनुआ, हमेशा हमारा साथ देते हैं। वी हैव दारेन, श्वेता, रविश, प्रिशा, लोवेशा, ये गाना आप सभी के नाम हम करते हैं। देन वी हैव उज्जवल जी, तेज आपकी ओर से गाना जाएगा आपकी मामा विरोशनी के नाम, पापा आपके और साथ में सभी सनातन परिवार के नाम। रोशन जी, आपने कहा आपकी बेटी का बर्थडे है, आप उनका नाम बता दीजिए, हम उनके नाम एक खूबसूरत सा गाना ज़रूर डेडिकेट करेंगे। देन वी हैव संजय शिवचंद जी, जो इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है टिकटॉक के ज़रिए, हमारा साथ दे रहे हैं। थैंक यू आपके इस प्यार भरे साथ के लिए। यहाँ पर चलिए काफ़ी सारे मैसेजेस हमें यहाँ मिलते तो है, लेकिन कभी कभार कुछ मैसेजेस हमसे मिस भी हो जाते हैं, खासकर हम टिकटॉक के मैसेजेस की बात कर रहे हैं जो इस समय हमें आप भेज रहे हैं। वी हैव रॉय राजपूत जो हमारा साथ दे रहे हैं। सुबी जी, थैंक यू, यहाँ पर आप प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और काफ़ी दिनों बाद आपने वेदिता को सुना तो आपको अच्छा लगा, आप कह रही है, तो थैंक यू सो मच आपके इस मैसेज के लिए। ऑलराइट विनय जी, अगला गाना आपके भाई रोशन के नाम होगा जिनका आज बर्थडे है, तो उनको वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे हमारी पूरी टीम की ओर से और आपकी ओर से भी। माधवी जी, अगला गाना आपके नाम हम करते हैं। हेमा जी निवग्रोव से हमारा साथ दे रही है, आपने कहा राम शास्त्र का गाना, ऑलराइट मौका मिलेगा तो इसे हम ज़रूर चलाएँगे। राजेश जूतन जी हमारा साथ दे रहे हैं। वी हैव श्रेया, देन आयशा भी हमारे साथ कनेक्टेड है। इफ्तिकार जी, थैंक यू आपके मैसेज के लिए, हम बिल्कुल ठीक है। एंड देवानंद जी वैंकूवर कनाडा से हमारा साथ दे रहे हैं। ऐसे एक और हमारे जो दोस्त है जो हमारे साथ वैंकूवर से हमेशा जुड़ते हैं, यस, किरण पुरी जी, उनका मैसेज हमें यहाँ पर मिला, इसके लिए शुक्रिया। देन वी हैव जी जी लाल, नरेंद्र कुमार, निंदी, कला राम, कालीगर, सभी जो है कनाडा से हमेशा हमारा साथ देते हैं और आपके प्यार भरे मैसेजेस के लिए शुक्रिया। हाय काजल, कैसी हैं आप? और नीलिमा जी, अगला गाना आपके नाम हम करते हैं। एंड विनय जी, थैंक यू फॉर योर लवली मैसेज। और यहाँ पर चलिए अगला गाना यहाँ पर चल पड़ा है, किसी ने हमसे कहा था शबनम फिल्म का ये तराना, तो ये आप सभी के लिए।

0: दिलों की आवाज।
1: चलिए देखते ही दिलों की आवाज का ये जो फर्स्ट आवर है ये लगभग खत्म होने को चला। दो मिनट में रात के 8 बज जाएंगे और रात के 9 बजे तक ये प्रोग्राम जो है चलने वाला है और इतने प्यार से आप जुड़े हुए हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए यहाँ पर इस समय दीपक जी मोचिदा से हमारा साथ दे रहे हैं, कह रहे हैं अगर हो सके तो क्रिमिनल फिल्म का गाना हो जाए तू मिले दिल खिले वाइफ मौशनी के नाम। तो चलिए अगला गाना दीपक जी आपके नाम और आपकी लवली वाइफ मौशनी के लिए, और यही गाना जो है जाता है परी आपके लिए। बड़े ही प्यार से आप हमेशा हमारा साथ देती है। वी हैव शर्मिला बुधन जी, वी हैव विदुर, चंदना जी, तनका, प्रकाश, अनीता, देन कियारा, ये गाना किरा किरा ये गाना आपकी ओर से आपके हस्बैंड विक्रम के नाम। पिछित जुली से आप दोनों हमारा साथ दे रहे हैं। देन वी हैव मिमी, यश, काफ़ी दिनों

बाद हमारे साथ जुड़े हैं, इंग्लैंड से हमारा साथ दे रहे हैं। और राइट, अगला गाना जाता है SSRN हॉस्पिटल के सभी स्टाफ के लिए जो इस समय काम करते करते हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच, ये लवली तराना आपके नाम हम करते हैं ऑन द ओकेशन ऑफ पेशेंट्स डे। और राइट, चलिए, और आप लोग इतना जो है सभी का ख्याल रखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वी हैव यूज़र 1358, हाय, कैसे आप? फ्लावर, हेलो, आप कैसे हैं? नमस्ते, नाइस टू हैव यू लाइव ऑन रेडियो, थैंक यू सो मच, आपने अपना नाम नहीं बताया। राज जी, अगला गाना आपके लिए भी यहाँ पर, और यस यश, आपके नाम भी इस गाने को हम करते हैं। गुलशन ग्रोवर जी, एनी कुमार सानू सॉन्ग। और राइट, ये जो गाना है क्रिमिनल फिल्म का चलने वाला है, कुमार सानू जी की आवाज़ में, आपके नाम हम करते हैं। याशना हमारा साथ दे रही है अगला गाना आपके हबी विकास के लिए, उनका बर्थडे है आज, तो उनको हैप्पी बर्थडे आपकी ओर से और हमारी पूरी टीम की ओर से भी। सूरज जी हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ जुड़े हैं, ट्रियोले से हमारा साथ दे रहे हैं।

0: तो चलिए कुमार सानू और अलका जी की आवाजों में ये था बड़ा ही खूबसूरत सा गाना क्रिमिनल इस फिल्म से लिया गया।
1: दिलों की आवाज़
0: और दिलों की आवाज़ के इस सेकंड आवर में आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है ऑन रेडियो मनोरंजन। मैं हूँ सुमी और आप सभी का साथ दे रही हूँ। ऐसे दिलों की आवाज़ इस प्रोग्राम में हर मंडे हम आपसे जुड़ते हैं और आपका प्यार भरा साथ हमें मिलता है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे फॉलोअर्स, बहुत सारे लिसनर्स व्हाट्सएप पर तो हमारे साथ जुड़े ही रहते हैं, साथ ही टिकटॉक पर भी हमारे साथ लाइव जुड़ते हैं। एंड अगला गाना जाता है विवियान आपके लिए, वी हैव सबरीना, माधुरी जी आपके लिए भी, फिया थैंक यू सो मच, आप हमेशा हमारा साथ देती है। जो पुराना गाना आपने मांगा है हम कल आपके लिए ज़रूर चलाएंगे इन सुहाना सफ़र, आप ज़रूर जुड़िएगा। यशना तिलकधारी हैप्पी बर्थडे आपको फ्रॉम करुणा और सभी तिलकधारी परिवार की ओर से। वी हैव लायन, वी हैव रागिनी जी जो कह रही है कि हो सके तो एक गाना हो जाए SSRN और साज हॉस्पिटल के सभी स्टाफ के लिए। तो चलिए अगला तराना आप सभी के नाम हम करते हैं। नवीन हमारा साथ दे रहे हैं, वी हैव विनय जी जो बड़े ही प्यार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पर आप लोगों के इस प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस जो है कभी कभार मिस भी हो जाते हैं। किसी ने कहा हो सके तो शम्मी कपूर जी का कोई गाना, ऐसे तो इस प्रोग्राम में तो हम शम्मी कपूर जी का गाना नहीं चला पाएंगे क्योंकि यहाँ पर हम पुराने गाने नहीं चलाते हैं, लेकिन कल दोपहर को मौका मिला तो ज़रूर सुहाना सफ़र इस प्रोग्राम में किसी पुराने गाने को शामिल करेंगे जो शम्मी कपूर साहब पर पिक्चराइज्ड हो। अभी के लिए आपके इतने सारे मैसेजेस हमें मिल रहे हैं इसके लिए शुक्रिया। एंड द नेक्स्ट सॉन्ग गोज टू खदीजा और आपके हस्बैंड दिलशाद के नाम। वीना जी नमस्ते आपको भी, हाय अनुषा। भारती जी थैंक यू फॉर लविंग द प्रोग्राम। फिया जी ओके बिल्कुल कल आपका गाना हम ज़रूर चलाएंगे। हाय अनुषा, हाय अविनाश जी। रियल न्यूज़ हेलो, यस इट इज़ MBC रेडियो, मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का ये रेडियो है, रेडियो मनोरंजन। ओके रॉय जी आपका मैसेज जो यहाँ मिला वही है, ऑल राइट चलिए हम कोशिश करेंगे आपके गाने को चलाने की। हाय स्वीट्स सबरीना जी, अगला गाना आपके नाम होगा आपकी ओर से आपके हस्बैंड अभिषेक के लिए। तेरे मेरे सपने ओके देखते हैं अगर मौका मिला तो इसे हम ज़रूर चलाएंगे। सामियल मनी एंड वी हैव विमल जी, कैसे हैं विमल जी आप। और चलिए यहाँ पर ये गाना आप सभी के लिए चल पड़ा, यारा दिलदारा फिल्म का तराना, तुम ही हमारी हो मंजिल माई लव। इनफैक्ट ये फिल्म का ये गाना इतना पॉपुलर हुआ था लेकिन इस फिल्म में जो एक्टर और एक्ट्रेसेस नज़र आए थे, एक्ट्रेस नज़र आई थी, वो इतने पॉपुलर नहीं हुए थे। कभी कभार होता है ना कि एक फिल्म में कोई एक्टर एक्ट्रेस इतना चल जाते हैं कि उसके बाद फिर बाकी फिल्मों में नज़र ही नहीं आते।

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज।
1: चलिए अनीता जी, फ्लिकोफ्लाक से हमारा साथ दे रही है। ऐसे हम कल गए थे फ्लिकोफ्लाक विसर्जन के लिए, भगवान गणेश के विसर्जन के लिए शाम के वक्त, और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो इतना खूबसूरत था कि क्या कहें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी, आप इतने प्यार से हमारे साथ जुड़ी हुई है। अगला गाना आपके नाम हम करते हैं, आपकी ओर से आपके सभी दोस्तों के लिए, आपके पूरे परिवार के लिए थैंक यू सो मच आपके इस प्यार भरे मैसेज के लिए।

अब शिवासन जी जो हमें सुन रहे हैं टिकटॉक लाइव के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं, वी हैव सीआर लक्ष्मण जी, परिप्रीत आपको भी हेलो, शायद आप पहली बार हमारा साथ दे रहे हैं। माला जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। वी हैव अक्षिता, रुखसाना, शैला एंड देन वी हैव नम्रता। सुमन जी कैसी है आप? रियल न्यूज़ की ओर से अगला गाना जाता है उनकी प्यारी दोस्त शीतल के नाम जो मॉरिशस में है। ऑलराइट एंजल परी ये गाना आपके लिए भी एंड रामतोहल जी की, रामतोहल, प्रीति, शैला सभी के लिए। देन जेविना यू मोस्ट वेलकम, तेरे मेरे सपने फिल्म का कोई गाना। ऑलराइट मौका मिला तो हम ज़रूर चलाएंगे। हाय उषा कैसी हो तुम? अगला गाना तुम्हारे लिए भी। वृंदा जी इटली से हमारा साथ दे रही है, थैंक यू सो मच, प्ले समथिंग फॉर मी एंड माय फ्रेंड्स। ऑलराइट अगला गाना आपके नाम और आपके सभी दोस्तों के नाम हम करेंगे। हाय जेमिमा कैसे है? जेमिमा के नाम अगला गाना, अरविंद लीला के नाम जो रोशनवा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऑलराइट नेक्स्ट ट्रैक मौसी लीना के लिए और नीस तृष्णा के लिए। और चलिए जितने भी लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं यही गाना आपके लिए भी हम करते हैं। सो राधा का संगम फिल्म का ये गाना यहाँ पर चल पड़ा है लता जी, शब्बीर कुमार जी की आवाज़ों में, ओ राधा तेरे बिना।

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: चलिए, दिस इज योर दिलों की आवाज। मैं हूँ सुमी, आप सबका साथ दे रही हूँ। और यहाँ पर मंडे का दिन बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत ही हैवी होता है, बहुत ही हेक्टिक होता है, क्योंकि सैटरडे संडे के बाद जब मंडे काम करने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि टाइम ही नहीं बीतता है ना। लेकिन देखिए, देखते ही देखते रात के 8:30 बज चुके हैं। और यहाँ पर कहते हैं ना कि मतलब कि कोई अच्छा दोस्त होता है, कोई अच्छा हमसफ़र होता है, तो उनके साथ बातें करते करते उनके साथ जो है ये टाइम बीत ही जाता है। और अभी के लिए हमें आपका प्यार भरा साथ मिल रहा है, इसके लिए थैंक यू सो सो मच। यहाँ पर वी हैव अवनी परी, अगला गाना आपकी ओर से आपके

हैप्पी सचिन के नाम एंड योर लवली डॉटर खुशी. देन वी हैव शर्मा विजय जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वेस्ट इंडीज से. रानी जूसरी जी भाऊ अगला गाना आपके नाम और आपकी ओर से मेगान और शुद्ध के लिए भी. एंड शामली जी हमारे साथ जुड़ी है. वी हैव पूजा संजना जी की ओर से अगला गाना उनके हस्बैंड दुष्यंत के नाम. मुनमुन जी आपका भी साथ हमें मिल रहा है इसके लिए शुक्रिया. लक्ष्मी जी की ओर से अगला गाना जाता है उनके हस्बैंड राजेश के लिए. बेटा है जेनिसन वालिता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं. कनासामी पदयाची जी अगला गाना आपके नाम मानसेवान की ओर से. देन वी हैव निशा गोकुल. आमिर जी लंदन से हमारे साथ कनेक्टेड हैं. रॉय राजपूत जो है हमारा साथ दे रहे हैं यूके से. दीदार फिल्म का ये गाना आपके लिए होगा और आपके सभी दोस्तों के नाम भी हम करते हैं. एंड देन वी हैव यूज़र 60943. हेलो कैसे हैं आप. वी हैव वी लक्ष्मी जी आपके नाम को हम ऑलरेडी जोड़ चुके हैं. और चले अभी के लिए दीदार फिल्म का ये गाना चल पड़ा है उदित नारायण और साधना सरगम जी की आवाज़ों में. और शायद दीदार इस फिल्म में अक्षय कुमार और करिश्मा कपूर नजर आई थी है ना. अब बताइए कौन नजर आए थे इसमें.

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: और चलिए अलका याग्निक जी की आवाज में यहाँ पर जख्म फिल्म का ये गाना चल पड़ा है और ये गाना विजय जी आपके नाम हम करते हैं वाकवा से हमारा साथ आप दे रही है थैंक यू सो मच

0: दिलों की आवाज़ में
1: आपकी आवाज़ को हम ज़रूर सुन रहे हैं, आपका साथ हमें मिल रहा है। अगला गाना विमला जी आपके नाम हम करते हैं, साथ में माला जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है और देखते ही देखते रात के 9:15 यहाँ पर बज चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं इस अगले तराने की ओर। आप मुझे अच्छे लगने लगे फिल्म का ये टाइटल ट्रैक होगा अलका याग्निक और अभिजीत जी की आवाज़ों में।

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
1: तो दोस्तों इस अगले गाने के साथ दिलों की आवाज ये जो सफर रहा ये खत्म होने को चला। इतने प्यार से आपने 6:30 बजे से अभी तक हमारा साथ दिया ऑन रेडियो मनोरंजन। जाते जाते आप सभी का दिल से धन्यवाद, प्यारे लिसनर्स का, सभी फॉलोअर्स का जो टिकटॉक के साथ हमारे साथ कनेक्टेड रहे। बॉर्डर फिल्म के इस गाने के साथ आज के इस प्रोग्राम को हम समाप्त करने जा रहे हैं। 9 बजे जो है आप सुनेंगे रेडियो मॉरिशस से सीधा प्रोग्राम यहाँ पर, और हमारी आपकी मुलाकात कल होगी दोपहर को, जी हाँ 12 से 2 बजे के बीच, इन या सुहाना सफर। तो ऐसे ही रेडियो मनोरंजन पर आप हमारा साथ देते रहिए, हमारे साथ हमेशा कनेक्टेड रहिए। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, गुड नाइट हमारी ओर से, और रेडियो मनोरंजन पर ऐसे ही हम सभी को सुनते रहिए।
2: You're listening to RM3 Radio Man.

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के सवाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
3: भोजपुरी तड़का।
4: नमस्ते, हम के सब श्रोतालों के स्वागत करते हैं जहाँ हम के भोजपुरी तड़का में। अभी 9:05 होल बा और हम के कार्यक्रम चली 11 बजे ले। तो हम सुरेखा तो हर स्वागत करते हैं और प्रार्थना ही करते हैं कि बहुत अच्छा अच्छा पल बितावत हो बजा। तो हर शाम के वक्त, तो हर रात्रि के वक्त खूब सुकून होला हुई तोहर खातिर और तोहर मन बड़ा शांत हो। चला हमने तोहर खातिर लेके आए हैं जा जो कार्यक्रम भोजपुरी तड़का, एकर में भाग ले जा और हमने के कार्यक्रम के शोभा बढ़ावा जा। ये कार्यक्रम में तो लोग अपन पसंद के गाना सक बजा सुने जाने ल। नंबर बात नंबर कॉल करे होला है 7200 और मैसेज भेजे होला है 7200 यानी कि 5251700005। तो अपन पसंद के गाना सुना जा और अपन रात्रि के खूब सुखमय शांत बनावा जा। अभी चला हमने गीता गजाधर की आवाज़ में सुनी जा, समझे के जैसे हिचकी लगेला, कैसे हिचकी लगेला, कहाँ हिचकी लगेला और कौन तरह से समझी जी अपन दिन ले जालन, अपन व्यवहार करेलन।

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का में चला सुनी जा हमने संभावती दुवन जी के गावल गाना नाको के फुलिया और ये गाना हमने से मंगले हवन मनीषा जी का तो बोन से मनीषा जी गाना मंगले हवन विजेंद्र खातिर जितेन खातिर और संध्या तथा विजया खातिर तो चला सुनी जा हमने संभावती दुवन जी के गावल ये गाना

संध्या जी मंगलवानी को विनोद सिवदा जी के गावल गाना उनकर माता जी खुश रहलन विनोद सिवदा जी के गावल गाना सुने के तक दो मास के संध्या जी बगल से उनकर माता जी रेणुका खातिर और उनकर बहिन बबीता खातिर गीत चलावत है जा हमने

0: कल्चर का भोजपुरी के स्वाद संगीत के खुशबू सुरेखा संगीत भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का
2: तड़का लगाई लाजा हमने के शो में और ही प्रस्तुत करी लाजा गायत्री जी के पास इनके गाना गायत्री जी मंगले वन सोना रेयन जी के गावल गीत ई गाना मंगले हवन गायत्री जी नोवेल फाउंस से अपन बेटा अजय खातिर और मायबू के मामी कल्याणी मोहन जी खातिर लॉन्ग माउंटेन के बाबी शकुंतला जी खातिर और नोवेल फाउंस के अपन सखी गीता बाई खातिर तो चल सुनी जा सोना रेयन के गावल गाना

गिरीश रूपचंद जी के गावल को गाना चला सुनी जा और गिरीश रूपचंद जी के गावल गाना हम दी बजावत है जा महिमा जी के पसीन पर महिमा जी गाना मंगले हवन सुयाक से और गीत मंगले हवन अपन माँ वंदना के नाम

0: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का।
1: चले हमने के भोजपुरी तड़का में अभी कुछ हमने जन्मदिन के मंगल कामना दे ला जा विदेश जी के, ललिता जी के भाई हवन विदेश जी, ललिता जी अपन भाई विदेश के जन्मदिन के बहुत मंगल कामना प्रस्तुत करत हवन, और विदेश जी के उनकर पत्नी आशा जी बगल से शुभकामना, उनकर बेटी ईशा बगल से बेटा विषय, और फिर पूरा परिवार बगल से जन्मदिन के बहुत बहुत मंगल कामना।

अवितेश जी हमके पूरा टीम तोरा जन्मदिन अभिनंदन बलता। और इधर वैष्णवी के भी जन्मदिन बा, वैष्णवी जन्मदिन अभिनंदन हमके पूरा टीम बगल से। तो ललिता जी जन्मदिन के शुभकामना देवत वन। फिर तोहर मामा मालिनी, तोहर पापा विराज, भाई विक्रांत और पूरा राम रतन परिवार द्वारा जन्मदिन के ढेर ढेर मंगल कामना देवत हवन जा। फिर ललिता जी गाना मंगले हवन, सुदेवी जी खातिर, ज्ञानी जी, छोटी जी, प्रभावती जी और आत्माराम जी खातिर और सुखलाल मौसी खातिर गाना है। विश्ववाणी दीपो जी के गावल गमट होला गाना।

लीलो माथुर जी के गावल गाना सुनी जा लीलो माथुर जी के गावली गीत हमने से मंगले हवन पीतों से अमृता जी अपन नातिन सोनिया और परी खातिर और अपन बेटी पूनम खातिर बेटा विशान और पतो मीनाक्षी खातिर और पूरा गणेश परिवार खातिर

आगे चली जा हमें जयहरलाल जी के गावली गाना सुनी जा गौबे के शैलेश जी गाना मंगले हवाने पर पत्नी माया खातिर बेटी कीर्ति और नंदिनी खातिर और यही गीतवा जयहरलाल जी के गावल हमने बजवाए ला जा लावेनिया के आफेज जी खातिर

अभी बढ़त है जा आगे हमने गौरी ब्रदर्स के गा वाला शिव भजन के संगे और ये भजन मंगले हवन से अनिता जी फ्लिक ऑफ लाख से मंगले हवन ई भजन इंदिरा श्यामा मीरा सिनान कविराज साधना मारिनी कविता खातिर अपन सब संगतियालो खातिर और पूरा परिवार खातिर तो चला ये गाना हमने सुनीता जी के नाम करी अनिता जी के नाम करी जा अनिता जी फ्लिक ऑफ लाख से

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का
2: भोजपुरी तड़का में हमने के साथ देवथवन कहोंगुप के सुनीता जी और सुनीता जी खातिर चलाए जला जा हमने रंभा राम तोहल जी के गावल गाना जुबेदा होला गाना और ये जुबेदा होला गाना सुनीता जी अपन बहन कुंगुमा के अपन बहन विमाला खातिर बजवाओ थवन और उनका बेटा संजीव खातिर की संजीव जी अभी छुट्टी मनाया हवन अपन माँ लगे विदेश से तोहर स्टे है जहाँ पर बहुत अच्छा रही तोहर दिन है जहाँ पर बहुत प्यार से बीते अपन संगतिया लोग के बीच में अपन परिवार लोग के बीच में बहुत अच्छा समय बीता यह संजीव जी

लतवा ले ले अलबस जुबेदात हमनी के रास्ता पर चाहे सावधानी बरते के चाहे लाचा से हमनी की गड़िया चलाए के हां कि नहीं चलाई गाना हमनी बजवाई ला जा अबरी को गणेशन हरि जी के गावल सुविधा जी के पसंद पर प्रेम मायो से सुविधा जी गाना मंगले हुआ न पण पिताजी राघव खातिर

चलो सुनी जब वो गीत जो हमने से मंगले हवन सुदेवी जी वाकवा से मंगले हवन सुदेवी जी गाना गणपत सत्यन सत्यन इसन जी के गावल और ई गाना सुदेवी जी मंगले हवन थ्रियोले के दीदी ललिता खातिर कुशल फैमिली खातिर दीदी सुनीता शोभा देवी नाम खातिर मारेगा के राम रतन परिवार खातिर तो चला सुनी जा मिलके हमने सुदेवी जी के संगी गणपत सत्यन एसएन के गावल गाना

अब तबारी अलबा बीतल दिनवा के बारे में सुने के कैसे बीतल दिनवा में शादी हुआ था हल कैसे चौठारी हुआ था हल ये गाना महेन हर पाल जी गावा था ना और गाना मंगले हवन हम से विद्या जी कौन तो गल से गाना मंगले हवन अपन पूरा परिवार खातिर खास कर अपन दादाजी

शादी करले करला के बाद कबो कबो किरिंग करंग हो जाला बे कौन सी बात है थोड़ा बहुत किरिंग करंग तो हुई बे करे के चाहेला तब न प्यार बढ़ेला किशोर कुमार हमें सर जी के गवाल किरिंग करंग करा चला सुनी जा हमने देवी जी के पास इन पर देवी जी का नाम मंगले हवन अपन पूरा परिवार खातिर बहुत बहुत धन्यवाद हमने के पूरा टीम खातिर भी मंगले हवन देवी जी

जयप्रकाश दुखे चिकावत हवाना आज के हम के अगला गाना और ये गाना है जाने ले ले वो रोमांटिक गाना है एगो और ये गाना हमने से मंगले हवाना सुविता जी गाना मंगले वन अपन पति रणधीर खातिर

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का।
2: जब इतना तड़का लगते हुआ तो हमने जन्मदिन के भी तड़का लगा दे लाजा। हैप्पी बर्थडे टू यू किरण जी। किरण जी रैलन गांव बेलिया, उनका जन्मदिन पर आज उनकर पत्नी विषमा उनका जन्मदिन के शुभकामना देवत हवन। उनकर बेटा विवान और रेयांश उनका जन्मदिन के बहुत बहुत मंगल कामना देवत हवन। तो चला संजय गोविंद जी के गावल ई गाना हमने किरण जी खातिर प्रस्तुत करी जा।

अब इस रात है जहाँ हमने जादू देव चरण जी के गावल गाना और पवन जलबर से गाना हमने बजात है जा रवि जी के पसंद पर रवि जी गाना मंगले हवन अपन पत्नी आनंदी के नाम

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का। चला सुनिए जहां हमने शशि सोहादेव जी के गावल गाना कबूतरी, कबूतर और कबूतर की प्रेम कहानी, ये गाना हमने बजाओ थे जा वाक वाक के धनपत जी खातिर।

हमें के भोजपुरी में तड़का था और हमने के श्रोता लोग लगाई थे जा था वन जा चलो महेंद्र जी के लगावल तड़का सुनी जा भोजपुरी तड़का में एगो फट फटवा गाना सुनब जा ई गाना है भोजपुरी बजाबाजी बॉयज के कलाकार लोग के गावल और ई गाना हमने महेंद्र जी के नाम कराए थे जा उनकर बगल से दीदी मान के नाम

पसंद सुपाल जी के गावाली गमठ वाला गाना चला हमने वीना जी के पसंद पर बजाओ अब जा वीना जी गाना कोविड से मंगले हवन अपन दादा दादी खातिर और ये अपन पिताजी खातिर

गाना के संगे हमने के आज के भोजपुरी तड़का समाप्त हो जाए साथ दिलाकर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग के पसंद के गाना बजाते बजाते ही हमने के कार्यक्रम के सुंदरता बढ़ गल। तो बहल गौरी जी के गावली गाना सुनी जाए, ये अंतिम गाना रही हम के कार्यक्रम के। अभी ये गाना के समाप्त होते यानी कि प्रोग्राम के समाप्त होते, प्रोग्राम तो समाप्त हो जाए 11 बजे। 11 बजे सुनिए जा पुराना गीत के कार्यक्रम सुनहरे पल गिनेशा प्रस्तुत करियन। तो एंजॉय करिए पुराना गाना भी, अभी बहल गौरी जी के गाना भी एंजॉय करें। आवाज़ला फिर मिलब जा। शुभ रात्रि, नमस्ते।

देखा जाए तो ज़िंदगी में कभी कभी सिर्फ एक गीत ही काफ़ी होती है हमें सालों पहले ले जाने के लिए, एक आवाज़, एक धुन और आंखों के सामने बचपन की गलियां, स्कूल के दोस्त, पहली साइकिल, माँ के हाथ का खाना और घर का वो पुराना रेडियो, सब कुछ जिंदा हो जाता है। और आज हम वही यादें फिर से ताज़ा करने आ गई हैं। तो दोस्तों, ज़रा दिल को थाम लीजिए, दिल को हल्का सा मुस्कुराने दीजिए और पुराने बॉलीवुड के इन हसीन नगमों के साथ चलिए एक खूबसूरत सी सफर पर, रेडियो मॉरिशस पर सुनहरे पल में। विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड इवनिंग। नमस्कार और गिनीशा का प्रणाम।

मेरे प्यारे प्यारे म्यूजिक लवर्स, हर गीत किसी ना किसी दिल की जुबा होता है। कुछ गाने खुशी बयां करते हैं और कुछ मोहब्बत, और कुछ वो बातें जो हम कभी लफ्जों में कह ही नहीं पाते। आज का हर नगमा शायद आपके दिल की कहानी कह दे, तो जहां भी है आप मुस्कान के साथ हमें भी अपना साथी बना लीजिए और चलिए बॉलीवुड के सुनहरे दौर का लुफ्त उठाने में चलिए जी। ये अगला नगमा हमारी तरफ से आपके नाम।

0: वैसे मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, एक वक्त था जब रेडियो सिर्फ एक मशीन नहीं होता था, घर का एक हिस्सा होता था। वो सुबह की शुरुआत, शाम की चाय और रात की सुकून भरी बातें सब रेडियो के साथ जुड़ी होती थी। आज भी वही रिश्ता हम सबको जोड़ता है और जब उसमें पुराने बॉलीवुड के गीत शामिल हो जाए तो बात ही कुछ और होती है। तो आइए मिलकर इस प्यारे रिश्ते को फिर से महसूस करते हैं रेडियो मॉरिशस पर।
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: कहते हैं ना, हर इंसान की जिंदगी एक किताब होती है और उस किताब का हर चैप्टर किसी ना किसी गीत के साथ जुड़ा होता है। शायद आज का अगला गाना आपकी कहानी का भी एक हिस्सा हो सकता है किसी अपने की याद दिला दे या फिर किसी अधूरे सपने की। तो दिल खोल कर सुनिए, क्योंकि पुराने बॉलीवुड के गीत सिर्फ संगीत नहीं है, जिंदगी का एहसास होता है।
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

मोहब्बत सिर्फ लफ्जों से नहीं होती है, कभी-कभी एक गीत ही दिल की बात कह देती है। कितना ही प्रेम कहानियां हैं जो बॉलीवुड के गीतों के साथ और भी खूबसूरत बन गई है। आज अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं या किसी को याद कर रहे हैं तो ये प्रोग्राम उन्हीं एहसासों के नाम। चलिए प्यार के इन अनमोल नगमों का आप मजा ले लीजिए रेडियो मॉरिशस पर इन योर सुनहरे पल।

चलिए जी, फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर गिनिशा टू से गुडबाय टू यू. इजाजत दीजिए, जाएंगे वापस लौट आने के लिए. वादा रहा आप सभी लोगों से एक और सुनहरे पल के बहुत ही खूबसूरत से सफर में. आप बस अपना ख्याल रखते जाना, प्यार बांटते जाना. शुभ रात्रि, शब्बा खैर.